कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
3: A very good morning आप सभी को, सुप्रभात। आज रविवार 20 सितंबर 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5:01।

0: Chillax with Radio Musty.
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात. संडे की सुबह है, वीकेंड का आखिरी दिन और समय है 5:09. आप सुन रहे हैं रिलैक्स सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर. और संडे की सुबह अगर शुरू हो किसी खूबसूरत गाने के साथ तो मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है. पर हमने शुरुआत की मुस्कुराता हुआ मेरा यार इस गाने से, और बस इसी मुस्कुराहट को लेकर हम चलेंगे आज की पूरी सुबह के पथ पर. जी हाँ, इस खूबसूरत दिन को और भी खूबसूरत बनाएंगे. आज कोई मंडे वाली जल्दी नहीं, कोई लेट हो रहा है वाली टेंशन नहीं, बस एक आराम भरी संडे मॉर्निंग. चाय या कॉफ़ी का एक कप होक हाथ में, खिड़की से आती हल्की सी हवा और रेडियो मस्ती पर सदाबहार गाने. संडे का एक अलग ही सुकून होता है ना. पूरा हफ्ता हम समय के पीछे भागते हैं और समय को थोड़ा अपने पास बैठने देते हैं आज. तो अगर आप अभी बेड पर हैं, थोड़ा और रिलैक्स कीजिए, चिलैक्स कीजिए. एंड अगर चाय बना रहे हैं, चाय की पहली सिप का मज़ा लीजिए. और अगर आप ऑलरेडी काम पर निकल चुके हैं तो हम आपके सफ़र को थोड़ा और हसीन बनाएंगे. जी हाँ, संडेज के दिन भी लोग काम करते हैं, उनको हम बुको हार कहते हैं. रिलैक्स कंटिन्यूज ओनली ऑन रेडियो मस्ती. आज की सुबह पुरानी यादों, खूबसूरत नगम और पॉजिटिव वाइब्स के नाम. चलिए आपके डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499-1294.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: with Radio Musty.
1: सवेरे का ये समय कुछ अलग ही होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। अगर आप ये हाथ में एक प्याली चाय हो तो और भी स्पेशल हो ही जाता है, सोने पे सुहागा वाली बात हो ही जाती है। और यहाँ पर हम इसे और एक्स्ट्रा स्पेशल बनाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। जी हाँ, सबसे पहले हम व्हाट्सअप की ओर बढ़ते हैं। दिख रहे हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस वी हैव। जयशन जी सवेरे सवेरे हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। शुभ रविवार आपको भी जयशन जी, एंड आई होप कि आपका ये रविवार ये संडे बहुत अच्छे तरीके से कटे। हाय गुड मॉर्निंग, गिव अ सॉन्ग फॉर माय सिस्टर। ओके, आपकी बहन के लिए हम जरूर एक गाना चलाएंगे। सरोजनी नाएगी ओजोल नायडू परिवार, साथ में सिताना आपा दू है, और आपने गाने की रिक्वेस्ट की है, हम जरूर चलाएंगे नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम, गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट गाना फॉर अब्दुल और सारा बानू, हैप्पी संडे सभी को विश करते हैं। हैप्पी संडे आपको भी। ये संडे कुछ अलग ही होता है ना, हम जानते हैं कि ज़्यादातर हम घर पर ही रहते हैं, आराम होता है। पर कई लोगों का तो घर की कामकाज में तो समय निकल जाता है, बट इट्स ओके क्योंकि संडेज सैटरडेज ही समय मिलता है जहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे पाते हैं घर पर। तो आप कंटिन्यू कीजिए, वेल अभी तो अर्ली है, आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी तो आप एंजॉय कीजिए ये गाने, रियो मस्ती के गाने रिया के साथ है।

0: स्वीटर रवीश प्रिशा लवीश नबाद परिवार है रोशनवा से जुड़े हुए हमारे साथ. आई होप यू हैविंग अ गुड गुड टाइम. एंड यहाँ पर हमारे साथ ऑल्सो आकाश जुड़े हुए हैं. आप है पॉइंट ऑफ साबले से और गाने आपको बहुत ही पसंद आ रहे हैं. एंड वी ऑल्सो हैव छाया. आप है बिना कैसे और फुलान साथ निभा रही है. नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम भी जाता है. सो चलिए हमारे सभी लिसनर्स को हम बहुत बहुत सारा प्यार देते हैं. एंड नेक्स्ट गाना हम आपके नाम ही डेडिकेट करते हैं.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

संडे मॉर्निंग और चाय, ये कॉम्बिनेशन तो ऑलमोस्ट इमोशनल है। चाय गर्म हो, म्यूजिक सॉफ्ट हो, और घर में सब अभी सो रहे हो, बस फिर क्या चाहिए। अगर आप कॉफ़ी पर्सन हैं तो आपके लिए भी फुल रिस्पेक्ट। आप जो भी चाहे आप

ले सकते हैं कॉफी चाय, कईयों को संडे मॉर्निंग जूस पसंद है, बट अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ आप जरूर ले सकते हैं। क्या है कि जूस लेने से सवेरे सवेरे आई थिंक कई लोगों को एसिडिटी पड़ जाती है, डिपेंड्स आप कौन सा जूस ले रहे हैं, बट जो भी आपको पसंद है यू कैन हैव दैट। लेकिन आज की चाय या कॉफ़ी के साथ एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से हम करेंगे कि आज खुद पर थोड़ा कम

सुकून की, और एक खूबसूरत गाना रिलैक्स पर हमारे साथ रिया के साथ. एंड आपके मैसेजेस भी यहाँ पर और भी सारे आ गए हैं, तो हम थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में लेकर आते हैं. मीनवाइल आप ये गाना एंजॉय कीजिए.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी, 5:46 अभी समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा। छह राशि टाइम शुरू हम करते हैं।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन सुकून और अपनों के साथ है, समय बिताने का है। पुरानी कोई अच्छी याद चेहरे पर मुस्कान लाएगी। काम को लेकर ज्यादा सोचने के बजाय आज खुद को थोड़ा आराम दीजिए। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज घर परिवार से जुड़ी कोई खुशी मिल सकती है। दिल की बात किसी अपने से शेयर करेंगे तो मन हल्का होगा। पैसों के मामले में सोच समझ कर फैसला लीजिए। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपका मूड हल्का फुल्का और खुशनुमा रहेगा। दोस्तों या परिवार के साथ अच्छा समय गुजरेगा। किसी पुराने दोस्त का मैसेज भी आ सकता है, यू नेवर नो। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। घर का माहौल प्यार और सुकून से भरा रहेगा। दिल में चल रही किसी बात का जवाब आज

0: मिल सकता है। लकी नंबर है आज आपका 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज आपके अंदर नई ऊर्जा रहेगी। किसी खास इंसान से हुई बात आपका दिन बना सकती है। बस गुस्से में कोई फैसला लेने से बच के रहिए। लकी नंबर है आज आपका 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: संडे आपको थोड़ा रुकने और खुद को समझने का मौका देगा। अधूरा काम पूरा करने का मन बनेगा। सेहत और आराम को भी समय दीजिए। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज रिश्तों में प्यार और मिठास बढ़ेगी। किसी अपने के साथ खूबसूरत पल गुजरेगा। आज की छोटी खुशियों को दिल से महसूस कीजिए। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज इंट्यूशन यानी दिल की आवाज़ पर भरोसा कर सकते हैं। कोई अच्छी खबर मूड को बेहतर बना सकती है। बीते हुए कल की फिक्र छोड़कर आज का दिन आप एंजॉय कीजिए। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज एडवेंचर और मस्ती का मूड रहेगा। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ स्पॉन्टेनियस प्लान बन सकता है। मुस्कुराहट के साथ दिन शुरू कीजिए। पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा आराम भी जरूरी है। परिवार का साथ आपको सुकून देगा। किसी पुराने काम को लेकर अच्छी प्रगति हो सकती है। लकी नंबर है आज आपका आज आपका लकी नंबर है 8।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज कुछ नया सोचने और अपने लिए नए इरादे बनाने का दिन है। दोस्तों से अच्छी बातचीत होगी और दिल को खुश रखने वाली कोई छोटी सी वजह मिल सकती है आपको। लकी नंबर है आज आपका 10।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज का दिन भागदौड़ से दूर सुकून और अपनों के नाम कीजिए। आपकी क्रिएटिविटी और कल्पना शक्ति अच्छी रहेगी। किसी खास याद से दिल खुश हो सकता है। लकी नंबर है आज आपका 12। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

Tracks with Radio Musty. और जैसे कि हमने कहा था कि हम आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे, तो समय हो चला है, हम आपके मैसेजेस अभी देख रहे हैं। वी हैव माय ऐप है मेबर्ग से, और अभी गाने आप एंजॉय कर रही है और कह रही है कि प्रिपेयर कर रही है खुद को फॉर योर लास्ट संस्कृत पेपर टुडे एंड होप पेपर विल बी अ बिट ईजी। हम यही आशा करते हैं आपके लिए कि आपका ये आखिरी पेपर थोड़ा सा सरल रहे, बट आप पढ़ाई जारी रखिए एंड बीच बीच में हो सके तो गाने आप एंजॉय करते रहिए। दिशा गोदी है हमारे साथ कुतेज से, और कहती है कि जिंदगी खुल के जियो क्योंकि समय या कभी लौट कर नहीं आता, जो दिल चाहे वो करो, अपनों को प्यार दो, खुद को खुश रखो, जो खुशी आज मिल सकती है उसे कल के लिए मत छोड़ो। क्या पता कल का दिन किसके नसीब में हो, ये तो आपने शत प्रतिशत सत्य बात बोली है। इट्स ट्रू कि आज को ही जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, तो आप आज कुछ स्पेशल भी कर सकती है टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। साधना मुकेश लाल माटी से है, नमस्ते आपको एंड एंजॉय कीजिए रेडियो मस्ती के गाने। गुड मॉर्निंग हमारे साथ लक्ष्मी जो चुकी है, आप है गुडलैंड से, और कह रही है कि आफ्टर 3 मंथ 3 महीने बाद, यानी 3.5 महीने बाद, 3 मंथ एंड हाफ आज आप जा रही है मम्मा के घर। उनको बहुत बहुत मिस किया एंड प्लीज़ मम्मा के लिए एक गाना। मम्मा पापा भाई की गन बहन है कविता सीजल एंड आपके पति और बेटी के लिए भी ज़रूर हम नेक्स्ट ट्रैक उनके नाम ज़रूर डेडिकेट करेंगे। एंड यहाँ पर प्रिया हमारे साथ है जुड़ी हुई है। हेलो प्रिया, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग आपको। कह रही है कि आज मी डे है, ये मी डे क्या है? लेट्स फाइंड आउट। जस्ट I, me and myself, that's wonderful, pampering yourself आज। और अभी एक पिकनिक की तैयारी में लगी हुई है, फ्राइड राइस, स्नैक, जूस, ये सब, ये तो बहुत बढ़िया है। आप फुल ऑन संडे को एंजॉय करने वाली है, सो हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम। और हमारे साथ भी ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए। वी हैव गॉट द नेक्स्ट ट्रैक टू ऑल आवर लवली लिसनर्स एंड लेट मी टेल यू दैट इसके बाद आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। रेडियो मस्ती।

0: समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको अभी।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। कल घोंगुप के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की दिशा में एकत्र हुए। ग्राम परिषद ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। स्थिति से अवगत होने के बाद भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद परिषद के सदस्यों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर जाने वाले हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रिजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है। सुबह के 9:30 से लेकर दोपहर के 1:00 तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। यह इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 व 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मॉरिशियन को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने की के लिए गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@gov.mu.org पर भेजे जा सकते हैं। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पास आग और काले धुएं का बड़ा गुबार दिखा। सऊदी ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार सुबह राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिसाइल को रास्ते पर ही रोक दिया। और अंत में मौसम का हाल।

0: आम हालत मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम पर पाया जाने वाला एक जोरदार एंटी साइक्लोन हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा अगले 24 घंटों के लिए। पूर्वानुमान आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय दक्षिणी ढलानों पर हल्की सी बारिश होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उधर तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:01 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 6:05 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: तो देश विदेश की नई खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 विस्तार पूर्वक आप प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे, तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
3: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

Chillax with Radio Musty. देखते देखते संडे की सुबह थोड़ी और रोशन हो चुकी है. गुड मॉर्निंग सभी को. इट्स अभी को क्या है, अभी तो रिलैक्स का सेकंड आवर है. 6:12 हो चुका है और आप सुन रहे हैं चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर. फर्स्ट आवर में हमने सदाबहार गाने सुने. संडे को शुरू किया है खूबसूरत सदाबहार मेलोडीज के साथ और ब्यूटीफुल यादों के साथ. और अब आ गए हैं हम सेकंड आवर में और सेकंड आवर की शुरुआत हुई एकदम खूबसूरत अंदाज में. वो आंख ही क्या, कुछ गाने ना सीधा दिल से बात करते हैं. संडे की सुबह वैसे ही थोड़ी ड्रीमी होती है और जब साथ में ऐसे गाने हो तो लगता है कि समय थोड़ा रुक जाए.

आज का संडे किसी रेस का हिस्सा नहीं है, आज बस म्यूजिक को फील करना है, अपने आसपास की खूबसूरती को नोटिस करना है जो छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है, और उन लोगों के लिए थैंकफुल होना है जो हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत और स्पेशल बनाते हैं। तो चाय रेडी है, कॉफ़ी रेडी है, या अभी भी आप ब्लैंकेट के अंदर संडे का मज़ा ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, रिलैक्स कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती, ब्यूटीफुल संडे, ब्यूटीफुल म्यूजिक और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर। योर डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499-1294।

चलिए इसी गाने के साथ हम विश करते हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू बीबी लक्ष्मण. आप है मोसिल मासैतंद्रे से और बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम डॉटर केशिनी, बेटा केशव, पति है राजेश, तो लक्ष्मण परिवार जो है मोसिल मासैतंद्रे.

से एंड हमारी ओर से भी आपको हैप्पी वाला बर्थडे। आई होप कि आपका जन्मदिन बहुत बहुत बहुत ही अच्छे से बीते। एंड यस, हमारे साथ ऑल्सो दीपक जुड़े हुए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग आपको दीपक। ये गाना आपके नाम भी जाता है। एंड इसी गाने के बाद आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन।

अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 20 सितंबर 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कल घोंघब के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए। मंत्री शकील मोहम्मद ने किया हस्तक्षेप। फाइनेंशियल क्राइम कमीशन इस रविवार को गेजुए में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है। सुबह के 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मॉरिशियन को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का है समय। और विदेशी स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की है कि वे जल्द ही जल्द एक नया AI सलाहकार नियुक्त करेंगे और देश में एक संघीय AI फोर्स का गठन भी करेंगे। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कल घोंघब के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ग्राम परिषद ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। स्थिति से अवगत होने के बाद आवास व भूमि मंत्री शकील मोहम्मद परिषद के सदस्यों से मिलने और स्थिति का जायजा करने के लिए

0: मौका पर मौके पर जाने वाली है। मंत्री शाकिल मोहम्मद को सुनते हैं।
1: Et mon pou est là, une side visite là-bas, mais avant moi de faire side visite, mon content tout le temps qui m'a fini demande bande surveilleuse du ministère, elle là-bas, en avance, fait tout un survey, vient de moi tout un élément d'information, parce que quand on arrive là-bas, on a envie qu'il y ait une décision capable de prendre rapidement pour l'implémentation, et une bonne décision là, et non pas, pour la première fois, pour le découvrir l'Amérique. Bon, pas content ça. Bon, content qui, quand nous allons avec tous les éléments en main, et nous amène bonne solution qu'il se doit. Sans qu'il nous pénalise aucun public mauricien et sans qu'il nous aussi cause un problème légal avec Benjamin Kenenbaï déjà.
0: मंत्री का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे इस बात से इनकार करते हैं कि ये विकास सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच की कीमत पर हो। वे याद दिलाते हैं कि कुछ लीसेस साल 2014 के चुनावों से पहले और पुरानी सरकार के कार्यालय के दौरान दिए गए थे। उनका उद्देश्य सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच को बहाल करना और मॉरिशियनों को समुद्र तट तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की अनुमति देने के लिए नए रास्तों की पहचान करना है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रेजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है, सुबह के सरहे 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार यानी कि 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। ये इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपया जुटाए गए थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का उद्देश्य है लागू प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मॉरिशियन शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कमिटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोटवी के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@govmu.org पर भेजे जा सकते हैं। ये परामर्श समिति को अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न राय एकत्र करने की अनुमति देगा। ज्यादा विस्तार गीता सुनारायण के साथ।
2: राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मॉरिशियन शामिल करने के मामले पर इस समय सलाह मशवरा जारी है। सिलेक्ट कमेटी बनाए जाने के बाद अब आम जनता से अपने सुझाव देने को कहा गया है। राष्ट्रसभा की स्पीकर शिरीन उमिरोदी जिफ्रा कहती हैं, संसद में प्रधानमंत्री का एक मोशन था जिससे एक सिलेक्ट कमेटी कायम की गई। इसमें संसद के सदस्य हैं जिन्हें मैंने चुना है और ये सिलेक्ट कमेटी निरंतर बैठक लगा रही है, पर मैं इसमें नहीं हूँ। ये गोपनीय तरीके से काम करती है, बंद कमरे में बैठक लगती है। लोग इसमें अपने प्रस्ताव भेजकर भाग ले सकते हैं लिखित रूप से 22 सितंबर तक। ये प्रस्ताव राष्ट्रसभा के क्लर्क को भेजने चाहिए ताकि सिलेक्ट कमेटी विचारों पर अमल कर सके। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख मंगलवार 22 सितंबर रखी गई है। सुझाव लिखित रूप में ईमेल के जरिए या इस पते पर भेजे जा सकते हैं, क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस या फिर मेल के जरिए clerk@govmu.org पर। ये प्रक्रिया कमेटी को अलग अलग राय जानने में मदद करेगी जिसके बाद वो अपना काम आगे बढ़ा सकेगी।
0: प्रतिष्ठित गोंकू 2026 की दौड़ में अपने उपन्यास क्रोनिक द रॉयम पेजू के साथ आगे चल रही लेखिका आनंदा देवी इस सप्ताह औती चैनल के कार्यक्रम 28 मिनट की मेहमान थी। पत्रकार एलिजाबेथ कैं द्वारा लेखन और मॉरिशस की पहचान के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछे जाने पर हमारी देशवासी ने मॉरिशस में क्रियोल भाषा को दिए जाने वाले स्थान पर विशेष रूप से स्पष्ट और गहरी दृष्टि साझा की। हमारे सहयोगी जॉन फ्रांसवा ने लेखिका आनंदा देवी से बात की, उनको सुनते हैं विवरण तीना बदना का।
3: le

0: créole et le ciment de ce peuple et paradoxalement est très déconsidéré comme langue.
1: Créole इस देश के लोगों को जोड़ने का मुख्य माध्यम है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई मॉरिशियसवासी इसे एक

0: पुस्तकें तैयार करने के लिए कहा गया है जो पहले नहीं थी और मेरे लिए ये काम करना बहुत खुशी और बड़े सम्मान की बात है।
1: De proposer des textes pour des manuels qui n'existaient pas avant et c'est un grand plaisir, un grand honneur aussi pour moi de le faire.
2: इस रविवार 20 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व सफाई दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीनअप डे के अवसर पर कचरे और अवैध डंपिंग के खिलाफ संघर्ष करने की दिशा में मॉरिशस में कई पहल की जा रही है। साफ सफाई अभियानों से आगे बढ़कर गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से आदतों में एक स्थायी बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को मजबूत करना चाहते हैं। उर्वशी बिकारी भंजन की रिपोर्ट पर तीना बुदना का विवरण।
0: मॉरिशस में हर साल लगभग 550,000 टन कचरा पैदा होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए कई संस्थाएं जगहों की सफाई करने और लोगों को बेहतर आदतों के प्रति जागरूक करने के लिए आगे आ रही है। इसका मकसद है कि पर्यावरण की सुरक्षा को एक राष्ट्रीय सोच बनाया जाए। लेट्स डू इट मॉरिशस के कंट्री लीडर क्रिस अपादू हमसे इस बारे में बात कर रहे हैं।
3: 2024 En une demi-journée, nous ne collectons 65 tonnes de déchets.
0: 2024 में सिर्फ आधे दिन में 65 टन जंगली कचरा इकट्ठा किया गया था। मैं घरेलू कचरे की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसे कचरे की गाड़ियों द्वारा नियमित रूप से उठाया जाता है। इन 65 टन कचरे में ये देखकर हैरानी होती है कि 8 टन प्लास्टिक और बहुत सारा कपड़ा कचरा भी शामिल था।
3: 8 टन de plastic parmi ces 65 tonnes qui nous collectaient, mais il y a aussi beaucoup de déchets textiles.
0: सफाई अभियानों के अलावा संस्थाएं हर इंसान की जिम्मेदारी पर जोर देती है। कचरा कम करना, खुले में कचरा फेंकने से बचना और सार्वजनिक जगहों को साफ रखना।
3: Donc c'est un travail qui nous fait pendant plus qu'une décennie, actif sur le terrain, pas seulement pour amener une campagne de nettoyage, mais aussi pour sensibiliser la population.
0: तो ये एक ऐसा काम है जो हम एक दशक से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं। जमीन पर उतरकर काम करना सिर्फ सफाई अभियान चलाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी है। हमारा मकसद कम से कम 5% मॉरिशस की आबादी तक पहुंचना है क्योंकि ये लगभग 65,000 लोग होते हैं और वे मॉरिशस में एक बड़ा और असली बदलाव ला सकते हैं। हमने शिक्षा और जागरूकता के अभियान चलाए खासकर स्कूलों में क्योंकि हमारा मानना है कि इसकी शुरुआत बहुत छोटी उम्र से ही होनी चाहिए।
3: Parce que nous pensons qu'il est important que ça commence à un très jeune âge.
0: एक ऐसी मुहिम जिसका मकसद लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है और आगे चलकर मकसद ये है कि हर मोहल्ले में लोगों की बेहतर भागीदारी के साथ खुले में कचरा फेंकने के खिलाफ इस लड़ाई को एक टिकाव प्राथमिकता बनाया जाए।
2: मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी के दरवाजे पार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। चुना, स्टॉफिश, दोगाद हमारी कई महासागरीय मछलियों को आज कुछ यूरोपीय मंडियों खासकर इनमें इंग्लैंड भी शामिल है उनके द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। ये इस क्षेत्र के लिए चिंताजनक स्थिति बन गई है और यह मॉरिशस को नए बाजारों की तलाश करने विशेष रूप से एशिया की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। एक्वाकल्चर की प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से भूमध्य सागर में चूना मछली पालन इन कठिनाइयों का कारण बनने वाले कारकों में से एक बताई जा रही है। मछुआरा संघ के प्रतिनिधि जुडेक्सा रामफल के अनुसार सरकार को मौजूदा समझौतों के तहत यूरोपीय बाजार में मॉरिशस की मछली की पहुंच का बचाव करना चाहिए, परंतु अगर ये अवसर कम होते हैं तो मॉरिशस को अपनी विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन प्रक्रिया में तेजी लानी होगी और एशियाई मंडियों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। जुडेक्स रामफुल्ला और फैब्रिस डेविड को सुनते हैं जिनसे बात की है हमारी सहयोगी शबनीज उजिया ने।
4: Aujourd'hui, l'Europe, même l'Angleterre, les pays bien, bon, en passant avec l'île Maurice, parce qu'il a cause.
0: आजकल यूरोप यहां तक कि इंग्लैंड भी ये कह रहा है कि मॉरिशस से मछली लेना बंद करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप खुद अपने यहां खासकर मेडिटेरेनियन के इलाके में बड़े पैमाने पर मछली पालन कर रहा है। वहां समुद्र में बहुत बड़े बड़े पिंजरे बनाए गए हैं और चूना जैसी

0: मछलियों का भी बड़े पैमाने पर पालन किया जा रहा है। अगर हम अपनी मछली बाहर भेजते रहेंगे तो हमें यूरोप से भी ये मांग करनी चाहिए कि वे हमारे साथ बराबर का सहयोग करें। यूरोपियन यूनियन का मॉरिशस के साथ समझौता भी है, इसलिए हमारी सरकार को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए ताकि यूरोप के देश हमारे मछली खरीदते रहे। अगर यूरोप हमारी मछली लेना बंद करता है तो फिर हमें एशिया के बाजारों की तरफ देखना पड़ेगा, जैसे ताइवान, थाईलैंड और सिंगापुर। मॉरिशस मछली का, खासकर चूना का, मुख्य रूप से यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को निर्यात करता है। ये सब एक मत्स्य पालन समझौते यानी फिशरीज एग्रीमेंट के तहत होता है, जिसमें हमारे समुद्री क्षेत्रों में पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा तय होती है। जब वे हमारे समुद्र में मछली पकड़ती है तो उसका एक हिस्सा सीधे ताजी मछली के रूप में बाहर भेज दिया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा मॉरिशस के कारखानों में प्रोसेसिंग के लिए जाता है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के अलावा भी हमारे पास मछली बेचने के अन्य रास्ते हैं। हम ताइवान और अमेरिका को भी मछली भेजते हैं। ये बाजार पहले से मौजूद है और जाहिर है कि इन्हें और आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हम फिशिंग सेक्टर को और विकसित और आधुनिक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पारंपरिक मछुआरे यानी आर्टिजानल फिशरमैन धीरे धीरे अर्ध औद्योगिक मछुआरे यानी सेमी इंडस्ट्रियल फिशरमैन और खुद कारोबारी बने यानी खुद ठेकेदार बने।
1: विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर इस बात की घोषणा की है कि वह जल्द ही एक नया एआई सलाहकार नियुक्त करेंगे और देश में एक संघीय एआई फोर्स का गठन भी करेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी इन पहलों के क्रियान्वयन या रूपरेखा को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। रूस में संसदीय चुनाव के दूसरे दिन शनिवार को भी मतदान जारी रहा। 3 दिनों की मतदान प्रक्रिया में यूक्रेन के कब्जे वाले 4 क्षेत्रों में भी अन्य रूसी क्षेत्रों की तरह वोट पड़ रहे हैं। यूक्रेन का हिस्सा रहे डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़ापोरिज़िया के हिस्सों को रूसी सेना ने बीते 4.5 वर्षों के युद्ध के दौरान जीता है। इसके बाद रूस ने सितंबर 2022 में इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाकर उन्हें औपचारिक रूप से रूसी संघीय में शामिल कर दिया था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पास आग और काले धुएं का बड़ा गुबार दिखा। सऊदी ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार सुबह राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने मिसाइल के रास्ते में ही रोक दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार कई ईरानों में काफी देरी हुई और कुछ ईरानों को भी रद्द कर दी गई है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम पर पाया जाने वाला एक जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा सिवाय दक्षिणी ढलानों पर हल्की सी बारिश होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। रात के दौरान आसमान साफ दिखेगा, हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगुनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस

इसके बीच तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:01 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 6:05 पर। चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कल घाघप के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए, मंत्री शाकिल मोहम्मद ने किया हस्तक्षेप। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को गेजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है, सुबह के 9:30 से दोपहर के 1 तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मॉरिशिया को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है, इस मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हित धारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का है समय। और विदेश स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर इस बात की घोषणा की है कि वे जल्द ही एक नया एआई सलाहकार नियुक्त करेंगे और देश में एक संघीय एआई फोर्स का गठन भी करेंगे। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। रॉल रोड पोलोजी में 78 साल के 78 years old के श्री वासुदेव मगन, श्री वासुदेव मगन जिन्हें सब लोग रोहित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह के साढ़े नौ बजे उन्हीं के घर रारूत पोलोजे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। शिवाजी रोड पुज्जी फ्लैक में 70 साल की 70 years old की श्रीमती राजकुमारी बिस्नोट जिन्हें सब लोग चिकिया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकी बहन श्रीमती फूलमणि बिस्तुनित के घर शिवाजी रोड पुज्जी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवाजी पुज्जी फ्लैक की श्मशान भूमि ली जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड बुले रूज फ्लैक में 94 साल की 94 years old की मिसिज हनम मसूदी पैदाशी नाम सुहादत और जिन्हें सब लोग दादी खैरून के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के मकान रॉयल रोड बुले रूज फ्लैक से निकाल कर दफनाने के लिए रिशमा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। कोलंबो रोड लॉन्ग माउंटेन में 70 साल की 70 years old की श्रीमती जयवंती राम पैदाशी नाम गुंडा और जिन्हें सब लोग शीला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री राकेश राम के घर कोलंबो रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घाघब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड बनान क्लूनी में 72 साल के 72 years old के श्री देवीदीन बाबूलाल जिन्हें सब लोग अनिरुद्ध के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती तारा बाबूलाल के घर रॉयल रोड बनान क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए

बनान क्लिनिक शमशान भूमि ले जाए जाएगी क्रमेशन टुडे एट 11 AM बिकू लेन शामुनी में 65 साल के 65 years old के श्री ज्ञानदेव बिकू जिन्हें सब लोग मालबाओ के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर बिकू लेन शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिव्या डिगाले की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM बिस्वा लेन प्लेमायो में 50 साल की 50 years old के श्री जितेन मुस्लिगादू जिन्हें सब लोग विनय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उन्हीं के घर बिस्वा लेन प्लेमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM बारो लेन अंग्रेमेंशियल में 80 years old की श्रीमती हीरावंती रिसल पैदाशी नाम राम गुलाम और जिन्हें सब लोग दादी माइबो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके बेटे पंडित अनिरुद्ध मिश्रा रिसल के घर बारो लेन अंग्रेमेंशियल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM नंबर 49 रॉबर्ट एडवर्ड हॉट ट्रेफल रॉजिल में 58 years old की 58 years old की श्रीमती आरती कुमारी बंधु पैदाशी नाम सिबोगत और जिन्हें सब लोग अमिता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके पति श्री धीरज बंधु के घर नंबर 49 रॉबर्ट एडवर्ड हॉट ट्रेफल रॉजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM रॉयल रोड ग्लेन पार्क वाकवा में 74 years old की श्रीमती बाईजा बाई एसु पैदाशी नाम गणेश और जिन्हें सब लोग बाईजा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड ग्लेन पार्क वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:00 PM एवेन्यू ओकिडे कैट्रोबोन में 91 years old की मिसिस फातमा बीबी महमूद सोरेफान पैदाइशी नाम नहबू और जिन्हें सब लोग फातमा नहबू सोरेफान के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई है। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उन्हीं के मकान एवेन्यू ओकिडे कैट्रोबोन से निकालकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:00 PM सुकारा लेन ब्रेजेवेजिया में 54 साल के 54 years old के श्री विश्वराज सुकारा जिन्हें सब लोग मिमी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनिता सुकारा के घर सुकारा लेन ब्रेजेवेजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचुए की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM लाकावेन नंबर दो वाकवा में 86 years old के श्री श्रवण कुमार आजारी सिंह जिन्हें सब लोग मिगदत के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के सवा एक बजे उन्हीं के घर लाकावेन नंबर 2 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोलफेरिनो की शमशान भूमि ले जाए जाए

0: Iggy, cremation this afternoon at 1:15. La cour des vœux, petit verger Saint-Pierre, mais la cour des vœux, petit verger Saint-Pierre, mais et qui en B. Sal qui 91 years old qui Shri Sukdev Oseni, Shri Sukdev Oseni, जिन्हें सब लोग बासदेव के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थ है आज दोपहर के 2 बजे, आज दोपहर के 2 बजे उन्हीं के घर लाकू देवू पेशी व्याजे सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों सौ सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रोमेशन टूडे एट 2 PM. मोसेलमो वीआरएस नंबर 11 एमिताज फिनिक्स में, मोसेलमो वीआरएस नंबर 11 एमिताज फिनिक्स में 72 साल के 72 years old के श्री रामराज दौलत, श्री रामराज दौलत जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सपैर के 3 बजे, आज सपैर के 3 बजे उन्हीं के घर मोसलमान वीआरएस नंबर 11 एमिताज फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंसोंस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टू फ्यूनरल टुडे एट 3 PM. बोनेड रोड 8 मील ट्रियोलेमें, बोनेड रोड 8 मील ट्रियोलेमें 60 साल की 60 years old की श्रीमती सरस्वती मुचिया, श्रीमती सरस्वती मुचिया पैदाशी नाम तानी और जिन्हें सब लोग बानिता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे उनके बेटे श्री वेदाशय सूरज मुच्छा के घर बुनेट रोड विच्यमिल त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रमिशन टुडे एट 3 PM. इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Welcome to RM2
3: Radio Musti.
4: North, South,
5: 103.5,
6: East, West,
7: 96.4,
8: Center,
9: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
10: Goody good morning, Saviko. Suprabhat. The khari milate chaliye subah ke theek 7:01.
11: Chillax. With Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: And just like that, Sunday morning is fully awake. Good morning, सभी को. आप सुन रहे हैं Relax Only on Radio Musty. और अब हम एंटर कर रहे हैं आज के शो की थर्ड आवर में, यानी कि आखिरी आवर में. संडे का दिन, वीकेंड का आखिरी दिन, लेकिन मूड बिल्कुल लास्ट डे ऑफ द वीक वाला नहीं. बिकॉज लुक एट दैट सनशाइन. आज तो सूरज भी कह रहा है, कम ऑन गेट अप, वो वीकेंड अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट डे ऑफ वीकेंड अभी तक जारी है. अभी तो स्टार्ट हुआ है. आसमान ब्राइट है, हवा ब्यूटीफुल, मूड फ्रेश और रेडियो मस्ती पर म्यूजिक फुल ऑन. तो जो लोग अभी तक बेड हैं, गुड मॉर्निंग आपको. जो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग. जो फैमिली के साथ है, गुड मॉर्निंग टू यू टू. और जो संडे को ऑलरेडी एडवेंचर मूड में निकल चुके हैं, आपको तो डबल गुड मॉर्निंग. वेल, आज का प्लान जो सिंपल है, नो अननेसेसरी स्ट्रेस, नो मंडे की टेंशन, नो कल से क्या होगा थिंकिंग. आज संडे है तो आज एंजॉय करना है. वीकेंड का लास्ट डे है तो क्या हुआ, लास्ट डे को भी फर्स्ट क्लास बनाना है. तो वॉल्यूम आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए. कार में है तो म्यूजिक के साथ आप सिंग भी कर सकते हैं, गा सकते हैं. घर में है तो थोड़ा डांस भी अलाउड है, क्योंकि हम गाने तो ऐसे ही लेकर आए हैं. सो रिलैक्स इज ऑन, संडे इज ऑन एंड सनशाइन इज ऑन. और आपकी वीकेंड एनर्जी भी ऑन होनी चाहिए. लेट्स मेक दिस संडे मॉर्निंग ब्राइट, म्यूजिकल एंड एब्सोल्युटली अनफॉरगेटेबल. नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499 1294.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Right, Sunday check करते हैं यहाँ पर. आप बताइए कितने लोगों ने आज अलार्म बंद करके सोचा कि बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 45 मिनट बन गए पता ही नहीं चला. बट ऑनेस्टली दैट्स व्हाट संडे इज़ फॉर. आज कोई गलत नहीं, आज थोड़ा लेट उठना है तो उठो, ब्रेकफास्ट लेट करना है करो, बीच जाना है जाओ, ड्राइव पे निकलना है तो चलो, फैमिली के साथ लंच प्लान है तो एंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ मिलना है मेक द प्लान, और अगर कुछ भी प्लान नहीं है परफेक्ट. कभी कभी बेस्ट संडे वो होता है जिसका कोई शेड्यूल नहीं होता, बस मूड डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्या करना है. और आज वेदर भी तो फुल कोऑपरेशन दे रहा है, ब्राइट सनी मॉर्निंग. ऐसे दिन में घर की कर्टेंस खोलकर सनलाइट अंदर आने दीजिए, आप म्यूजिक प्ले कीजिए, फेवरेट आउटफिट पहनिए, ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए और एक काम जरूर करो, स्माइल, क्योंकि मंडे तो कल आएगा. मंडे को हम मंडे को देख लेंगे, आज तो संडे है. सो आज का मोटो है ईट Well, love more, love harder, drive safely, dance like nobody's watching you and enjoy every little moment. Weekend ka last day hai, so let's not spend in counting down. Let's make it count. Chillax continues a bohat sari achi achi vibes ke saath ho, and with a good music, of course. Ooh, meri zindagi hai. Chillax. With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: वेल चुक योर टाइम 7:30 बज रहे हैं एग्जैक्टली और स्टूडियो में आ गए हैं विकास जी, तो चलिए उनसे सुनते हैं गर्मा गर्म चटपटी स्पोर्ट्स खबरें। गुड मॉर्निंग आपको विकास जी।
4: गुड मॉर्निंग रिया एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस। संडेज आर नॉर्मली फन डेज और ये फन शुरू हुआ कल रात से ही इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जहाँ इंग्लैंड की चैंपियन टीम आर्सेनल को लगा जोर का झटका। ब्राइटन के जांबाज सिपाहियों ने द गनर्स को 3-3 बार धूल चटाई, यानी ब्राइटन 3 आर्सेनल 0। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा है, इट्स द फर्स्ट मेजर शॉक ऑफ द सीजन और पहली हार आर्सेनल की। खुद कोच मिकेल आर्टेटा हैरान रह गया ब्राइटन के ब्रिलियंस के सामने। इसी ब्राइटन ने अभी सप्ताह के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी लहूलुहान किया था 2-0 से हारने के बाद, 3-2 से उसकी जीत हुई थी। और कल ब्राइटन ने 3 गोल दागे आर्सेनल पर। खेल के 31st मिनट पर पास्कल ग्रॉस का एक पहला गोल, फिर फर्स्ट हाफ की समाप्ति पर चरामपुलोस कोस्टुलास का एक दूसरा गोल और सेकंड हाफ के 57th मिनट पर केमा एंड्रेस ऑन टारगेट। ब्राइटन 3 आर्सेनल 0। टोटेनहम हॉटस्पर अभी भी एक भी मैच जीत नहीं पा रहा है। कल हारते हारते वो हार गया क्योंकि एस्टन विला तीन गोलों से आगे थी। 45वें पर योआन मंजाम्बी ऑन टारगेट पहला गोल, फिर सेकंड हाफ के 67वें मिनट पर निकोला जैक्सन का दूसरा गोल और 79वें मिनट पर एमिलियानो बुएंडिया का एक शानदार गोल। एस्टन विला 3-0 से आगे। केवल 86 मिनट पर जाकर कोनो गलागे ने एक गोल कम किया और ये टोटेनहम का पहला प्रीमियर लीग गोल था इस सीजन 5 मैचों के बाद, कोनो गलागे का पहला गोल। और इंजरी टाइम में यान पोल वान हेक का एक और गोल, फिर भी टोटेनहम हार गया। टोटेनहम 2 एस्टन विला 3, ब्राइटन 3 आर्सेनल 0। एवर्टन के द टॉफीज ने कल इप्सविच टाउन को 1-0 से परास्त किया, गोल कर्टेसी ऑफ चियानो बैरी खेल के 11वें मिनट पर। फिर 67वें मिनट पर इसाहाकू फातावी को मिला रेड कार्ड इप्सविच टाउन की ओर से। एवर्टन 1 इप्सविच 0। न्यूकासल यूनाइटेड ने कल अपने जेम्स पार्क में हल सिटी को 2-1 से हराया। जोसेफ विलोक खेल के 3rd मिनट पर, 7वें मिनट पर लेविस हॉल ऑन टारगेट, 45वें पर योआन विसा ने पेनाल्टी मिस की, तब जाकर खेल के 65वें मिनट पर मोहम्मद अली चो ने हल सिटी के लिए एक गोल कम किया जो पर्याप्त नहीं रहा। न्यूकासल 2

हल सिटी एक और कल के आखिरी मुकाबले में एवे जाकर कोवेंट्री सिटी ने नॉटिंगहम फॉरेस्ट को 1-0 से परास्त किया। बाकी मैचों में आज शाम 4 मैच खेले जाएंगे। आज शाम 5 बजे बोर्नमुथ वर्सेस लिवरपूल। एंटोनी इराओला की पुरानी टीम अक्सर लिवरपूल से मार खाती आई है, किंतु जो अक्सर होता है वो बार बार नहीं होता, और जब पानी सर से ऊंचा चढ़ जाता है तब खतरा मंडराने लगता है और आदमी को टीम को एक्शन लेना पड़ता है। इसलिए सावधान, बोर्नमुथ वर्सेस लिवरपूल आज शाम 5 बजे। उसी समय लीड्स यूनाइटेड खेलेगी क्रिस्टल पैलेस के विरुद्ध। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस सन्डरलैंड, ये मैच भी आज शाम 5 बजे के लिए निर्धारित है। और आज रात 7:30 बजे 7:30 PM फुलहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। लीग टेबल में आर्सेनल की हार ने उसे सेकंड पोजीशन पे भेज दिया, 12 अंक लिए। इतने ही अंक मैनचेस्टर सिटी के पास भी है जो अब टॉप पोजीशन पे है गोल एवरेज के बल पर। सो सिटी 12, आर्सेनल भी 12 अंक, ब्राइटन तीसरे स्थान पर 10 अंक, ब्रेंटफोर्ड चौथे पोजीशन पर है 9 अंक लिए, एवर्टन के पास भी 9 अंक, लीड्स यूनाइटेड अभी छठे पोजीशन पर है 8 अंक लिए। आज उसके जीत की स्थिति में वो दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर भी आ सकती है। और लिवरपूल अभी 10वें पोजीशन पर है 6 अंकों के साथ, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 13वें स्थान पर है केवल 4 अंक लिए 4 मैचों में। सो इतना सब कुछ आज के मैचों को लेकर। बात करें अब स्पेन के लालीगा की, जिसमें राफिनिया को रोक सको तो रोक लो और एफसी बार्सिलोना को टोक सको तो टोक लो। इट्स सेविलिया 1, एफसी बार्सिलोना 3। ब्राजीलियन चैंपियन राफिनिया ने फिर एक और हैट्रिक स्कोर की। अभी बुधवार को ही इसी राफिनिया ने रेसिंग सांतांदर पर 3 गोल दागे थे, यानी कि 2 मैचों में 6 गोल। राफिनिया ऑन टारगेट। बार्सिलोना अब रियल मैड्रिड से 6 अंक आगे निकल आया है, जो आज रियल मैड्रिड आज रात एथलेटिको मैड्रिड से लोहा लेगा शाम 6:15 बजे से ही। इट्स ए मैड्रिड डर्बी बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड। बाकी नतीजे, ओसासुना 1, रेयो वालेकानो 1, एथलेटिक 0, अलावेज 0। सेल्टा वीगो ने रेसिंग सांतांदर को 5-0 से पछाड़ा, पाब्लो ड्यूरान का एक डबल फॉर सेल्टा वीगो। इटली के सेरी आ में इंटर मिलान बाल बाल बचा, वो 2-0 से पिछड़ रहा था, फिर ड्रॉ रिजल्ट, यानी एएस रोमा 2 इंटर मिलान 2। मानु कोने का एक डबल इधर से और लोतारो मार्टिनेज का एक डबल उधर से मैच ड्रॉ पर संपन्न हुआ। वेनेजिया 0, एसएस लाजियो 2, उदिनेजे 0, कागलियारी 1, बोलोनिया 1, टोरिनो 1। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बोरुशा डॉर्टमुंड की जीत हुई स्टुटगार्ट के मैदान पे 1-0 से, गोल कर्तेसी ऑफ मैक्सिमिलियानो बायर। तो कल बोरुशा मंचनगढ़बैक हार गई अपने होम मैदान पे। बोरुशा मंचनगढ़बैक 3, माइंस 4, एंट्राक फ्रैंकफर्ट 2, फ्रीबर्ग 2, हैमबर्ग एसवी 2, एफसी कोलोइन 1 और वर्डर ब्रेमन 3, ऑक्सबर्ग 2। फ्रांस के लीग 1 में न्यूली प्रमोटेड टीम पारी एफसी ने कल फिर जीत हासिल की। 5 मैचों में 3 विक्ट्रीज, 3 विंस, 2 ड्रॉ, एक भी मैच अभी तक नहीं हारा है। पारी ने कल स्ट्रासबुर्ग को 2-1 से हराया। अंजे 2-3-0, लेमन 2, लोरियन 1। ओलंपिक दे लियोन ने रेन को 4-0 से तोड़ा, अर्नेस्ट नोलामा का एक डबल। लियोन 4, रेन 0 और टूलूज 3, ले हावर 2। बता दें कि आज रात नॉट टू मिस क्लासिकों का क्लासिक स्टाद विलोड्रोम में धुआंधार मुकाबला। इट्स गोइंग टू बी ओलंपिक दे मार्सेई वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन। सो इंग्लैंड को छोड़कर टर्किश सुपर लीग में अपना कमाल दिखा रहा है मोहम्मद सलाह, जिसने कल गतासराय के खिलाफ एक शानदार हैट्रिक स्कोर की, 3 गोल प्लस 1 असिस्ट। मोहम्मद सलाह इज ए लिविंग लेजेंड। ट्रैबज़ोनस्पोर 4, गतासराय 0। स्कॉटलैंड में भी एक आज दोपहर 3 बजे क्लासिक मुकाबला बिटवीन सेल्टिक एंड रेंजर्स, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश प्रीमियर लीग में। स्थानीय फुटबॉल में आज कुसाफा
अंडर 20 चैंपियनशिप के अंतर्गत मॉरिशस की हमारी अंडर 20 टीम अपना दूसरा मैच खेलने उतर रही है। इस बार सेशल्स के खिलाफ ये मैच मापुतो के स्टाडियो दे जिम्पेटो में खेला जाएगा। कोसाफा अंडर 20 चैंपियनशिप के अंतर्गत पहले मैच में मॉरिशस

की हार हुई थी 1-0 से नामीबिया के विरुद्ध। आज सेशल्स का सामना करने उतर रहे हैं हमारे बेबी बॉयज। एयर बैडमिंटन में मॉरिशस को मिला चांदी का पदक। मेंस ट्रिपल प्रतियोगिता में आतिश लुबा और साथियों ने सेमीफाइनल में इजिप्ट को 3-2 से हराया, किंतु फाइनल में वे बेना के खिलाफ हार गए 3-0 से। सो चांदी का पदक, सिल्वर मेडल, हार्दिक बधाई। जबकि इसी में हमारी लड़कियों ने भी अच्छा

0: मुकाबला ब्लैक कैरोल ग्रां बे से है। चेल्सी डूबा, आर्सेनल भी डूबा, अब और कौन डूबेगा और कौन बचेगा? देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.

7:52 हो चला है और ये टाइम तो बहुत ही जल्दी जल्दी कट रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए कि संडे को वेस्ट मत कीजिए बाय वरिंग अबाउट मंडे। ये हम कब से कह रहे हैं, मंडे अपने टाइम पर आ जाएगा, आज संडे को संडे रहने दीजिए। अगर आज आपके पास एक फ्री आवर है उसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना ज़रूरी नहीं, कभी कभी रेस्ट भी प्रोडक्टिव होता है। आज अपने फेवरेट गाने आप सुनिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, पेरेंट्स के साथ बैठिए, पार्टनर के साथ कॉफ़ी पीजिए, फ्रेंड्स को कॉल कीजिए, या बस ऐसे ही आप खड़े रहकर सनशाइन फील कर सकते हैं। वैसे इट्स रियली गुड वेदर आज, आप ज़रूरी से एंजॉय कीजिए। लाइफ बहुत बार बड़े मोमेंट्स का वेट करते करते निकल जाती है, लेकिन हैप्पीनेस वो तो छोटी छोटी चीज़ों में होती है, आज की सनलाइट में, आज के ब्रेकफास्ट में, आज की म्यूजिक में, किसी अपने की स्माइल में, और उस फीलिंग में जब आपको ऐसा लगता है कि यार लाइफ इज सो गुड ना, छोटी छोटी चीज़ों में ही आप संतुष्टि मिल जाती है, आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाती है। तो आज वही फीलिंग आप पकड़ के रखिए, वीकेंड का आखिरी दिन है, मेक इट अ ब्यूटीफुल वन, एंड अपनी एनर्जी वहीं पर आप खर्च कीजिए जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी वहाँ पर, बिकॉज एनर्जी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। समय रहते शायद कई लोगों को पता चल जाता है, कईयों को नहीं पता चलता, इट्स टोटली फाइन। आप एंजॉय कीजिए आज का ये दिन, योर संडे, मेक इट अ ब्यूटीफुल वन। स्पेशली अगर हमारे साथ कनेक्टेड है तो आई एम श्योर कि ये दिन बहुत ही ब्यूटीफुल कटेगा। इट्स योर रिलैक्स रिया के साथ, और ये हम क्या देख रहे हैं कि अब तो

0: जाने का समय भी हो चला है। आई होप यू हैड अ गुड टाइम हमारे साथ चिलैक्स, 3 घंटे का चिलैक्स। आई एम श्योर कि आपने चिलैक्स किया हमारे साथ इन गानों के साथ और इस ब्यूटीफुल वेदर के साथ। सो यस, जाने से पहले एक और गाना चला कर जाऊंगी आपके नाम, एंड विशिंग यू ऑल लवली संडे। आपका रविवार बहुत ही अच्छा जाए एंड आप अपनों के इर्द गिर्द रहे, आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहे और आज कोई भी स्ट्रेस आपको परेशान न करे। सो यस, हैव अ ग्रेट टाइम एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर।
1: With Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: A very good morning aap sabhi ko. Ghar milate chaliye subah ke theek 8 baj rahe hai.
5: Apan ghar hi mila le ja ee bakhat fajar ke 8 bajal ba. सब कोई के नमस्ते और वादा फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा काल घोंगुप के बाशिंदे समुद्र तट ले जाए होला रास्ता के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे खातिर एकत्र हो रहलन जा ग्राम परिषद ए पर अपन चिंता जतैलन स्थिति से अवगत होवे के बाद भूमि व आवास मंत्री शकील मोहम्मद परिषद के सदस्य लोगन से भेंट करे के और स्थिति के जायजा लेवे खातिर हौजा जयन जा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ई दिमास के रेजुई में एगो ओपन डे आयोजित करता फजर के 9 बज के आधा से दोपहर के 1 बजे ले आम जनता उस सब वस्तु सकियन जा देखे जे काला और मंगर 22 सितंबर के होवे होला नीलामी में पेश करल जाए ये नीलामी के दूसर का संस्करण है जे उस जब्त करल गल संपत्ति पर आधारित बा राष्ट्रीय सभा में खेल मोरिसियन के शामिल करे पर अपन विचार विमर्श के जारी रखल जाता इस मामला के अध्ययन करे खातिर गठित कमिटी के अपन सुझाव विदा करे खातिर जनता के और कई गो हितधारक लोगन के संगे ई मंगर 22 सितंबर ले समय बा सुझाव लिखित रूप से क्लर्क ऑफ नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टवेस के पता पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@govmu.org पर सकल जा विदा करे ई परामर्श समिति के अपन काम से अगारी वे आगे बढ़ावे खातिर ढेर गुजना के राय एकत्र करे के अनुमति दे आज 20 सितंबर के हमनी मनावत है जा वर्ल्ड क्लीनअप डे माने विश्व सफाई दिवस यही अवसर पर ही कचरा और अवैध डंपिंग के खिलाफ संघर्ष करे खातिर मॉरिशस में कई गो काम करल जाता साफ सफाई अभियान से आगे की बढ़े के गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से आदत के एगो बदलाव के प्रोत्साहित करे के चाहेला और पर्यावरण के सुरक्षा के प्रति जागरूकता के आरजस्ती मजबूत करे के चाही तो दूसर देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात के ऐलान करलन कि उ जल्द ही एगो नवा एआई सलाहकार के नियुक्त करियन और देश में एगो एआई फोर्स के गठन भी करियन हालांकि ये सब पहल कैसे लागू हो एकर बारे में आरजस्ती जानकारी नहीं बाती तेकरेवे संगे हमनी के भोजपुरी समाचार समाभल ध्यान देवे खातिर धन्यवाद नमस्ते और आदाब
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: सो वेल फ्रेंड्स, मॉर्निंग हुई है विद दिस ब्यूटीफुल भोजपुरी गाना और आपका स्वागत करते हैं 8:07 परी का साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर टाइमलेस तड़का। वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। संडे की सुबह है 20th of September। उम्मीद करते हैं दिन आपका एकदम मस्त जाए, बिकॉज संडे का दिन होता है खास, होता है स्पेशल। लेकिन लेट्स चेक आउट कैसा रहेगा मौसम का हाल।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू स्विनर्स।
3: आम हालत मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम पर पाया जाने वाला एक जोरदार एंटी साइक्लोन हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा अगले 24 घंटों के लिए। पूर्वानुमान आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय दक्षिणी ढलानों पर हल्की सी बारिश होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उधर तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:01 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 6:05 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.
5: Avis à tous les amoureux des animaux! 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Le shampoing anti-

0: to Radio Musti. Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन थ्वासिसाई में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग के प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसाई के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी. RM2
1: रेडियो मस्ती.
2: And well friends, that's your timeless तड़का सुबह के 8:17. जैसे हम कहते हैं, गाने पुराने हो सकते हैं लेकिन उनकी फीलिंग कभी ओल्ड नहीं होती. हमारा टाइमलेस तड़का ऐसे ही गानों को आपके लिए लेकर आता है, लेकिन विद अ ट्विस्ट, विद अ डिफरेंट अंदाज. तो उम्मीद करते हैं आज का संडे एकदम मस्त शुरू हुआ है और मौसम भी अच्छा अच्छा सा है. शाम होते होते मौसम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए एंजॉय योर संडे एंड एंजॉय द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: टाइमलेस तड़का। RM2

सो वेल फ्रेंड्स, इट्स योर टाइमलेस तड़का। सुबह के 8:30 होने को है और आप जुड़े हुए हैं और M2 रेडियो मस्ती के साथ। वेल, संडे इज हियर और जब संडे आता है लेकर आता है इतना सुकून। सो आई एम श्योर दैट इस वीकेंड को आपने खूब एंजॉय किया। अभी भी कुछ और घंटे बाकी है जिन्हें आप स्पेशल बना सकते हैं। और वैसे जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि संडे का कोई एजेंडा नहीं होता, संडे का ओनली प्लान होना चाहिए टू एंजॉय, टू रिलैक्स एंड टू चिलैक्स। हफ्ते भर की मेहनत के बाद बस दो ही तो दिन मिलते हैं जहां पर आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। काम काज चलता रहेगा लेकिन मन को रिलैक्स करना, दिमाग को रिलैक्स करना ये भी जरूरी है। सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए हमारे जितने भी लिसनर्स साथ दे रहे हैं ऑन आवर M2 रेडियो मस्ती, मैं हूं परी आपके साथ, साथ रहेगा आपका और मेरा दिन के 11 बजे तक। एंड वेल, दैट्स योर टाइमलेस तड़का। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर। किशन रघुनाथ जी साथ दे रहे हैं सुरनाम से। अगला गाना डेडिकेट करना चाहते हैं फॉर वाइफ माला, दो प्यारी बेटियां हैं जिया रिया और सभी रघुनाथ परिवार के नाम। ललिता जी आई हैं अपनी गुड मॉर्निंग विशेस से लेकर, ऑलरेडी पहुंच चुकी है सी साइड बेलमा में, एंजॉय कर रही हैं आप दिस मस्त मॉर्निंग। और ऐसे में डेडिकेट कर रही है गाना फॉर सरोज, गीता, ज्ञानती, वीना कुमारी, संजय विजय और सभी जीतन परिवार के नाम, सभी देवचंद परिवार के नाम। जाना जी आई है अपना प्यार लेकर ऑल द वे फ्रॉम फ्लाक। और आज ऑन संडे आप काम कर रही हैं, चलिए आपके संडे को हम बनाएंगे स्पेशल विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जिन्हें एंजॉय करते हुए आपका काम कब फिनिश हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। डेडिकेटिंग गाना अपने सभी परिवार के नाम, ये है फॉर रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी है, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिव सरन परिवार जो दे रहे हैं साथ ऑल द वे फ्रॉम अफलाक। सो वेल फ्रेंड्स, दैट्स योर टाइमलेस तड़का। और अभी के लिए एक ऐसा टाइमलेस नंबर जो संडे मॉर्निंग को और भी खूबसूरत बना देगा। सो टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, कुमार सानू की आवाज, 90s का वो खूबसूरत सा दौर। टाइमलेस तड़का दोस्तों अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक, जहां पर आप एंजॉय कर पाएंगे ऐसी ही कुछ ब्यूटीफुल मेलोडीज। परी का साथ मैसेजेस, डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: एंड वेल फ्रेंड्स, जिंदगी को हर वक्त फिक्स करना, परफेक्ट और प्रोडक्टिव बनाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस रुककर सांस लेना भी एक ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ है। हर दिन कुछ अचीव करना जरूरी नहीं, कुछ दिन होते हैं सिर्फ फील करने के लिए, अपनी चाय का टेस्ट, अपने लोगों की कंपनी और एक फेवरेट सॉन्ग, या फिर बस वो खामोशी, बस वो सुकून जो किसी भी चेकलिस्ट में टिक नहीं होता। सो टुडे डोंट मेजर योर संडे बाय हाउ मच यू गॉट डन, बस इसे मेजर कीजिए कि आपने कितना पीसफुल फील किया बाय लिविंग इट। सो एंजॉय योर संडे एंड हैव अ ग्रेट टाइम RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: North, south, east or west, tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
4: So well friends, that's your timeless tarka, जहां पर timeless melodies आपके लिए हम लेकर आए हैं। कई decades हो गए हैं इन गानों को आए हुए, लेकिन आज भी इन गानों को सुनना अच्छा लगता है, especially on a Sunday morning, जहां पर सब कुछ हो लगता है कि rewind हो रहा है। जैसे हम कहते हैं, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालें, थोड़ा सा सुकून आप भी एंजॉय करें, और आज उसी सुकून को हम आप तक पहुंचा रहे हैं विद दीस ब्यूटीफुल ट्रैक्स। मैं हूं परी आपके साथ, एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का, दिन के 11 बजे तक आपका और मेरा साथ। अभी के लिए एंजॉय दिस वन।

0: एक्सप्रेस तड़का
1: RM2
2: So, well, that's your timeless tarka, जहां पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. Good morning once again हमारे सभी listeners का जो Sunday morning में बन गए हैं हमारे musical हम सफर. Well, यहां पर जो next गाना है goes out for Vidula Devu of Cupip celebrating her birthday आज. उनके लिए best wishes ये है from all Gokul Singh, Ram Pratap, Bhagwant, Tora और Sitohal परिवार. Devu परिवार है उनके लिए भेज रहे हैं बहुत सारी good wishes. और चलिए यहां पर हमारी प्यारी सी आरती जी हमारा साथ दे रही हैं. सो आपके लिए ऐसे स्वीट स्वीट डेडिकेशंस हम करते रहेंगे. साथ देने के लिए शुक्रिया एंड ऑलवेज आपका वार्म वेलकम ऑन RM2 रेडियो मस्ती. चलिए कहते हैं नमस्ते. अगला गाना हो जाए फॉर मेधा मनी श्रेया आर्यन नील शीतल विकी रतीना संगीता नितिन मोंटाई ब्लॉट से हमारा साथ दे रहे हैं एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स. सो वेल अगला गाना होगा आपके लिए. साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सचिन मोंगू से हमारा साथ दे रहे हैं लिसनिंग ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया. हो अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं विद योर ब्यूटीफुल वाइफ वर्षा. Came to meet अपने kids studying in Malaysia. और चलिए यहाँ पर कहते हैं कि request हो जाए for all the students studying abroad उनके लिए एक गाना. बिल्कुल जी. And Sachin जी enjoy your holidays in Malaysia and loads of love to your kids and of course to all the students जो abroad पढ़ाई करते हैं. परिवार को miss करते हैं लेकिन यहाँ Mauritius से will always send that beautiful warm wishes आपके लिए. रवि जी कहते हैं हाउ आर यू हैप्पी संडे. मैं तो एकदम मस्त और उम्मीद करते हैं आपका संडे भी हो एकदम जबरदस्त. सो एंजॉय योर संडे और साथ देने के लिए शुक्रिया. ग्रेट टाइम आप सभी के लिए. एंड ऑल्सो फ्रॉम वाकवा वी हैव हमारे गोविंद रघुनंदन जी साथ दे रहे हैं आप. गुड मॉर्निंग जी. गुड मॉर्निंग विशेज आपके लिए. गर्मा गर्म चाय कॉफी एंजॉय करें आप एंड डेडिकेट करेंगे ब्यूटीफुल गाना फॉर यू फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वेदा फॉर डियरेस्ट डॉटर दीक्षा और साथ में है आपका बेटा युधिश योगेश. सभी के लिए बहुत सारा प्यार फॉर ऑल रघुनंदन फैमिली जो साथ दे रहे हैं फ्रॉम वाकवा. सो चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन रेडियो मस्ती. सो फॉर नाउ सोनू निगम शान बाबुल सुप्रियो.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, 9 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं अभी ओदोए, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। राष्ट्रीय सभा में खेल मुगिसियों को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने की दिशा में गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टवेसा के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@gov.mu.org पर भेजे जा सकते हैं। ये परामर्श समिति को अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न राय एकत्र करने की अनुमति देगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रेजू में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है, सुबह 9:30 से दोपहर के 1 बजे तक। आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। यह इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का उद्देश्य है लागू प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना। कल गांव के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे। ग्राम परिषद ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। स्थिति से अवगत होने के बाद भूमि व आवास मंत्री शाकिर मोहम्मद परिषद के सदस्यों से मिलने व स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर जाने वाले है। आपको बता दें कि मंत्री का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे इस बात से इनकार करते हैं कि ये विकास सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच की कीमत पर हो। वे याद दिलाते हैं कि कुछ लीसेस साल 2014 के चुनावों से पहले और पुरानी सरकार के कार्यकाल के दौरान दिए गए थे। उनका उद्देश्य सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच को बहाल करना और मॉरिशनों को तट तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की अनुमति देने के लिए नए रास्तों की पहचान करना है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पास आग के काले धुएं का बड़ा गुबार दिखा। सऊदी ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार सुबह राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिसाइल के रास्ते पर ही रोक दिया था। उधर कैरेबियन सागर में ड्रग्स तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे एक तेज रफ्तार जहाज पर अमरीकी सेना ने हमला किया। इनमें 4 लोगों की मौत हो गई। अमरीकी दक्षिणी कमान ने बताया कि ये कार्रवाई 19 सितंबर को जोन टास्क फोर्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर के निर्देश पर की गई। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड पोलोंजी में 78 साल के 78 years old के श्री बासुदेव मगन, जिन्हें सब लोग रोहित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े नौ बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड पोलोंजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM शिवाजी रोड पुजी फ्लैक में 70 साल की श्रीमती राजकुमारी बिस्तुनुत, जिन्हें सब लोग चिकिया के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है।

0: उनके अर्थ है आज दिन के 10 बजे। आज दिन के 10 बजे उनकी बहन श्रीमती फूलमणि बिस्तुनुत के घर श्वाजी रोड पुज्जी फ्लैग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए श्वाजी पुज्जी फ्लैग किशमिशान भूमि ली जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। पायों के रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में, पायों के रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिमला गुप्ता, श्रीमती बिमला गुप्ता पैदाशी नाम रामबोजू और जिन्हें सब लोग कविता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के नौ बजे उनके बेटे श्री ईरेश गुप्ता के घर पायों के रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डो मास्क किशमिशान भूमि ली जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 9 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Timeless Tarka. RM2. Timeless Tarka.

0: आपका हम स्वागत करते हैं एक दिल रुबा है उदित नारायण की आवाज फ्रॉम द फिल्म बेवफा अक्षय कुमार कटरीना करीना कपूर यस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवी और उसी फिल्म के सारे प्यारे गाने और उसी में से चुना हुआ ये गाना आप सभी के लिए चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका हम स्वागत कर रहे हैं दैट्स योर टाइम लिस्ट तड़का और बता दें दैट स्पोर्ट्स में भी आज लोकल स्तर पर कुछ खास होने वाला है प्लान मायो का वेटरन टूर्नामेंट संडे 20th ऑफ सितंबर यानी कि आज और पहला जो मैच है 3 बजे होने वाला है बिटवीन शबेल एंड सदर्न नेशनल वेटरन और सेकेंड मैच 5 बजे अरब सिटी और त्वाबुचिक के बीच तो इसे आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप आस पास है सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट चलिए अभी के लिए वार्म वेलकम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक अलॉट कराएंगे दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती परी का साथ है टिल 11 एएम
1: आरएम2 रेडियो मस्ती Join the RM2 team this Monday, 21st of September on the parking lot of Dream Prize Suyak for a job and training fair organized by the Ministry of Labour and Industrial Relations. RM2 will be live us from 10 a.m. to noon. So don't miss out.
2: RM2
3: Radio Musti.

0: तो
1: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती।
0: ओके दैट्स इट।

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: और जी हाँ दोस्तों, वेलकम आप सभी का वंस अगेन। सुबह के 9:20 हो रहे हैं। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, और ये डिबेट तो पता नहीं कब से चल रहा है और कब तक चलेगा, लेकिन आई गेस बोथ आर बेस्ट। और ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो कंपेरिजन है वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज दोनों ही अपनी जगह बेस्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए हमारे जो लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, बॉय है, गर्ल है, अंकल है, आंटी है, दादा है, दादी है, जो भी हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी के लिए गुड गुड विशेस ऑन दिस संडे मॉर्निंग हम लेकर आए हैं। वैसे संडे का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि कोई प्रेशर नहीं होता कि यू हैव टू बिकम द मोस्ट प्रोडक्टिव वर्जन ऑफ योरसेल्फ, वरना मंडे टू फ्राइडे तो भाग दौड़ में रहते ही हैं। सुबह उठते ही ये करना है, वो करना है, ये निपटाना है, कितना कुछ होता रहता है, लेकिन संडेज जहां पर आप आराम से उठ सकते हैं, कुछ लोग हम जानते हैं संडे को भी भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालें। जैसे हम हमेशा कहते हैं, जिंदगी की भाग दौड़ कभी कम नहीं होगी दोस्तों, लेकिन खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। तो हम आपके दिल का तो ख्याल रख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय आपको खुद के लिए निकालना चाहिए। चलिए दोस्तों, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस, योर दिल का हाल, योर प्यार, योर गुड विशेस, योर बेस्ट विशेस हम तक पहुंच रही है ऑन 5499-1294। एंड यहाँ पर स्वीट मैसेजेस के साथ कहते हैं, अगला गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो लिटिल सन बाबू पवन जो 26 साल के हुए हैं, बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम मामा गीता, सिस्टर प्री, पू एंड नीस रितिका ऑफ गुडलैंड्स। सो वेल मिस्टर पवन 26 साल के हो गए हैं, इट्स योर बर्थडे, सो विल मेक इट स्पेशल अगले ट्रैक के साथ। गुड गुड विशेज ये हमारे पूरे RM2 रेडियो मस्ती टीम की ओर से। सुनीता जी साथ दे रही हैं आप, और कहती हैं दैट आज पोता सोहन रन जाया, कल उन्होंने अपना 6th बर्थडे सेलिब्रेट किया, और उनके लिए गुड विशेस ब्लेसिंग्स दैट्स कमिंग फ्रॉम मामा तीशा, पापा यनीश, रंजया परिवार, साथ में है सुरेखा, विकी, नील, हुलाश और मोहिनी है, गिरीश है, गणेश परिवार फ्लाक से, और साथ में है नीतुषा एंड दामाद अश्विन, हर्षी है और निवांशी दिगंबर परिवार जो भेज रहे हैं अपना प्यार एंड स्पेशल विशेज। लाइक वी से कि बर्थडे तो चला जाता है लेकिन सेलिब्रेशंस कंटिन्यू होती है। वैसे साल का सबसे स्पेशल दिन होता है, सो एक दिन नहीं इसका सेलिब्रेशंस तो होना चाहिए। चलिए गुड विशेस आप तक पहुंचा रहे हैं, एंड कीप सेलिब्रेटिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। साधना मुकेश साथ दे रहे हैं आप लाल माटी से, वेलकम आपका ऑन रेडियो मस्ती, गाना आपके नाम। एंड हमारे डियरेस्ट स्वीटेस्ट अपारू परिवार आप भी आ गए हैं अपनी गुड गुड विशेस के साथ। सो कहते हैं दैट शुरुआत कर रहे हैं दिन की विद अ ग्रेटफुल हार्ट, एंड बस देखेंगे कैसे मैजिक अनफोल्ड होता है। सो दारिंज बता रवीश पीशा लवशान अपारू परिवार ऑफ ऑशनुआ, मैजिक अनफोल्ड होता रहेगा, बस दिल में खुशी बनाए रखिए, चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखिए। वीना यहाँ पर साथ दे रही हैं आप, और यू एंजॉयिंग द सॉन्ग्स जानकर अच्छा लगा, तो बस खूबसूरत गानों का कारवा जारी रहेगा आपके लिए भी, और आपके लिए भेजेंगे प्यारे प्यारे गाने ऑन रेडियो मस्ती। कृष्णा पावजे साथ दे रही हैं आप, सुशीला है एंड सभी परिवार जो मेबर्ग से हमारा साथ दे रहे हैं, सो गुड विशेज आपके नाम भी, हैव अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ। और तैयब जी आप भी आए हैं अपना प्यार भरा गुड मॉर्निंग विश लेकर, सो प्यार भरा सलाम आपके नाम भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। मिस करिश्मा के नाम हो रहा है डेडिकेशन, सो चलिए यहाँ पर एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ, मैसेज भेजने का टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं, डेडिकेशन आपके नाम भी होगा। साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स आप सभी को विश कर रहे हैं अ वंडरफुल फैंटास्टिक संडे, परी का साथ, एंड दैट्स योर टाइमलेस तड़का ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: So well, यहाँ पर खुशियों की ट्रेन तो आ गई है आपके लिए loads of happiness लेकर on this Sunday morning. परी का साथ है. It's 9:35 दोस्तों and that's your timeless तड़का. सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें. A beautiful track from the film Paranita. और इसी ट्रैक को डेडिकेट करेंगे आरती जी आपके नाम. आप लोग मुझसे साथ दे रहे हैं डेडिकेटिंग गाना फॉर हबी शक्ति. आपकी दो जान आशी एंड आशीष और मामा रेनू जो सुरनाम रहती हैं उनके लिए आपने भेजी है बहुत सारी गुड विशेस एंड बहुत सारा प्यार. वी ऑल्सो हैव श्वेता कृपा यहाँ पर डपने से हमारा साथ दे रही हैं और आज आपकी मामा 65th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. सो उनके लिए स्पेशल स्पेशल विशेज हैप्पी बर्थडे विशेज. ये है फॉर कुमारी जगेसा. आप है होशनुमा से एंड विशिंग हर गुड हेल्थ लोड्स ऑफ प्यार विशेस कमिंग फ्रॉम देवानंद जोगिसा और साथ में आपकी प्यारी सी बेटी श्वेता. सभी परिवार सभी लव्ड वंस की ओर से गुड विशेस एंड आल्सो हमारी टीम विश कर रही है आपको हैप्पी बर्थडे. हैव अ ग्रेट वन.

So good music and best mix of music आपके लिए हमेशा होता है on Radio Masti. It's 9:51 morning time, Sunday की सुबह हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप on Radio Masti. So चलिए दोस्तों ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं. For now, Rishi Rich and Veronica Jaggedy from the film Hum Tum. Enjoy this one.

0: listening to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Mystique.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Mystique.
0: Radio Mystique.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Mystique.
4: Time check, 10 a.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें अभी उदय से. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. राष्ट्रीय सभा में क्रियोल मोरिसियन को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है. इस मामले का अध्ययन करने की दिशा

0: में गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@gov.org पर भेजे जा सकते हैं। ये परामर्श समिति को अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न राय एकत्र करने की अनुमति देगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रिजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है, सुबह के 9:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। आम जनता उन वस्तुओं की को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। ये इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित अपने पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का उद्देश्य है लागू प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना। इस रविवार 20 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व सफाई दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीनअप डे के अवसर पर कचरे और अवैध डंपिंग के खिलाफ संघर्ष करने की दिशा में मॉरिशस में कई पहल की जा रही है। साफ सफाई अभियानों से आगे बढ़कर गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से आदतों में एक स्थायी बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को मजबूत करना चाहते हैं। मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी के दरवाजे पार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। चूना, स्टॉकफिश, दुगाद हमारी कई महासागरीय मछलियों को आज कुछ यूरोपीय मंडियों जिनमें इंग्लैंड भी शामिल है उनके द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। ये इस क्षेत्र के लिए चिंताजनक स्थिति बन गई है और ये मॉरिशस को एक नए बाजारों की तलाश करने विशेष रूप से एशिया की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर सकती है। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका ले जा रहे F-35 फाइटर जेट के बेहद संवेदनशील पुर्जों वाली एक खेप को हांगकांग भेज दिया गया। इस घटना के बाद अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ये पुर्जे चीनी अधिकारियों के हाथ लग सकते हैं। खबरों के अनुसार इस शिपमेंट में F-35 का कनोपी शामिल था और ये एयरक्राफ्ट के स्टिल्थ सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। बारो लेन अंग्रेमोसियाल में 80 साल की श्रीमती हेरावंती रिसल, श्रीमती हेरावंती रिसल, पैदाइश नाम राम गुलाम और जिन्हें सब लोग दादी माईबू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके बेटे पंडित अनिरुद्ध मिश्रा रिसल के घर बारो लेन अंग्रे मौसियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीभ्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। Avenue Okide Katrobone में 91 साल की मिसिस फातमा बीबी महमूद सुरेफान, पैदाशी नाम नहाबू और जिन्हें सब लोग फातमा नहाबू सुरेफान के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के बारह बजे उन्हीं के मकान एवेन्यू ओकिडे कैथ्रोबोन से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कैथ्रोबोन की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट नून। ऐसे भी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Timeless Tarka. RM2. Timeless Tarka.

So well, that's your time list तड़का दोस्तों. उम्मीद करते हैं आप भी हमारा साथ दे रहे हैं and enjoying your Sunday की सुबह हमारे साथ. सुबह के 10:12, कुछ लोग तो अभी अभी मीठी नींद से जाग रहे हैं. वैसे लेट तक सोने का अपना ही मजा होता है. कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. ये तो सही बात है, लेकिन जस्ट वन डे आप थोड़ा सा रिलैक्स जरूर कर सकते हैं जहाँ पर लेट मॉर्निंग्स लेट स्टार्ट्स एंड स्लोली आप अपनी मॉर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं. बी इट योर फर्स्ट कप ऑफ चाय कॉफी या फिर बी इट योर मॉर्निंग टाइम बी इट योर मी टाइम, जो भी टाइम है आज बस आराम से हर एक घड़ी को एंजॉय करें आप. और अभी के लिए तो हम गाने चलाते रहेंगे, आपके दिल को बहलाते रहेंगे बिकॉज मैं हूं परी आपके साथ और आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सो फॉर नाउ ऐसे ही कुछ प्यारे ट्रैक्स अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक साथ रहेगा आपका और मेरा इन योर टाइमलेस तड़का ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

And this one goes out for हमारे driver साहब, conductor साहब and all the passengers जो UBS bus में है from QPIP to Sepia आप जा रहे हैं. So ये गाना आपके नाम, special dedication for all Naiko Sahai परिवार के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. And of course for all the listeners. टाइमलेस तड़का है एंड सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म मुझसे शादी करोगी. ये गाना आप सभी के नाम.

कहते हैं कि मेरा ख्वाब आज हकीकत बन जाए, जो हो बस तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी मिल जाए। हम लाए हैं आंखों में फिर से इंतजार तुम्हारे लिए, और आज तुम्हारा इकरार फिर से हमारे जीने की शुरुआत बन जाए। आकाश चेतन मनसुख बॉबू से ये स्वीट विशेज आपने भेजी है ब्यूटीफुल शायरी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड संडे विशेज, नाइस संडे विशेज, ये है फॉर ऑल द लिसनर्स, स्पेशली फॉर ऑल मनसुख परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए ये गाना आपके नाम, एंड हैव अ वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ। साथ ही यहाँ पर स्वीट डेडिकेशन फॉर डियरेस्ट नीस लाइशा रूप नरेन, 5 साल की हुई है, 5 years आज, उनके लिए ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेज। ये है फ्रॉम मासी रीना, मौसा संजय, दीदी नेहा, जिया, भाई कशिश, नानी पूनम है, मामू नितेश, ऋषि, साथ में है मामी भावना, दीप, रामकिशोर, शिवराज, रूप नरेन परिवार लेकर आए हैं अपना प्यार फॉर दिस स्वीट स्वीट एंजल जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सो लाइशा, बहुत सारी गुड विशेज ऑन योर स्पेशल डे, हैव अ ग्रेट वन स्वीट हार्ट। और साथ ही आज बेटा कृष्णा अचना पेन सेलिब्रेटिंग हिज 26th बर्थडे, उनके लिए स्पेशल विशेज ये है फ्रॉम सविता कुमारन, अंशी, दादी माया लक्ष्मी एंड लवली वाइफ काविश्नी, सभी की ओर से प्यार और शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम भी आपको विश कर रही है हैप्पी वाला बर्थडे। साथ ही गाना होगा फॉर अब्दुल एंड सायरा बानू, हैप्पी संडे विशेस आपके नाम हमारे डियरेस्ट लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस हैपनिंग 5499-1294 पर।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2
1: Radio Musti।

वेल हमारे डियर लिसनर्स नए हो या फिर पुराने हर फ्लेवर को आपके लिए हम लेकर आए हैं इन योर टाइमलेस तड़का इट्स 10:31 यहां पर अनुषा साथ दे रही हैं सीजीएमएल फॉरेस्ट साइड से और कहती हैं गाना हो जाए फॉर जीजू विनय सजियन ऑफ गुडलैंड्स आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं विशेस हैं फ्रॉम वाइफ सरिता बेटा निखिल बेटी परी एंड ऑल सजीवन परिवार कुंदन परिवार हंसराज परिवार और साथ में गाना फॉर फ्रेंड्स पूनम मालदिनी चाचा अनिल एंड बॉस ऋषि जो इस वक्त सुपर मार्केट में काम कर रहे हैं लोड्स ऑफ करेज टू यू ऑल साथ दीजिए ऑन रेडियो मस्ती साथ ही यहाँ पर डेडिकेटिंग गाना फॉर राजा और उनके लिए बहुत सारा प्यार ये है उनकी रानी की ओर से तो चलिए टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन लेकिन विद अ ट्विस्ट विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक दैट्स अ डिस्को स्टेशन आपके लिए टाइमलेस तड़का ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती

तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम टू शेयर सम फैशन टिप्स। कपड़ों के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन फुटवेयर ये भी तो मैटर करता है। ब्यूटीफुल आउटफिट को अनकंफर्टेबल फुटवेयर जो है वो कम्प्लीटली स्पॉइल कर देता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रहे हैं या फिर वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हैं, इसके साथ आप जो भी पे करना चाहे, जूती, हील्स या फिर कोल्हापुरी स्टाइल जूतीज, सब कुछ

काफी अच्छा लगता है लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपका कंफर्ट जरूरी है सो जो भी फुटवेयर आप चूज करते हैं मेक श्योर कि आप उसमें कंफर्टेबल है लुक्स की अगर हम बात करें तो इंडो वेस्टर्न लुक आजकल काफी फैशन में है और जैसे हम बात कर रहे थे स्पेगेटी कुर्तीज उसके साथ अगर आप जीन्स पहनते हैं और उसके नीचे बूट्स ये भी काफी स्टाइलिश लगता है और उसके साथ वो ऑक्सीडाइज वाली बैंगल्स या फिर ऑक्सीडाइज वाले झुमके अगर आप टीम करें तो ये लुक बहुत अच्छा लगता है साथ ही हेयर

0: हमेशा ब्यूटीफुली वर्क करता है सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं और जैसे हम कहते हैं कपड़े कितने भी गॉर्जियस क्यों ना हो लेकिन उसे कैरी करने का अंदाज एकदम मस्त होना चाहिए सो ऑल दैट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस सो स्टाइल टिप्स ये तो हम जानते हैं हमारे लिसनर्स जो हैं वो एकदम स्टाइलिश है और हर बार हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव ट्राई करते रहते हैं बी इट योर बिंदीज बी इट योर बैंगल्स बी इट योर झुमकेज योर फुटवेयर या फिर आपके कपड़े बस हर एक चीज़ को आप स्टाइलिश रखें और हर एक चीज़ में आपका जो स्टाइल है वो झलकना चाहिए सो स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड स्टे म्यूजिकल RM2 रेडियो मस्ती के साथ
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: So well, that was a beautiful indie pop Sonu Nigam ki awaaz from his album Chanda Ki Doli. Ye gaana tha aap sabhi ke liye jo is waqt hamara saath de rahe hain. Aur dekhiye dosto, subah se ye karwan shuru hua tha and ab ghadi ki tick tick yahi ishara kar rahi hai that it's time for Pari to say goodbye. Main to chali lekin aa gayi hain Poonam ji aapko entertain karne with some beautiful songs. Unke gaano ke saath aap unka saath nibhaiye. Lekar aa rahi hai aapke liye Bolly Branch thodi hi der mein jaate yahan par kehte hain good morning to everyone jo आज लेट उठे हैं नो टेंशन ऑफ गोइंग टू वर्क एंड जस्ट रिलैक्स और एंजॉय आरएम टू पर गाने क्या बात है थैंक यू सो मच यहां पर सुया जी साथ दे रही हैं और कहती हैं गाना हो जाए फॉर बिग ब्रदर मनोज हिरोदर उनके लिए आपने भेजा है प्यार एंड स्पेशल विशेस वेल अगला गाना आपके नाम हैप्पी बर्थडे विशेस ये है फॉर जयश्री भुसावन बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम हस्बैंड प्रीतम उनके सभी बच्चे हैं पल्लवी मंशिका अश्विन एंड लिटिल ग्रैंड चाइल्ड अवेद की ओर से बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेस Akshay Manga of Q-Pip and Yajwan Bandhu in Italy a very happy birthday. Sabhi Manga Parivar of Q-Pip, Sri Kasin Parivar of Meeberg, unke liye lekar aaye hain shubhkamnaye and special wishes. Sita Geeta Boluram, Shato Banaras se hamara saath de rahi hain and also from Shato Banaras aayi hain Jyoti ji apni good wishes lekar. Musalmo Saint Andre se we have Rahul jo aaj apna birthday celebrate kar rahe hain. Best wishes unke naam that's coming from Ruma, Harish, Sabhi Kalichan and Kiru Parivar jo unhe wish kar rahe hain. A very happy birthday.
1: RM2 Radio Musti.
2: So, well, इसी गाने के साथ परी साइनिंग ऑफ मुलाकात होगी आपसे कल 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ एंड हैव अ ग्रेट टाइम हैव अ म्यूजिकल टाइम वो चल

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
3: टाइम चेक, सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। कल घोंगोप के बाशिंदे समुद्र तट की ओर जाने वाले एक रास्ते के संभावित निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। ग्राम परिषद ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की। स्थिति से अवगत होने के बाद भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद परिषद के सदस्यों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर जाने वाले हैं। मंत्री का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे इस सब बात से इनकार करते हैं कि यह विकास सार्वजनिक समुद्र तटों तक का पहुंच की कीमत पर हो। वे याद दिलाते हैं कि कुछ लीज साल 2014 के चुनावों से पहले और पुरानी सरकार के कार्यकाल के दौरान दिए गए थे। उनका उद्देश्य सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंच को बहाल करना है और मॉरिशनों को तट तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की अनुमति

0: जानकारी देने के लिए नए रास्तों की पहचान करना है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रेजुए में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है। सुबह 9:30 से दोपहर के 1:00 तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी में पेश किया जाएगा। ये इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का उद्देश्य है लागू प्रक्रियाओं के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय सभा में खेल मवेशियों को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। इस मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है। सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@govmu.org पर भेजे जा सकते हैं। ये परामर्श समिति को अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न राय एकत्र करने की अनुमति देगा। इस रविवार 20 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व सफाई दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीनअप डे के अवसर पर कचरे और अवैध डंपिंग के खिलाफ संघर्ष करने की दिशा में मॉरिशस में कई पहल की जा रही है। साफ सफाई अभियानों से आगे बढ़कर गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से आदतों में एक स्थायी बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को मजबूत करना चाहते हैं। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि रूस में संसदीय चुनाव के दूसरे दिन शनिवार को भी मतदान जारी रहा। 3 दिनों की मतदान प्रक्रिया में यूक्रेन के कब्जे वाले 4 क्षेत्रों में भी अन्य रूसी क्षेत्रों की तरह वोट पड़ रहे हैं। यूक्रेन का हिस्सा रहे डोनास्क, लुहांस्क, खेरसान और जापोरिजिया के हिस्सों को रूसी सेना ने बीते 4.5 वर्षों के युद्ध के दौरान जीता है। इसके बाद रूस ने सितंबर 2022 में इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाकर उन्हें औपचारिक रूप से रूसी संघ में शामिल कर लिया था। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। मोसेल्मो वीआरएस नंबर 2 एमिटाज फिनिक्स में, मोसेल्मो वीआरएस नंबर 2 एमिटाज फिनिक्स में 72 साल के 72 years old के श्री रामराज दौलत जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपेर के तीन बजे उन्हीं के घर मोसेल्मो वीआरएस नंबर 2 एमिटाज फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंस्टांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। बिल्तेर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 88 साल के 88 years old के श्री केशवर बसावन जिन्हें सब लोग केसो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपेर के 3 बजे उनके बेटे श्री विकास बसावन के घर बिल्तेर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 PM.
2: Holly Branch, RM2, Radio Masti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग. बज गए हैं 11:10, प्यारा सा दिन संडे का, 20 सितंबर 2026 भाई लग गया है. और मैं सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने इस प्रोग्राम में, यानी कि बॉली ब्रंच में. पहले एक प्यारा सा धन्यवाद देना चाहूँगी रिया को, जो कि सुबह से आपके मूड को वार्म अप कर रही थी. और उसके बाद हमारी आई थी प्यारी सी हमारी परी, जो कि बहुत ही प्यारे गानों के साथ आती हैं और तड़का लगा के मस्ती के साथ में, और इतने प्यारे प्यारे उन्होंने गाने चलाए. मैं घर पर ने सुन रही थी और मैं साथ साथ डांस भी कर रही थी. तो चलिए भाई, ये तो माहौल बना दिया उन्होंने. अब ड्यूटी मिली है मुझे, यानी कि पूनम को, और मैं तो सभी को कहूँगी मोस्ट वेलकम. आप आ जाओ, जो भी अभी तक इस टाइम जो भी कोई काम कर रहा था उसको अभी थोड़ा सा करो साइड में, इंजॉय करो गानों को, क्योंकि है संडे और छुट्टी का दिन है जहाँ पर हमने संडे को बनाना है सुपर वाह वाला. और सुपर वाह वाला तभी बनता है जब आप अपने परिवार के बीच में होते हो, मस्ती के बीच में होते हो, थोड़ा सा मूड को रिफ्रेश करते हो. तो चलिए इंजॉय करते हैं आपका मॉर्निंग को 11 बजे के गानों के साथ में, थोड़ा सा तड़का लगा के, थोड़ी सी मस्ती के साथ में. ये है आपका ही बॉली ब्रंच. तो आप सभी का स्वागत है, थैंक यू. एंजॉय कीजिए अपने गानों को.
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:23 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ और RM2 रेडियो मस्ती पे हम तो आपके साथ चलते हैं। बट जब आपके मैसेजेस आते हैं या आपके कॉल्स आते हैं तो वही हमारा दिल बाग बाग बगीचा बगीचा हो जाता है और एहसास होता है कि इंसान अपने आप से कितना प्यार करता है। पर वहीं पर जब आरजेस को आपसे इतना प्यार मिलता है, इतनी मोहब्बत मिलती है, हमारा दिल भी बहुत खुश हो जाता है और हमारा दिल करता है आपको कुछ और नए नए गाने, कुछ पुराने, कुछ मस्ती वाले, कुछ सैड, थोड़ी सी कोई ऐसा कोई वैसा गाना सुनाएं जिससे आपका वही मूड बन जाए, क्योंकि संडे का दिन है और फिर कल से वही हो जाएगा काम शुरू। तो हम तो आपको यही कहेंगे, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजन रघुपत जी, जो कि लंदन से साथ देते हैं और आपका होना हमें बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो कि जब आप वहाँ से सुनते हैं आपको कैसा फील होता होगा, बट जब आपके मैसेज आते हैं कि आप इंजॉय कर रहे हैं तो फिर हमारा तो भी चेहरे पर स्माइल बहुत बड़ी आ ही जाती है। थैंक यू सो मच। आरती विशाल अविनाश लालमाटी से साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। एक हमारे लिसनर है, अपना नाम तो नहीं बताया बट बताया कि सैयारा का गाना चला दो। बिल्कुल चलाएंगे, आप कहें और हम ना चलाएं ऐसे कैसे। कल्याणी जी, वंदना, शालिनी, विश्वा एंड आरसी और सुंदरम जी के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश आई है। बिल्कुल गाने आप सभी के लिए, आपकी पसंद के गाने चल रहे हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है, किसी के लिए कोई मैसेज स्पेशल है या कोई दिल का मैसेज है, बहुत दिनों से किसी को कुछ कहना है, तो हमें मैसेज कीजिए, हम बताएंगे उनको। 5499124 पर इंजॉय कीजिए अपने गाने को।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Family Brunch RM2 Radio Masti 11:37 हो चुके हैं दोस्तों. थैंक यू सो मच आपके इतने सारे मैसेजेस के लिए. सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जब आपके मैसेजेस आते हैं ना, मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है. और आपकी अपनी पसंद होती है, कोई ना कोई गाना ऐसा सुनना चाहते हैं जिससे आपका मूड बने. पर हमारे कुछ ऐसे लिसनर्स होते हैं, कोई ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी लाइफ थोड़ी सी टफ होती है, जो सोते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं. ऐसी एक मूवी आई थी लक्ष्य मूवी, जिसमें ऋतिक रोशन का ऐसे ही कुछ हाल था और बस हमेशा वो यही बोलता, मैं ऐसा क्यों हूँ. पर सुनो, जो लोग ऐसे होते हैं ना, इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, बस इनको एक धक्का चाहिए होता है. और ये बहुत सारे घरों में मिलेगा, ऐसा प्राणी जो है सोफे पे सोया होगा, बेड पे सोया होगा. हंसना मत, क्योंकि मुझे पता है सारे कहेंगे दिख तेरे बारे में कह रहे, दिख तेरे बारे में कह रहे. नहीं कहना, क्योंकि इनका दिमाग बहुत शार्प है. ये अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, और एक दिन ये अपने सपने को, जो ये सपना देख रहे हैं ना, इसे पूरा करके दिखाते हैं. तो हम तो यही कहेंगे RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ है. सपने देखो, बिल्कुल देखो, पर थोड़ा सा उस सपने के ऊपर काम जरूर करना. जो भी आप देख रहे हैं उस पर काम करना, शिद्दत से करना. फिर आप, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे क्यों हैं, हम बोलेंगे अरे आप ऐसे क्यों हो, हम ऐसे क्यों नहीं हैं. तो बस हम तो यही कहेंगे, हमारे साथ रहो, एंजॉय करो अपने गानों को. नेक्स्ट गाना चलेगा उषा जी के लिए. उषा जी ने बोला है प्लीज़ एक शिद्दत मूवी का गाना जरूर चलाइएगा. बिल्कुल चलाने वाले हैं. साथ में हमारे साथ जिया जी जुड़ी हुई हैं, साथ में हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे जुड़े हैं जिनके बहुत लंबे लंबे मैसेजेस आए हैं, पर हम आपके एक एक मैसेज पढ़ेंगे. बट आपको कहते हैं पहले ये गाना सुनो, एंजॉय करो, उसके बाद वापस लौटते हैं आपके मैसेजेस के साथ.
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: गाने गाते गाते सुनते सुनते डांस करते करते कहाँ से टाइम निकलता है पता नहीं चलता, एक घंटा हो गया अभी तो मैं बैठी थी और मेरे को एहसास हो रहा था कि ये गाने चूज कर लूँ। मॉर्निंग आवर इतना प्यारा चल रहा है क्योंकि भाई बाहर मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी धूप थोड़ी सी ठंडक, ऐसे ही तो हम चाहते होते हैं। और वो हाउस वाइफ जिनको पूरे दिन ऑफिस में रहना होता है, पूरे वीक बच्चों का ख्याल रखना होता है, उनको यही टाइम मिलता है कि अरे वेदर अच्छा हो जाए, थोड़े से कपड़े सूख जाए, घर का काम हो जाए, साफ सफाई हो जाए, कबर्ड क्लीन कर लूँ, यही बस चलता रहता है उनकी लिस्ट में। पर हम आपको इतना ही बोलेंगे कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए जरूर निकालिएगा, लंच आवर है और हो सकता है आप सुबह सुबह उठी हो, थोड़ा सा हो सकता है लेट भी उठी हो, पर बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए बॉडी को। अगर आप लेट उठी हैं तो आपके लिए तालियां बहुत ज्यादा, और अगर आप बहुत जल्दी उठी हैं तब भी आपके लिए तालियां। मैं तो यही कहूंगी कि भाई आप तो हीरो होती हैं घर की, पर हम क्या करें, हाउस वाइफ का हो या हमारी कोई लेडी हो या कोई हमारी प्यारी सी गर्ल हो जो कि अभी बड़ी हो रही है, उसको भी यही चीज़ें देखनी पड़ती है। पर क्या करें, हम तो हैं घर की, कहते हैं लक्ष्मी भी कहते हैं, घर की क्वीन भी कहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे आप क्वीन हैं, रियली आप क्वीन हैं। आप घर को भी देखिए, खुद को भी देखिए, पर खुद भी वैसे रहिए, ये नहीं कि सुबह से जो ही कपड़े पहने हुए हैं वैसे ही पूरे दिन निकाल दो, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत काम होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 5-10 मिनट बैठिएगा, थोड़ा सा नैप लीजिएगा, थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ अच्छा खाइएगा, अगर कुछ कोई आसपास नहीं है तो भी अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन से खुश कीजिए, थोड़ी सी स्माइल दीजिए। गानों के साथ तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको कभी कभी लिरिक्स ना समझ आए, आपको ये वाला काम वो वाला काम जो काम करना है करते रहिए, पर आपको इतना बोल रहे हैं कि 5-10 मिनट अपने लिए निकालिए, जो आपको चीज़ पसंद है वो ज़रूर कीजिए, पार्लर जाइए, हेयर कलर कीजिए, फेशियल्स कराना है कराइए, मतलब ये ना हो कि आप फिर बाद में बोले अरे वीक स्टार्ट हो गया, थकान हो गई, अब फिर से वहीं ऑफिस जाना पड़ेगा। मत कीजिएगा, अपने आप को टाइम दीजिए, इंजॉय कीजिए गानों को, और थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे आप फिर से संक्षिप्त समाचारों के साथ, और उसके साथ साथ मैं इंतजार में हूँ आपके मैसेजेस का 5499124 पर।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अभी से अभी आपको नमस्कार.
7: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब. संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है. शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ. राष्ट्रीय सभा में खेल मोगिसिया को शामिल करने को लेकर विचार विमर्श जारी है. इस मामले का अध्ययन करने के लिए गठित कमेटी को अपने सुझाव भेजने के लिए जनता और विभिन्न हितधारकों के पास मंगलवार 22 सितंबर तक का समय है. सुझाव लिखित रूप में क्लर्क ऑफ द नेशनल असेंबली पार्लियामेंट हाउस पोर्टविस के पते पर या फिर ईमेल द्वारा clerk@gov.mu.org पर भेजे जा सकते हैं. ये परामर्श समिति को अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले विभिन्न राय एकत्र करने की अनुमति देगा. इस रविवार 20 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व सफाई दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीनअप डे के अवसर पर कचरे और अवैध डंपिंग के खिलाफ संघर्ष करने की दिशा में मॉरिशस में कई पहल की जा रही हैं. साफ सफाई अभियानों से आगे बढ़कर गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से आदतों में एक स्थायी बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस रविवार को रिजवी में एक ओपन डे आयोजित कर रहा है. सुबह के 9:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आम जनता उन वस्तुओं को देख सकेगी जिन्हें कल और मंगलवार 22 सितंबर को होने वाली नीलामी

0: अम्मी में पेश किया जाएगा। यह इस नीलामी का दूसरा संस्करण है जो उन जब्त की गई संपत्तियों को समर्पित है जिन्हें कानूनी रूप से नीलाम किया जा सकता है। पिछले 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित पहले संस्करण में 69 बेची गई वस्तुओं के लिए लगभग 33.4 मिलियन रुपए जुटाए गए थे। मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी के दरवाजे पार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। चूना, स्टारफिश, दुगाद हमारी कई महासागरीय मछलियों को आज कुछ यूरोपीय मंडियों जिनमें इंग्लैंड भी शामिल है उनके द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। ये इस क्षेत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति बन गई है और ये मॉरिशस को नए बाजारों की तलाश करने और विशेष रूप से एशिया की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर सकती है। एक्वाकल्चर की प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से भूमध्य सागर में चूना मछली पालन इन कठिनाइयों का कारण बनने वाले कारकों में से एक बताई जा रही है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका ने इलाके में मौजूद अपने दूतावासों और नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने लोगों से ज्यादा सतर्क रहने को कहा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना कैंप डेविड दौरा एक दिन पहले खत्म कर शनिवार शाम को व्हाइट हाउस लौट आए। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। पिचिवेजे ब्रांच रोड सैपिया में 79 साल की 79 years old की मिसिज बीबी आशा जादू पैदाशी नाम इस्माइल और जिन्हें सब लोग छोटी के नाम से भी जानते थे वो इंतकाल कर गई है। उनका जनाजा आज शाम के पाँच बजे उन्हीं के मकान पिचिवेजे ब्रांच रोड सैंपिया से निकालकर दफनाने के लिए सैकुंस्तान सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5 PM Le coup d'Evo पिचिवेजे सैंपिया में ला कू देवो पिचिवेजे सैंपिया में 91 साल के 91 years old के श्री सुखदेव असेनी जिन्हें सब लोग बासदेव के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर लाकू देवो पिचिवेजे सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंस्तान सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाया जाएंगे। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM बुनेड रोड विचमिल थ्रियोले में बुनेड रोड विचमिल थ्रियोले में 60 साल की 60 years old की श्रीमती सरस्वती मुचिया पैदाशी नाम तानी और जिन्हें सब लोग बानिता के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपैर के तीन बजे उनके बेटे श्री वेदाशय सूरज मुचिया के घर बुनेड रोड विचमिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM ऐसे विश्व ग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 PM.
2: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: लंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:13 हो चुके हैं दोस्तों और ये सेकंड आवर स्टार्ट हो गया। और सेकंड आवर में ये जब गाना चलता है ना, ओए होए क्या मस्त लगता है। मतलब जब वो ड्राइव इस समय कर रहे होंगे ना, वो डेफिनेटली डांस करते हुए जा रहे होंगे। चाहे उनकी आज वाइफ को कह रहे होंगे अरे ये काम जल्दी कर लो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और उन्होंने थोड़ा सा लेट किया होगा, तो तब भी उन्होंने उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, घर के अंदर जब होते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे ही निकल के उग उग के आते हैं। मतलब ये भी कर लो, वो भी कर लो, लॉक भी लगा दो, यहाँ पे ये सब्जी भी रख दो, वैसे भी कर दो, वैसे भी कर दो। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये औरतों के हिस्से में आ जाती हैं। और फिर हमारे हस्बैंड जो होते हैं वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं, कहते जल्दी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, अरे थोड़ा सा तो सुकून लेने दो। तो हम आपको ये कहेंगे, सुकून के लिए हमने ये गाना चलाया था कि थोड़ा सा स्माइल बड़ी सी लाइए चेहरे पर, थोड़ा सा मुस्कुराइए, जहां भी जा रहे हैं ड्राइव करते हुए थोड़ा हंसते खेलते जाओ। भाई कहां, छोटी सी लाइफ है, इसको क्यों टेंशन में लेना। और मुझे पक्का पता है वाइफ कह रही होंगी देखा ये तुम्हारे लिए है, तो मैं ये कह रही हूँ आपको भी जल्दी निकलना था, तो उनको भी गुस्सा नहीं आता। चली गई, गानों के साथ में इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस समय, मैसेजेस तो आए हैं पर हम लगाएंगे आपके दो गानों के बाद आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर दीजिए दिल से 5491294 पर। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: और एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है जी काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे संगबा सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसा कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में संगबा इन्वेस्टी करे जो निर्भर रही की आप कितना रिस्क ले सकबा नतीजा एगो ऐसा लास्योरेंस जो तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आए सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह इमे नियम और शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
4: Join the RM2 team this Monday, 21st of September on the parking lot of Dream Prize, Suyak for a job and training fair organized by the Ministry of Labour and Industrial Relations. RM2 will be live us from 10 a.m. to noon. So don't miss out.
0: RM2
1: Radio Musti.
5: North, South, East or West. Tune into the very best. Radio Musti. Your number one Bollywood station.
6: Khub khub abar. Apna Gujarat ma halol ane ni agar bahut naam lo gaam chhe. Kya majur varg bahut chhe.
7: To mane ek geet ni farmaish kari thi.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 12:23 हो चुके हैं। भूमि त्रिवेदी की आवाज में सुन रहे थे आप राम चाहे लीला कहे, लीला कहे राम। क्या गाना है, मतलब फुल मस्ती में जो इस समय काम कर रहे हैं उनको पता है कि भी कल से मॉर्निंग से जाना है दूसरे काम करने पर। हमारे कई ऐसे लिसनर्स हैं जो इस समय कहते हैं ना कि जो रियल टाइम स्पेंड करते हैं वो कई बार क्या करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, घर की सफाई करते हैं, चाहे वो मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, पौधों को लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, पानी देते हैं, उसमें कुछ स्पेशल कुछ लोग जिम जाते हैं, कोई स्पेशल उन्होंने सैटरडे संडे फिक्स किया होता है कि भी जाना ही जाना है, उनका टारगेट होता है। और वाइफ्स कह रही होती है चलो कहीं घूम लेते हैं, बोलते हैं नहीं हमने जिम जाना है। उन्होंने कई बार गिटार सीखना होता है, हारमोनियम सीखना होता है, सबके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी उनको पसंद होता है वो सब करते हैं। तो हम तो आपको यही कहेंगे जो चीज़ आप कर रहे हैं चाहे वो मेल्स कर रहे हैं चाहे फीमेल्स कर रहे हैं, अपने टाइम को अच्छे से सैटरडे संडे में डाल के स्पेंड कर रहे हैं तो ये भी एक रिलैक्सेशन का ही एक पार्ट है। हमारे पर बहुत सारे लिसनर्स का मैसेज आ रहा है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट करते हैं तो हमारी वाइफ गुस्सा करती हैं, कहते तुम तो इतना ज़्यादा रेस्ट क्यों करते हो। हम आपको बताएं कि जो आप ये रेस्ट कर रहे हैं ना ये भी बहुत अच्छा है, बट जो 5 दिन हैं जो आपके पास वो है उसको तो अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, उसमें थोड़ा सा थकान मत कीजिए, उसमें वाइफ को पता ना चलने दिया जाए कि भाई आप रेस्ट कर रहे हैं, आप सीधा ऑफिस जाओ, काम करो, बहुत सारी मेहनत करो और पैसे लाओ, यही तो काम होता है और क्या करना है। तो हम तो यही कहेंगे आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए। इस समय हमारे साथ ट्विशा जुड़ी हुई हैं और रिदिशा साथ दे रही हैं और आप दोनों का नाम बहुत प्यारा है, मेरा तो दिल खुश हो गया, मैंने बहुत टाइम के बाद इतना प्यारा नाम सुना रिदिशा। चलिए तो भी थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। जना जी साथ दे रही हैं और रीमा जनिता शेष्टा अनिश्ची अंशनी सिल्विया यूवी कृषि और इनके लिए प्यारा सा गाने की फरमाइश कर रही हैं और उनको कह रही हैं बस मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं क्या बताऊँ मेरे दिल में क्या चलता है तुम सबको देखकर। और मुझे भी एहसास होता है क्योंकि मुझे तो नहीं लगता आपने अपनी बेटियाँ बोला है, पर इतनी सारी बेटियाँ आपकी हो नहीं सकती, पर फिर भी आप उनको माँ जैसा प्यार दे रही हैं और आप उनको बेटियाँ बोल रही हैं तो आपके दिल में डेफिनेटली बहुत प्यार है। ऐसे ही बरकरार रखिए इस प्यार को, हमें बहुत ज़रूरत है इस प्यार की। थैंक यू सो मच। मालिनी जी साथ दे रही हैं, डैरिन श्वेता रविश प्रिशा लोवेश आबादू फैमिली इन्जॉय कर रही है इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। विनीता जी ग्लेन पार्क से कह रही हैं कि जब मैं किसी को मसाज करती हूँ, वो मसाज करती हैं, वो कह रही हैं जब मैं किसी की मसाज करती हूँ तो जब उनका दुख दर्द निकलता है उनके शरीर से तो मेरे चेहरे पे जो सुकून मिलता है ना पूनम जी आप समझ नहीं सकते। मैं तो कहूँगी कि भाई आपको ऊपर वाला आपके हाथों को सलामत रखे, हमेशा खुश रहें। अगर आपको एहसास होता है कि भाई किसी का दर्द कितना निकालना कितना ज़रूरी है और जब कोई दर्द में आता है आपके पास और आपके चेहरे पर जो सैडनेस हो जाती है और उसके बाद जो खुश होकर वापस जाते हैं तो हमेशा आप अपना ख्याल रखें, इंजॉय कीजिए गानों को साथ में। ये RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आप सबके साथ है।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: 12:38 हो चुके हैं दोस्तों, जो इस समय लंच की प्लानिंग कर रहे हैं, लंच बन गया या खा रहे हैं तो इन्जॉय कीजिए अपने खाने को, अपने मस्ती को, अपने गानों को। पर ये एक जो प्यारा सा मैसेज आया ना नेक्स्ट की क्या बात है, मैं क्या बताऊँ, इतना वाव मैसेज है, आप सबको सुनना चाहिए। हमारे को एक लिसनर है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर लेकर जा रहा हूँ, आज मैं उन्हें प्रपोज करने वाला हूँ और वो इस समय गाड़ी में है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और बस उनसे इतना ना चाहता हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। पर मेरी प्रॉब्लम है आज कि मेरी मम्मी भी RM2 रेडियो मस्ती सुन रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा नाम नहीं लेना, मेरे गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लेना, पर उनको यही बता दो कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तो आपको यही बताऊंगी। हाउ स्वीट, इतना प्यारा मैसेज आपने भेजा है, हम बिल्कुल नहीं पता चलने देंगे आपकी मम्मी को कि आपका नाम क्या है, आप प्रपोज कीजिए, मुझे नहीं पता आप रिंग लेकर आए हैं, आप उनके लिए एक प्यारा सा फूल लेकर आए हैं या आप अपना दिल लेकर आए हैं, बट हम आपको इतना ही कहेंगे जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं बस स्माइल करके उनके सामने रख दीजिए, वो एक्सेप्ट कर लेंगी। अगर इस समय आपकी गर्लफ्रेंड ये प्रोग्राम सुन रही हैं और हम उन्हें यही कहेंगे, अगर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपके जो बॉयफ्रेंड है आपको प्रपोज करने वाले हैं, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा हमारी तरफ से। तो अगर आपको लगता है कि राइट एक्शन है और अगर आपको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सालों से आप एक साथ हैं, तो बस उनका साथ दीजिए, इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को। और सर आपको तो बस इतना ही बोलेंगे कि घर जा रहे हैं, RM2 रेडियो मस्ती आपकी मम्मी सुन रही है, तो मम्मी जी 2 मिनट 2 सेकंड अपने कानों को बंद कर लीजिए। पर हम सर आपको इतना ही बोल रहे हैं, आप जब घर वापस जाएंगे तो आपके चेहरे का जो ग्लो है ना, उसी से ही आपकी मम्मी को पता चल जाएगा कि आज आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करके आ चुके हैं। तो हम तो यही कहेंगे आपकी ज़िंदगी खुशियाँ भरी रहे, इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, और ये जो टाइम है ना ये फिर बार बार नहीं आएगा। तो जो भी है, जैसा भी है, जो मोमेंट होगा नेक्स्ट हमें भी बताइएगा, हम वेट कर रहे हैं आपकी, और ऑल द बेस्ट यही कहेंगे आपको। तो इंजॉय कीजिए गानों को, ये गाना हमने आपके लिए चूज किया है। मम्मी जी अभी आप भी सुनो, व्याक रा दो इनका।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: 12:52 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। और यहाँ पर भाई ये जो प्रोग्राम है इसका तो रूप ही अलग बदल गया है, क्योंकि इतने सारे मैसेज इस पर्सन के लिए आए हैं जो प्रपोज करने वाले थे, अब तो कर ही दिया होगा। और हमने भी गाने ऐसे ऐसे मोहब्बत वाले लगाए हैं चिन चिन के आपके लिए। तो मैं तो कहती हूँ भाई, यहाँ पर तो एक भावना जी हैं, उन्होंने इस लड़के के लिए कहा है कि लाइफ बहुत छोटी है, इंजॉय कीजिए ज़िंदगी को, आप जैसा जैम बहुत मुश्किलों से मिलता है। थैंक यू भावना इतना प्यार देने के लिए इस पर्सन को। तो मैं नाम तो नहीं बोल सकती, पर आपको यही बोलूँगी, आप दोनों के लिए जो भी हैं उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आई हैं यहाँ पर।

0: हिमा जी साथ दे रही हैं, अनु विधि, रोशान, कृष्णा, करिश्मा एंड स्पेशली विश्मा की तरफ से वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी लड़का होता है, ऐसा भी हीरो होता है, काश हमारे को ये मोमेंट देखने को मिलता। और सच में इस समय तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक मैं नॉर्मल माइक ले रही हूँ, पर मुझे एहसास हो रहा है कि आपके ऊपर ये जो टाइम है ना कितना ज़बरदस्त हो रहा होगा। आप दोनों के चेहरे पर इतनी स्माइल हो रही होगी, कूद रहे हो गए आप लोग, है ना। तो ड्राइव कर रहे हो, इन्जॉय भी कीजिए, आराम से सेफ ड्राइव कीजिए, आपका टाइम है। इन मुझे पता है कि आप लोगों का बहुत सालों से प्यार है, तो बस इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। और जो बाकी सब आपके लिए बेस्ट विशेस भेज रहे हैं, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का आरएम टू रेडियो मस्ती को चुनने के लिए। और जो भी बर्तन धोते हुए, क्योंकि आपके सब क्या आ रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई सफाई कर रहा है और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहा है, थैंक यू सो मच आप सभी का जो इस समय समुद्र को देख कर कह रहे हैं कि भाई हमें जाना है समुद्र के पास, उसके अंदर थोड़ा सा पानी को टच करना है। तो हम कह रहे हैं रुकते क्यों हो, जाओ ना, थोड़ा सा टच करके मत आओ, पूरा जाओ उसमें कूदो, पर सिर्फ कपड़े आपके पास फ्रेश होने चाहिए, क्योंकि बाहर आके बाहर ठंड लगेगी। और साथ में थोड़ी सी सलाद भी खा लेना, क्योंकि बड़ा मुंह में पानी आ रहा है सलाद का नाम सुनते ही, आप सबके भी आया ना। चलिए भाई एंजॉय करते हैं आप सबके गानों को।
1: बॉडी ब्रांच आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check दोपहर के एक बज रहा है. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से. पूजा आपको नमस्कार.
4: नमस्कार पूनम. सभी को मेरा नमस्कार. हर उस अपराध के बाद जो पूरे देश को झकझोर देता है, मृत्यु दंड को लेकर बहस फिर से शुरू होती जाती है. गुस्सा दोबारा अपराध किए जाने का डर या अपराधियों को और कड़ी सजा देने की इच्छा मृत्यु दंड को फिर से लागू करने की मांग को बढ़ावा देती है. लेकिन इस कठोर कदम के पीछे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं. अपराधी के पुनर्वास का सवाल, न्यायिक गलती की संभावना और ऐसी व्यवस्था की सीमाएं जो कभी भी पूरी तरह अचूक नहीं हो सकती है. आज सुबह सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया और उनकी कविताओं का पाठ किया गया. ये कार्यक्रम प्लेन वेत में लगा. इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू महाजन संगम की पहल पर किया गया. ये संस्था तमिल संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती है और सैंकवा स्थित कैलासों कोविल का प्रबंधन भी करती हैं. सुब्रमण्य भारती एक भारतीय पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे. उन्हें आधुनिक तमिल साहित्यिक शैली का जनक माना जाता है. विदेश में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं जहां मॉस्को में रात भर हुए बड़े पैमाने के यूक्रेनी ड्रोन हमले की जानकारी वहां के गवर्नर आंद्रे वोरोबियेव ने दी है. मॉस्को को मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को मार गिराया गया है. उन्होंने इसे अभूतपूर्व हमला बताया है. एक तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा और कई घरों में आग लग गई. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार. Petit Verger Branch Road Saint-Pierre Petit Verger Branch Road Saint-Pierre 79 साल की 79 years old बीबी आशा जादू पैदाशी नाम इस्माइल और जिन्हें लोग छोटी नाम से जानते थे इंतकाल कर गई है. इनका जनाजा आज शाम 5 बजे इनके मकान पेची वेजे ब्रांच रोड सैंपिया से उठाकर दफनाने के

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:07 हो चुके हैं, थर्ड आवर लग चुका है जहाँ पर हम बहुत ही बातें भी अच्छी अच्छी कर रहे हैं और गाने भी अच्छे अच्छे सुन रहे हैं, और ये सब आप ही सबकी पसंद है क्योंकि आप सब जुड़े होते हैं। तो हमें भी दिल करता है आपको कुछ ऐसा सुनाने का जिससे आपका सैटरडे भी अच्छा हो, संडे भी अच्छा हो, और उसके बाद जब मॉर्निंग मंडे को उठो ना तो आपके दिमाग पर कोई प्रेशर ना हो, आपको लगे कि अरे

कुछ काम ही नहीं हुआ, मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जब हम गाने चलाते हैं तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आपने कितने काम कर लिए। तो चलिए भाई, काम करते रहिए, इंजॉय करते रहिए, साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए। पर हमारे जुड़ने के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, आज है 6th बर्थडे क्यूट हंसनी का, जिनका जिनके परिवार उनको थोड़ा सा लेट विश कर रहा है, पर कह रहे हैं कि हम उसको बहुत दिल से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए गाना ज़रूर चलाइएगा। हम बिल्कुल गाना उनके लिए चलाएंगे और हम बहुत सारी बेस्ट विशेज उनको भेजते हैं और उन्हें यही कहते हैं, आप हैं तो छोटे पर क्या करें, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरी फैमिली के लिए, तो इन्जॉय कीजिएगा अपना बर्थडे। क्योंकि बच्चों के लिए भाई हम तो यही कहेंगे कि उनको एक महीना दीजिए, बट उसके साथ साथ रोज़ एक प्यारा सा गिफ्ट दीजिए, इन्जॉय करने दीजिए उनके बर्थडे को। उनको भी तो पता चलना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट होता है परिवार के लिए एक बर्थडे सेलिब्रेट करना। आज है बेटा कृष्णा चिना पिन जी का बर्थडे, जो कि आज 26 साल यानी 26 ईयर्स के हो चुके हैं, सेंट जूलियन विलेज के रहने वाले हैं। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं आ रही हैं, सविता कुमारन, अंशी दादी, मया लक्ष्मी जी वाइफ कविस्नी जी की तरफ से, और उनको बोल रहे हैं कि आपका बर्थडे है तो आप बस ये बताइए कि आपको क्या चाहिए, गिफ्ट में भी क्या चाहिए और ज़िंदगी में भी क्या चाहिए। हम लोग हैं आपके साथ, हर सुख दुख में आपके साथ रहने वाले हैं और हमेशा आपको प्यार करते हैं, आपका बर्थडे बहुत अच्छा। अरे क्या बात है, इतने सारे प्यार भरा मैसेज आए और बर्थडे विशेस आए और साथ में गिफ्ट्स मिले, और इससे ज़्यादा बर्थडे में क्या चाहिए होता है। तो हम भी आपको यही कहेंगे, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। अपने बर्थडे को जिनका भी आज बर्थडे है, खुश रहें, मुस्कुराते हुए रहें और आगे बढ़ते रहिए, इंजॉय कीजिए अपने गानों को और प्यारे से हैप्पी बर्थडे गाने इसको।

0: रेडियो मस्ती।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: FM2
1: Radio Musti.
2: एगो लास्युरांस लावी कौन जी है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है। पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा। सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी। तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्युरांस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा इन्वेस्टी करे जो निर्भर रही की आप कितना रिस्क ले सकबा। नतीजा एगो ऐसन लास्युरांस जो तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई। सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह। इमे नियम और शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
4: Join the RM2 team this Monday, 21st of September on the parking lot of Dream Prize Suyak for a job and training fair organized by the Ministry of Labour and Industrial Relations. RM2 will be live us from 10 a.m. to noon. So don't miss out.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:22 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं हमारे साथ यानी कि RM2 रेडियो मस्ती के साथ। और इस समय आपका साथ दे रही है पूनम। तो भाई आपके इतने सारे मैसेजेस जब आ रहे हैं तो मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है, पर ये कुछ स्पेशल मैसेजेस होते हैं ना जो बिल्कुल हटके होते हैं, उनमें बस दिल होता है कि पूरा दिल डाल के आपको उनका मैसेज सुनाऊँ।

0: क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा प्यार डाला होता है। तो चलिए जी, इस समय हमारे साथ हैं रेशमा की मामा, जिनकी डॉटर की शादी है 3rd of October को, और कहती हैं मेरे दिल का टुकड़ा सौंप रही हूँ इस लड़के को, दामाद से ज़्यादा उसको बेटा बुलाने का दिल करता है, और मेरी बेटी इतनी सुखी रहे, मैं चाहती हूँ कि हमेशा उसको हर खुशी मिले जो हमारी तरफ से रह गई हो, अब उसको उसका पति उसको दे, और हम तो यही कहते हैं कि हमारा पूरा आशीर्वाद है इन दोनों बच्चों को, हमेशा खुश रहें। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ इतनी प्यारी सी ये बात शेयर करने के लिए, और हम भी ये कहेंगे आप दोनों हमेशा खुश रहें, एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, बहुत प्यारी सी छोटी सी ज़िंदगी है, और इसमें जितना प्यार एक दूसरे को दे सके, बांट सके, और उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जी यही ऐसा ही प्यारा सा एक और मैसेज है रोहित जी के पापा की तरफ से, उनकी बेटे की शादी 7th of October को है, और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ दे रहे हैं, कह रहे हैं इतना छोटा था, इतना नॉटी था, और ये कैसे इतना शांत हो गया, और मैं तो इसको खिलाता था और लेकर जाता था, स्कूल छोड़ने जाता था, अब मुझे डर लग रहा है इसके सामने आते हुए, मैं क्या कहूँ, उसे क्या एक्सप्लेन करूँ, ज़िंदगी को कैसे जीना है मुझे समझ नहीं आ रहा। हम तो आपको बस बोलेंगे सर बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कोई बात नहीं, बस चलते चलिए, सबको ऐसी ज़िंदगी अपने आप समझ आती चली जाती है, प्यारी ज़िंदगी है, आपको नई जो चीज़ समझ आ रही है हम अपने गाने में समझाएंगे, आप उन्हें बस ये कह रहे हैं कि आई लव यू सन, और प्रीति को भी बहुत सारा प्यार, और तुम दोनों एक बहुत अच्छा जोड़ा रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, पापा और मामा की तरफ से बेस्ट विशेस। क्या बात है, तो आपने इतनी सारी बेस्ट विशेस इन दोनों को दी है, और मैं तो कहूँगी चारों को दी है, यहाँ पर 7th October को भी एक शादी है और एक 3rd of October को भी है, तो हमेशा खुश रहे, ये आगे बढ़ते रहें, खुशियाँ आपके कदम चूमें, और ये गाना आप दोनों की तरफ से जो जो आपने पसंद किया। बट मैं ये बताऊँगी कि यहाँ पर ना बहुत बार आता है कि कुड़माई, कुड़माई का मतलब होता है पंजाबी में सगन होना, सगाई होना, या रुका होना, या एंगेजमेंट होना, तो इसीलिए हमने सोचा क्योंकि शादी का समय है, आपने शादी बताई है, तो हम शादी का गाना लगा रहे हैं, कुड़माई वाला नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि शादियां हैं जी, एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को।
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Party Brunch RM2 Radio Masti
1: 1:42 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम बॉली ब्रंच के साथ। इस समय मैं हूं आपके साथ पूनम भाई। ये जो गाने जो आप सबने पसंद किए और अपने अपनी ख्वाहिशात रखी हमारे सामने और आपने कहा कि प्लीज़ ये गाना चलाइए या ये मस्ती कीजिए और या आपने बहुत सारे बेस्ट विशेज़ एक दूसरे के लिए भेजिए, तो मैं तो आपको यही कहूँगी ये सारी आपका ही कमाल है। हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ आपको गाना चला के देते हैं। तो चलिए भाई, बहुत ही प्यारे प्यारे गानों के साथ हम उनके लिए बेस्ट विशेज़ लेकर आए हैं जो इस समय एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, जो कि बाहर देशों से आए हैं और मॉरिशस में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं। और साथ में जो हमारे मॉरिशियन दोस्त हैं जो कि इस समय जुड़े हुए हैं, चाहे वो गार्डन में हो, शॉप में हो, स्टोर में हो, कहीं पे भी काम कर

रहे हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, हम तो कहते हैं भाई आपकी मेहनत को सलाम है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं संडे को भी, तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आपको एहसास होगा कि आप भी बोल पाएंगे कि देखिए भाई मैंने बहुत मेहनत की थी और अब आराम से ज़िंदगी को जी रहा हूँ। तो बस हम तो यही कहेंगे, आपके लिए बेस्ट विशेस देते हैं और आपके लिए बहुत सारा प्यार, आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हम यहाँ से दे सकते हैं, और आपको इतना ही बोलते हैं कि

0: Story Brunch RM2 Radio Masti
1: 1:51 हो चुके हैं और इसी के साथ बॉली ब्रंच यहीं रुकता है, पर मस्ती बिल्कुल रुकेगी नहीं क्योंकि मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है हंसनी का। और हंसनी जब आती हैं प्लग एंड प्ले लेके तो बहुत ही प्यारे गाने लेकर आती हैं, हमारे साथ ही रहेगा। थोड़ा सा रेस्ट बीच बीच में करते रहिए, कुछ खाते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर से बॉली ब्रंच अगले हफ्ते आपको मिलेगा सेम 11 बजे से लेके 2 बजे तक, और मैं थी आपके साथ पूनम। बस अब मैं तो चलती हूँ, पर आप साथ रहिएगा RM2 रेडियो मस्ती जो हमेशा 24 आवर्स आपके साथ है। एंजॉय कीजिए इस गाने को, और इसके साथ मैं लेती हूँ बाय बाय, और थोड़ी देर बाद हंसनी करेंगी हाय।

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Good afternoon, aap sabhi ko. Check the time. It's already 2 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ. आपको नमस्कार पूजा.
5: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार. हर उस अपराध के बाद जो पूरे देश को झकझोर देता है, मृत्यु दंड को लेकर बहस फिर से शुरू हुई है. गुस्सा दोबारा अपराध किए जाने का दरिया, अपराधियों को और कड़ी सजा देने की इच्छा मृत्यु दंड को फिर से लागू करने की मांग को बढ़ावा देती है. लेकिन इस कदम के पीछे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं. अपराधी के पुनर्वास का सवाल, न्यायिक गलती की संभावना और ऐसी व्यवस्था की सीमाएं जो कभी भी पूरी तरह अचूक नहीं हो सकती. आज सुबह सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया और उनकी कविताओं का पाठ किया गया. ये कार्यक्रम प्लान व्यर्थ में लगा. इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू महाजन संगम की पहल पर किया गया. ये संस्था तमिल संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती है और सैखवा स्थित कैलासों कोविल का प्रबंधन भी करती है. सुब्रमण्य भारती एक भारतीय पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे. उन्हें आधुनिक तमिल साहित्य शैली का जनक माना जाता है. मावाकवा जलाशय का जलस्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है. इसी जलाशय के किनारे आर्यसभा मॉरिशस ने 12 घंटे के लिए एक महायज्ञ आयोजित किया, मतलब एक वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया. सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्र उच्चारण और आहुतियों के साथ पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए प्रार्थना की जा रही है. विदेश में मॉस्को में रात भर हुए बड़े पैमाने के यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. मॉस्को के मेयर ने कहा है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को मार गिराया गया. उन्होंने इसे अभूतपूर्व हमला बताया है. एक तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा और कई घरों में आग लग गई. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है, ने पुष्टि की है कि कीव ने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रूसी तेल प्रतिष्ठान और लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया. उनके अनुसार ये प्रतिष्ठान है जो युद्ध मशीन को बनाए रखने के लिए अरबों डॉलर उपलब्ध कराते हैं. तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: बेल्टेयर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में, बेल्टेयर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड शिकेश्वर बसावन जिन्हें लोग केसो नाम से ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनके बेटे विकास बसावन के मकान बेल्टेयर रोड हाईलैंड्स फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 3 p.m. पिचीवेजी ब्रांच रोड सैंपियर में 79 साल

0: की 79 ईयर्स ओल्ड बीबी आशा जादू, पैदाशी नाम इस्माइल और जिन्हें लोग छोटी नाम से जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम पाँच बजे इनके मकान पिची वर्जे ब्रांच रोड दस सैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सैकोस्टांस सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5 PM। और पायों के रोड प्रोविडेंस का छः मिलीतिया में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिमला गुप्तर पैदाशी नाम राम भोजू और जिन्हें लोग कविता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थिक कल सोमवार को सुबह नौ बजे इनके बेटे इरेश गुप्ता के मकान पायोंकर रोड प्रोविडेंस का छः मिलीतिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन काउंट मास कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो एट 9 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti. Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Radio Musti.
1: Join the RM2 team this Monday, 21st of September, on the parking lot of Dream Prize Suyak for a job and training fair organized by the Ministry of Labour and Industrial Relations. RM2 will be live us from 10 a.m. to noon, so don't miss out.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Plug and play.
2: RM2.
3: दो बजकर 11 मिनट हो चला है. हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी को. संडे का टाइम है, इट्स संडे आफ्टरनून, और हम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं ऑन अवर वे टू मस्ती. वैसे आज का मूड कैसा है जी? मूड बिल्कुल हैप्पी, नो टेंशन, नो प्रेशर, बस गुड हैप्पी फीलिंग्स के साथ हम इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं. ग्रेट म्यूज़िक और थोड़ी और सी मस्ती जो छा गई है सुबह से ऑन रेडियो मस्ती. इस संडे टाइम तो सुबह से इतने सारे शोज हो चुके हैं और अब बारी है हंसनी की आप लोगों के लिए, लेकर जो आ रही है बेस्ट ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, कुछ ऐसे गाने जिनसे दिल मुस्कुरा जाएगा और एकदम से एंटरटेनमेंट हो जाएगा फॉर दिस लवली आफ्टरनून. विशिंग यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड. रियली होप कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक से जा रहा है और परिवार सहित जो खास पल है वो आप बिता रहे हो. ऑलरेडी हैड योर लंच, दैट्स वेरी नाइस. तो अभी कुछ परिवार ऐसे है कि बैठे हुए हैं आराम से, कुछ बातें शेयर कर रहे हैं हफ्ते भर के लिए जो आप बिजी रहते हो और कितना यू नो भागा दौड़ी होती है. लेकिन आज इट्स टाइम टू टेक द ब्रेक परिवार के साथ, अपनों के साथ, जस्ट फील द एम्बियंस ऑफ वीकेंड. और बढ़ रही हो कहीं पर, मंजिल दूर नहीं ये, पर यहाँ पर कहीं पे आप जा रहे हो फॉर एन आउटिंग, फॉर अ ड्राइव, या फिर जहाँ पर भी आप कनेक्टेड हो. यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पर कनेक्शन बन ही जाता है विद रेडियो मस्ती. सो एनी हाउ, यहाँ पर जो हमारी आवाज़ है वो तो जाएगी आपके यहाँ. थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग रेडियो मस्ती जो वीकेंड को भरपूर मस्ती देने वाली है. एंड फ्रॉम योर साइड अगर कुछ है दिल की बातें जो शेयर करने से आपको लगता है बस अच्छा हो जाएगा, परिवार खुश हो जाएंगे, प्यार आपका खुश रहेगा, सो व्हाई नॉट. इसके लिए हम करेंगे आप लोगों का इंतजार 5:12:94. दिस इज ऑल अबाउट म्यूजिक. ये सफर जो हम तय करने वाले हैं शाम के 4 बजे तक. सो यूं ही साथ निभाते रहिए. इट्स अ वार्म वेलकम टू यू ऑल.
0: प्लग एंड प्ले.
2: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

0: to Radio Musti.
1: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में. साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट. आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है. आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट. और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो. तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसांग के स्टोर्स में और थ्वासिसांग.mu पर भी. RM2
0: रेडियो मस्ती.
2: Plug and play.
0: RM2.
2: Plug and play.

0: प्लग एंड प्ले
1: RM2
2: तेरा मेरा रिश्ता जो एकदम पुराना है ये ऐसा गाना है जो अपने आप में एक इमोशन है जो अपने आप में एक खास एहसास है वो बिना पीछे देखे चला गया शायद उसे डर था कि आंखों में देखकर बस खुद को रोक नहीं पाएगा कुछ लोग जिंदगी से इस तरह चले जाते हैं कि दरवाजा तो बंद कर लेते हैं लेकिन यादों का जो किस्सा होता है यादों की जो खिड़कियां होती हैं वो हमेशा खुली छोड़ जाते हैं राइट वो चला गया बिना पीछे देखे जैसे हमारा रिश्ता कभी था ही नहीं और आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी कहानी अधूरी रह गई तो यहां पर कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं तो आई स्ट्रॉन्गली प्रे अगर किसी से आपने सच्चा प्यार किया है दिल से आपने प्यार किया है तो उस प्यार की कहानी में जुदाई का वो चैप्टर ना आए क्योंकि जब आता है जुदाई वाला टाइम तो कितना दर्द होता है ये तो सच्चे प्यार करने वाले ही इस दर्द को बयां कर सकते हैं ना वो बिना पीछे देखे चला जाता है तो आप तो वहीं के वहीं खड़े हो रहते हैं और जस्ट थिंक अबाउट कि काश वो पल लौट कर आता कि वो वापस आता या फिर जहां पर आप खड़े थे दोबारा वो देख पाते आपको तो ऐसे जो फीलिंग्स है वो तो बिल्कुल महसूस आप कर देते हो जो यहाँ पर जुदाई का आलम फील करते हो लेकिन यहाँ पर अगर जुदा हो गए हो तो आपको पता है कि जो दूरियाँ हैं वो कौन नमिता देती हैं आपके लिए दैट्स आवर रेडियो मस्ती जो हम सफर बन ही जाता है और जहाँ पर आंखें थोड़ी सी नम होती हैं यहाँ पर आंसू निकल जाती हैं तो वी ट्राई आवर बेस्ट कोशिश हम कर लेते हैं जो मुस्कुराहटें हैं वो फिर से यहाँ पर मुस्कान में बदल जाए यहाँ पर द मैजिक ऑफ म्यूजिक तो है ही कुछ ऐसा जहाँ पर कहीं ना कहीं चल ही जाता है वी हैव गॉट सो मेनी रीजंस टू स्टे हैप्पी एक ही ढूंढ लीजिए तो अपने आप यू विल फील हैप्पी अगर दिल भारी हो गया है तो लेट्स मेक इट अ बिट मोर इजी लेट्स मेक इट अ बिट लाइक इजी गो यहाँ पर जैसे हम कहते हैं दिल हल्का हो जाता है Stay connected for more music. We have got only the best till the end. This is a Plug and Play, jahan par Hansini ka saath hai. Is samay a big hello to all my friends. Jo safar karte huye saath nibha rahe hain ya fir ghar par and abroad se bhi door hote huye bhi, milon door hote huye bhi strongly connected hai with Radio Masti. So big hello to all our parivar jo abroad se bhi pyar hum tak pahuncha rahe hain. Stay connected on Radio Masti.
0: Plug and Play.
1: RM2.
0: Plug and Play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, जहाँ पर ऑफ कोर्स वी आर हैविंग द ग्रेट एंटरटेनमेंट. और संडे वाला जो दिन बस गुजर रहा है, प्यार के साथ ही हम बिता रहे हैं. एंड विल मेक इट अ बिट मोर इजी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आज ड्यूटी पर है, आज काम जारी है. सुकुमार टू एवरीवन, एंड टू मेक इट हैप्पी, एक हैप्पी जर्नी. सो व्हाई नॉट आपके कुछ मैसेजेस हो जाए, यहाँ पर आपकी तरफ से कुछ बातें हो जाएंगी, सो दैट विल बी इवन ग्रेट. We have Sunita from Rivière du Rempart. आपका वार्म वेलकम है जी, और जितने भी हमारे परिवार जुड़े हुए हैं वहाँ सबका वेलकम. गाना है आपके पति निरंजन के लिए, सेलिब्रेटिंग हिज स्पेशल डे. आज उनका जन्मदिन है, आज मिलकर धूमधाम से हम इस सेलिब्रेशन में शामिल होंगे. हैप्पी बर्थडे टू निरंजन जी, गॉड ब्लेस यू, हमेशा आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड बी ऑलवेज इन गुड हैप्पी फीलिंग्स. यही हमारे गुड विशेस है. हम लेकर आए हैं एक खास गाना आपके लिए फ्रॉम योर स्वीट वाइफ, जो आपसे बहुत ही प्यार करती है. हाय हंसनी, प्रणाम. प्रणाम टू यू टू, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. आपको सुनीता फ्रॉम पिचित रिवियर. और एक सुनीता, क्या बात है, आज सुनीता छा गई है ऑल अराउंड. और यहाँ पर मीठी मीठी बातें जो आती है, बहुत खुश आप हो जाती हो टू लिसन टू रेडियो मस्ती. तो यहाँ पर एक गाना तो बनता है टू विश रंजया, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे, 6 साल की हुई है. लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू यू फ्रॉम ममा तिशा. वी हैव पापा यानीश, रंजया फैमिली से नानी सुरेखा. वी हैव विकी, निखिल, होलाश, गिरीश और बड़ी नानी मोहिनी, गणेश जो है फ्रॉम फ्लैक. और सब परिवार आए हैं शोहन रंजया को विश करने के लिए अ वेरी हैप्पी बर्थडे. लॉट्स ऑफ गुड विशेस है, गॉड ब्लेस यू, एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस कमिंग फ्रॉम ऑल आवर टीम. और यहाँ पर मैसेज है फ्रॉम रिधिमा, और आप तो हो फ्रॉम कांटोरेल, एंजॉइंग रेडियो मस्ती सिंस मॉर्निंग. और आपको तो पता है हंसनी, संडे वाला जो दिन आता है काफ़ी हेक्टिक होता है हम सब लेडीज़ के लिए, जो साफ सफाई करने में बस बिजी हो जाते हैं सुबह से. ये तो हमें पता है, बखूबी हमें पता है. लेकिन अभी इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, अभी इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून टाइम. कुछ आराम फरमा लीजिए, हैव सम रेस्ट. और बेशक म्यूजिक तो आपका साथ ज़रूर देने ही वाला है. और हम अपलोड की बात कर रहे थे, तो कैसे अपनों को भूल सकते हैं. हेलो टू आवर स्वीट ब्रदर जो स्विट्जरलैंड से कनेक्टेड है टू मॉरिशस. एज ऑलवेज यहाँ पर कुछ मस्ती कर रहे हैं, और इसी पल में उन्होंने सोचा है व्हाई नॉट रेडियो मस्ती को ऑन किया जाए. बिल्कुल सही आपने सोचा है अंतेश जी, आपका वार्म वेलकम इन मॉरिशस. और वीकेंड का ये सफर चल रहा है, सो एक खास म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है ना, राइट? सो इसके लिए बिल्कुल अगला जो गाना है जाएगा टू ऑल द फैंस ऑफ SRK, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है विद रेडियो मस्ती.
0: प्लग एंड प्ले.
1: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

और यहाँ पे बेस्ट रेडियो स्टेशन के साथ यहाँ पर आपको पता है ना, हम लेकर आते हैं द बेस्ट सिलेक्शन एज वेल, ताकि यहाँ पर मिक्स म्यूजिक के साथ जो सुवेनियर्स है, जो फीलिंग्स है, वो बस कनेक्टेड रह जाए विद आवर रेडियो स्टेशन. यहाँ पे संडे टाइम इट्स सनशाइन. कई जगहों पर ऐसा है कि कुछ बारिश होने वाली है, कोई बात नहीं, वी हैव गॉट म्यूजिक फॉर ऑल द खास मौसम जो यहाँ पर अच्छा जाता है. म्यूजिक है और लाइफ को एंजॉय करने का ये ब्यूटिफुल रीजन हमको मिल गया है. दिस इज अ प्लग एंड प्ले ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर और जो हंसनी जो आपका साथ निभा रही है, एंड यू ही हम हंसते हुए रहते हुए टू शेयर द फीलिंग्स ऑफ योर मैसेजेस. यहाँ पर ऑफ कोर्स हो रहा है आप ही का इंतजार ऑन 5:12:94. कुछ पल में हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचारों की ओर. स्टे कनेक्टेड, क्योंकि हम तो मिलने वाले हैं जी इन द सेकंड आवर कुछ और बातें शेयर करने के लिए.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Good afternoon, everyone. I check your time. It's dopahar ke 3 baje. Sunte hain sangshat samachar Pooja ke saath. Aapko namaskar, Pooja.
5: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार. जिस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दी गई, अक्सर इसे अब कचरा फेंकने की एक जगह बना दी जाती है. सफाई अभियान चलाए जाने और इन स्थानों तक पहुंच रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बावजूद कुछ लोग फिर भी यहां अपना कचरा फेंकने आ जाते हैं. इस स्थिति से आसपास के रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं. साथ ही इसे ज़मीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. हर उस अपराध के बाद जो पूरे देश को झकझोर देता है, मृत्यु दंड को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है. गुस्सा, दोबारा अपराध किए जाने का डर और कड़ी सजा देने की इच्छा मृत्यु दंड को फिर से लागू करने की मांग को बढ़ावा देती है. इस कठोर कदम के पीछे कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं. अपराधी के पुनर्वास का सवाल, न्यायिक गलती की संभावना और ऐसी व्यवस्था की सीमाएँ जो कभी भी पूरी तरह अचूक नहीं हो सकती. महोवाकुआ जलाशय का जल स्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है. इसी जलाशय के किनारे आर्य सभा मॉरिशस ने 12 घंटों के लिए एक वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया है. सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्र उच्चारण और आहुतियों के साथ पूरे टापू में वर्षा की आपसी के लिए प्रार्थना की जा रही है. विदेश में मॉस्को में रात भर हुए बड़े पैमाने के यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि कीव ने इलाके में एक महत्वपूर्ण रूसी तेल प्रतिष्ठान और एक लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया है. इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि कल शनिवार को कीव और सुमी क्षेत्रों में रूसी हमलों में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे. तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में. शोक समाचार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
5: Petit Verger Branch Road Saint-Pierre में 79 साल की 79 years old बीबी आशा जादू, बीबी आशा जादू पैदाशी नाम इस्माइल और जिन्हें लोग छोटी नाम से जानते थे इंतकाल कर गई है. इनका जनाजा आज शाम पाँच बजे इनके मकान पिछी वैजे ब्रांच रोड सैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सैकोस्ता सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 5 PM. शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमारी हमदर्दी है.
0: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: plug and play.
1: RM2.
2: कितने अच्छे अच्छे गाने प्लस लाजवाब वीकेंड विद रेडियो मस्ती. तो और क्या चाहिए टू मेक दिस मूड यहाँ पर एकदम रोमांटिक एकदम प्यारा. तो यहाँ पर इक्वेशन जो आपने सिलेक्ट किया है आज बिल्कुल सही सोचा है. सो वार्म वेलकम टू यू ऑल. यहाँ पे संगीत का ये सफर अच्छा रहा है खूबसूरत गानों के साथ. और कभी कोई ऐसा गीत हम सुन लेते हैं जिससे बस हम खुश हो जाते हैं, हमें हंसा देता है. और कभी कोई ऐसा धुन पुरानी यादों में ले जाती है. और कभी ऐसा गाना आता है, कोई बोल होता है दिल की वो बात कह देते हैं जिसे हम खुद शब्द

0: में नहीं कह पाते. सो दैट्स एक्चुअली द मैजिक ऑफ म्यूजिक. हर गीत के साथ, हर गाने के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, कभी प्यार की, कभी दोस्ती की, कभी बिछड़ने की, और कभी किसी खूबसूरत याद की, राइट? तो आइए आज इस म्यूजिकल सफर में कुछ पल उन यादों के नाम हम करते हैं जो हमारे दिल के बहुत ही करीब है. जहाँ पर आप हो वहाँ पर आराम से बैठे, आंखें बंद करिए. अगर आप फ्री हो तो घर पर हो, ड्राइव करते समय ये अप्लाई नहीं होगा. आंखें बंद करें अगर आप घर पे हो तो हैव सम रेस्ट और म्यूजिक को अपने दिल तक पहुंचने दीजिए. दिस इज एक्चुअली रेडियो मस्ती जो यहाँ पर कनेक्शन बना रहा है, जहाँ पर आपका साथ जारी है. और ड्राइव करते समय फोकस ओनली ऑन योर ड्राइविंग, लेकिन कान जो है उनके लिए एंटरटेनमेंट यहाँ पर जारी है. दैट्स आवर रेडियो स्टेशन रेडियो मस्ती जो इस आफ्टरनून को और भी जबरदस्त बनाता जाएगा. शाम के 4 बजे तक यहाँ अजय हंसनी का साथ रहने वाला है. विशिंग यू ऑल अ वार्म वेलकम, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल आफ्टरनून.
1: Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: शोना तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा हो जिसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। तुम्हारी एक मुस्कान मेरा पूरा दिन बदल देती है। तुमसे बात हो जाए तो दिन अच्छा लगता है और बात ना हो तो कुछ कमी सी महसूस होती है। शायद यही तुम्हारी आदत है और मुझे ये आदत बहुत ही प्यारी है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद योर मैसेज शायरी। और आप हो ऋषभ जी जो आए हैं टू कन्वे द लव फॉर योर लवली पार्टनर फॉर योर लवली शोना। सो यहाँ पर बिल्कुल एक खास गाना तो बन गया है आप दोनों के लिए। वेरी होप यू हैविंग अ मस्त वीकेंड विद आवर रेडियो मस्ती।
1: RM2
2: Radio Musty.
1: Feel the Musty.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन ऑन द रेडियो मस्ती एंड यहाँ पर जो गानों का ये सिलसिला है उनको बस जारी हम रखते हैं एंड लेट अस हैव सम डेडिकेशंस नाउ जहाँ आपने कुछ भेजा है अपनों के लिए सो व्हाई नॉट विल हैव द फीलिंग्स यहाँ पर आपके मैसेजेस द्वारा जो बयां होने वाला है राइट ऑन रेडियो मस्ती. हेलो हंसनी, हेलो टीना, कैसे हो? वार्म वेलकम टू टीना. यहाँ पर आई है टू विश बेस्टी अरुणा अ वेरी हैप्पी बर्थडे. विशेस है, प्यार है, लॉट्स ऑफ ग्रेट विशेस और दोस्ती के लिए आप लेकर आए हो द वंडरफुल विश कि ये जो बंधन है वो कभी ना टूटे. फ्रॉम टीना रागिनी और सब दोस्तों की तरफ से भी हम अरुणा को विश करेंगे हैप्पी बर्थडे. इसके बाद चलते हैं सीजिया मिलर फॉर अ साइड. वी हैव अनुषा यहाँ पर गाना आपके लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द विश फॉर ऑल योर डियर वंस. वी हैव पूनम, हेलो एंड वेलकम टू यू. आप क्यों पेपर से हो और अभी किचन में आप हो, आप गरम गरम चाय बना रहे हो और साथ में गरम गरम अच्छा कोकेट फोमाज. ओके दैट्स नाइस. चाय के साथ बिल्कुल फिट होता है. और अगर आपके यहाँ यू नो बादल कुछ घिरे हुए हैं और ऐसा अनुमान है कि कुछ बारिश होने वाली है, ये तो हम कह रहे हैं, हम तो स्टूडियो में हैं, लेकिन आपको तो पता होगा कि आपके यहाँ मौसम कैसा है. तो ऐसे मौसम में जब ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है तो चाय पकौड़े ये सब बिल्कुल इन होता है. So have a wonderful afternoon with your sweet ones and wish you a great chai wala time. It's afternoon aur kai parivar is samay apne you know afternoon wala jyoti time hai bas must hokar enjoy kar rahe hain. Very nice and thank you of course aapne radio masti ko on kar liya hai. We have Anil from Puente Sable. Aapka warm welcome. Please play a track for my sweet wifey Meghna. And I want to tell her she is very special. Road kar chali gayi hai aur wo apne mummy ke yahan hai. And is samay wo radio masti sun rahi hai. Very nice. Hum unko bas kehna chahenge, guzarish karenge Meghna Azizit se ki jaldi se jald patch up time ho jaye aur jo pyar hai aap dono ke beech mein wo phir se khil jaye. God bless aur ye jo choti si nok jok hai wo to chalti rehti hai lekin bari na ho, zyada दूरियां ना हो, इसके लिए हम स्ट्रॉन्गली प्रे करते हैं जल्द से जल्द आप दोनों मिल जाए. एंड ऑफ कोर्स गाना आप दोनों के लिए ही हम डेडिकेट करना चाहेंगे ताकि जो फीलिंग्स है, जो प्यार है वो फिर से बस जग जाए. राइट, सो वी आर हियर टू एंटरटेन यू टिल 4 PM विद द रेडियो.

3:37 PM in the afternoon, and thank you for connecting with the Radio Masti. दिल को चुराते हैं हमें बस चाहिए वो बहाना जहाँ पर दिलों को चुराते हैं वो द म्यूजिक ऑन आवर Radio Masti. थैंक यू फॉर लविंग द कलेक्शन ऑफ प्लग एंड प्ले आज म्यूजिकल सफर है सब लोगों के लिए. एंड वी आर हियर टू मेक योर वीकेंड एक एकदम धमाकेदार एकदम ऑसम एकदम रोमांटिक. और वीकेंड वाला टाइम तो हमारा फैमिली टाइम होता है. सुबह रही हो कहीं पर सफर जारी है एंजॉयिंग द बेस्ट मिक्स म्यूजिक विद Radio Masti. सो वी आर हियर और बिल्कुल फैमिली टाइम को ऐसे ही प्रेशियस बनाते जाएंगे. अ बिग हेलो टू ऑल माय स्वीट पीपल जो सुबह से कनेक्टेड है विद Radio Masti जहाँ पर वीकेंड को बस बिताते जाएंगे विद आवर म्यूजिकल जर्नी जो यहाँ पर सेट हो रही है आप लोगों के लिए. हमारे बाद आएंगे RJ संजय और में जो मुलाकात है आपकी और हमारी वो तो बस होती रहती है होती रहेगी as always. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग साथ साथ.

0: drag and play.
1: RM2.
2: ये था एकदम मस्त अंदाज में आया माही. रियली होप वी एंजॉयड और साथ साथ मिलकर हम इस सफर को तय करते हुए बस कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है वेदर रेडियो मस्ती. चलिए अभी के लिए हम बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर. चलते हैं मोता ब्लॉश रामदिकल परिवार के यहाँ. शुरुआत से जो प्लग इन प्ले शो में शामिल हो गई है सब परिवार, स्पेशली नीतीश, प्रणाम टू यू एंड वार्म वेलकम. वैसे आवारापन गाना जब चला ना, सो ही गॉट सो मच कनेक्टेड. रियली होप यू हैविंग अ नाइस वीकेंड. तो यहाँ पर गाना आपके लिए एंड फॉर योर लवली मॉम एज वेल. सभी को वो वीकेंड. किमराज का साथ फ्रॉम क्यूपिप, एंजॉयिंग द शो यहाँ पर वेरी मच. एक गाना मेरे लिए हो जाए, फॉर मी एंड फॉर माई वाइफ कविता के लिए. शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज. गुड विशेस टू यू कविता जी, स्टे ब्लेस्ड. और गाना आपके लिए, सभी विश्राम परिवार के लिए. एंड वी हैव रेशमी जो आपकी बेस्टी है, जो आई है फ्रॉम फ्रांस. सो बिग हेलो टू योर बेस्टी एज वेल. हैव अ वंडरफुल फैमिली टाइम. जयशन जी का वार्म वेलकम है. आप तो हो फ्रॉम ब्रिटानिया और इस समय आप परिवार के साथ हो. यू आर इन योर वैन गोइंग टू द सी साइड. और मिलकर हम इस फैमिली टाइम को जरूर एंजॉय कर रहे हैं. वेदर रेडियो मस्ती, वेरी नाइस. आप सभी का वेलकम. मिस्टर राज कैसे हो जी, वेलकम. यहाँ पर गाना सभी बुधू परिवार के लिए एंड फॉर योर माता जी सरविता जी के लिए, सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज. और साथ में है ब्रदर इन लॉ वीरेन, उनका भी जन्मदिन है आज. सो डबल सेलिब्रेशन आपके यहाँ, वेरी नाइस. खुशियाँ जारी है. ये डबल विशेज भी जारी है उन लोगों के लिए जो आज स्पेशल दिन मना रहे हैं. पूरे टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे. वी हैव विमल और उनका साथ है फ्रॉम रिव्या जी पर्स्ट. हेलो जी, कैसे हो, वार्म वेलकम टू यू. और गाना आपके लिए हो जाए फॉर लवली वाइफ रीना के लिए. एंड वाज हैविंग चाय एट द टाइम जब आई गॉट योर मैसेज. एंड अभी आई गेस टी टाइम हो गया है, लेकिन स्टिल गाना तो बनता है ना आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती, क्योंकि साथ जो हमेशा जारी रहता है. ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग्स ऑन रेडियो मस्ती. स्पेशल थैंक यू टू यू फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन.
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: अंतिम गाना चल पड़ा है फॉर प्लग एंड प्ले प्रोग्राम. इसके लिए कहेंगे थैंक यू टू पार्टिसिपेट विद अस, टू बी विद अस फॉर ऑल योर मैसेजेस. अभी आएंगे थोड़ी देर में और जे संजय लेकर आज का शो जो रहने वाला है नेक्स्ट बॉलीवुड टकाटक. सो उनका साथ जरूर हम निभाने वाले हैं अटिल 7 PM, जबकि हम तो मिलने वाले हैं, जल्द ही मिलेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ. आई विश यू अ हैप्पी वीकेंड.

0: until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: RM2 Radio Musty.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musty.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
7: शाम के चार बज रहे हैं। सुनते समाचार पूजा सभी सुखालियों के साथ नमस्कार।
8: नमस्कार संजय सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद शरीर और मन के बीच संतुलन पर जोर देती है। इसी विषय पर गुरुवार 17 सितंबर को मॉरिशस विश्वविद्यालय में चर्चा और विचार विमर्श हुआ। ये कार्यक्रम आयुर्वेद दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसे 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयुर्वेद कोन का शुभारम्भ किया गया। खाली जमीनों को अक्सर कचरा फेंकने की एक जगह बना दी जाती है। सफाई अभियान चलाए जाने और इन स्थानों तक पहुंच रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बावजूद कुछ लोग फिर भी यहां अपना कचरा फेंकने आ जाते हैं। इस स्थिति से आसपास के रहने वाले लोग बेहद परेशान होते हैं। साथ ही इसे जमीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। माहोवाकवा जलाशय का जल स्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है। इसी जलाशय के किनारे आर्यसभा मॉरिशस ने 12 घंटे के लिए एक वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्र उच्चारण और आहुतियों के साथ पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए प्रार्थना की गई। और आज सुबह सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया और उनकी कविताओं का पाठ किया गया। ये कार्यक्रम प्लान व्यत में लगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू महाजन संगम की पहल पर किया गया। ये संस्था तमिल संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती है और सैकवा स्थित कैलासो कोविल का प्रबंधन भी करती है। विदेश में मॉस्को में बड़े पैमाने के एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की जानें गई हैं। मॉस्को के मेयर का कहना है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को मार गिराया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। हम मिलेंगे शाम 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन के साथ।
9: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
10: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period...
2: Music, Dr. Gutter.
0: RM2, Radio Musty.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: ऑल इन टू रेडियो मस्ती।
2: रेडियो मस्ती के सभी लिसनर्स को भाई संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप एंड अ वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर फेवरेट रेडियो स्टेशन। वैसे तो अधिकतर लोगों ने पिछले मंगलवार को गणेश जी का विसर्जन किया था, अपनी अपनी प्रतिमाओं का विसर्जन किया था, लेकिन काफ़ी लोग आज भी विसर्जन के लिए रवाना हो रहे हैं। और जो गाना अभी अभी हमने चलाया वो विशेष तौर पर उन सभी लोगों के लिए था, उन सभी पदयात्रियों के लिए था, और जो लोग अपनी सवारी में भी निकल पड़े हैं पापा का विसर्जन करने। यहाँ पर सलाम करना चाहेंगे हम विशेष तौर पर हमारे प्रिय मित्र गुप्तांश जी को और उनकी पूरी टोली को जो इस समय रवाना हो रहे हैं, फीका फ्लाक की ओर बढ़ रहे हैं अपने बापा का विसर्जन करने। गणपति बापा मोरे आ पूजा वर्षी लोकरिया।

साथ ही साथ जितने भी लोग इस समय ड्राइव कर रहे हैं आपसे मांग करेंगे कि आप थोड़ी सी धीरज धरें, बिकॉज हो सकता है कि चंचन इलाकों पर रास्ता ब्लॉक होगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेशन।

गणपति बाप्पा मोरिया पूजा वर्षी लोकरिया जितने भी लोग इस समय प्रोसेशन में शामिल हो रहे हैं आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप सावधानी बरतें यू बी ऑन वन साइड ऑफ द रोड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पुलिस और साथ ही साथ जो लोग ओवरटेक कर रहे होंगे आप भी सावधानी बरतें लेट्स कीप दिस फाइनल डेज ऑफ गणेश उत्सव वेरी डिसिप्लिंड And let's save, let's pray for the safe return of all those involved. Welcome on the frequencies of Radio Masti. Ye hai music tak tak tak Sanjay ke saath.

0: टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हमारा तो बस यही संदेश है, हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व में अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो। And we pray for everyone. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya. Yes, we pray for everyone. And we hope for the welfare of everyone. चले सब कुछ ठीक तरह से बीते और I do hope कि आपके यहाँ भी जा अगर आप घर पर हैं या तो आप काम पर हैं All is going on for the well. बच्चों की स्कूलिंग की तैयारी हो रही होगी घर पर, बच्चे अपने होमवर्क को सब पूरे कर रहे होंगे और खासकर जब एग्जाम्स सर पर हैं सो बच्चे नीड टू बी वेरी सीरियस एज वेल इन द प्रिपरेशन सो लेट्स होप कि गणपति सबको बुद्धि दे सद्बुद्धि दे और ऐसे अभी अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Thank you for joining me in this musical safari. लेकिन साथ ही साथ चंद बहुत ही interesting बातें आपको सुनानी हैं. What is special about September 20? यानी कि आज की तारीख, इस तारीख से क्या विशेष घटनाएं जुड़ी हुई हैं. Let me tell you that in 1519, Ferdinand Magellan set sail from Spain on his historic voyage to circumnavigate the globe. यानी कि उससे पहले किसी ने भी मनुष्य के इतिहास में किसी ने भी ये नहीं किया था. उससे पहले स्पेन से निकले, इंग्लैंड से निकले, दे केम डाउन अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, फिर इन द इंडियन ओशन दे केम टू इंडिया और फिर उसके बाद इंडोनेशिया. लेकिन इतिहास में पहली बार के लिए ऑन 20th September 1519 फेर्डिनांड मैगेलन वो पश्चिम की ओर गए, पश्चिम की ओर गए एंड ही डिसेंडेड डाउन द अटलांटिक ओशन. और जहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट समाप्त होता है वहाँ पर से गुजर के ही एंटर्ड इनटू व्हाट वी कॉल टुडे द पैसिफिक ओशन. और वो जो स्ट्रेट है, वो जो नारो सा पैसाज है, वो बहुत ही गंभीर था. इट वॉज वेरी वेरी ट्यूमल्टस. और जब वे उसको पार करके प्रशांत महासागर में प्रवेश किए तो वहां पर उनके सामने एक बहुत ही शांत सागर देखने को मिला और तभी से उसका नाम रखा गया द पैसिफिक ओशन. सो जो स्ट्रेट, जो नैरो पैसाज साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच, उसी का नाम आज रखा गया है द मैगेलन स्ट्रेट इन मेमोरी ऑफ फेर्डिनांड मैगेलन, जिन्होंने पहली बार के लिए उस रास्ते को अपनाया था. बात यह है कि जब वे निकले स्पेन से तो बहुत सारे शिप्स थे उनके साथ और 270 उनके साथ उनके नेवी लोग थे. और जब वे पहुंचे इंडोनेशिया में तो वहां पर उनकी मृत्यु भी हो गई

जो स्पेन यानी कि पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद व्हेन दे केम बैक टू स्पेन आफ्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी गोइंग राउंड द ग्लोब जो वे लौटे थे एक ही शिप था और उस शिप पर सिर्फ 18 लोग थे So that's special about 20th of September. Aaj ki tarikh jab shuru hua, the first voyage round the globe in 1519.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: थैंक यू फॉर एंजॉयिंग आज का ये प्रोग्राम. हम 20 सितंबर के बारे में बात कर रहे हैं, आज की तारीख के बारे में बात कर रहे हैं. टुडे इट इज अ बर्थडे ऑफ सन ऑफ इंडिया, जो फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं, प्रोड्यूसर रह चुके हैं, स्क्रीन राइटर भी रह चुके हैं फॉर हिंदी फिल्म्स. नोन फॉर हिज अनकन्वेंशनल नैरेटिव्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ बोल्ड थीम्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स ऑफ द 80s एंड 90s, जिन्होंने 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं और 4 फिल्मफेयर अवार्ड्स. उनकी नोटेबल फिल्मों में आती हैं सारंश 1984, साथ ही साथ डैडी इन 1989, आशिकी इन 1990, दिल है कि मानता नहीं 1991, सरक इन 1991 अगेन, गुमराह, क्रिमिनल, हम है राही प्यार की तमन्ना, जख्म, राज, जिस्म, मर्डर, गैंगस्टर, आवारापन, जन्नत, मर्डर 2, आशिकी 2. अब आपको पता चल ही गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट नो वन अदर दैन महेश भट्ट, जिनका जन्म हुआ था ऑन 20th September 1948 और जिनको आज हम इस मंच पर म्यूजिक मस्ती रेडियो के मंच पर से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं फ्रॉम ऑल हिज फैंस इन मॉरिशस एंड अक्रॉस द वर्ल्ड.

अपनी संडे शाम में थोड़ी सी जगह हमें देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ म्यूजिक टिक टिक टिक. आई होप ऑल इज गोइंग वेल ऑन योर साइड. चलें थोड़ी देर के लिए आपको ले चलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जहां पर आज के मैचेस शुरू हो चुके हैं. बोर्नमुथ लिवरपूल 7 minutes played, it's still nil nil. Leeds Crystal Palace 7 minutes played, it's nil nil. 10 minutes played in the match between City and Sunderland, and already City leading by 1-0. Goal scored by Enzo Fernandez on the 9th minute. So कल के Brighton के धमाके के बाद आज City जैसे कि उड़ जाएगा. So that's a good start for City. क्या एक और draw रखा गया Liverpool के लिए? देखते हैं क्या होता है आज. Stay tuned on Radio Masti for more of info about the English Premier League.

0: Radio Musti. Enzo, mo pou arrange mo la case. Enzo, mo pou faire rénovation. Sa zou là, c'est coûte métrique. Depuis les premiers jusqu'à les 30 septembre, découvrez à 7 surprises, 7 gros promos. L'eau carreau, douche, sanitaire et robinetterie. Septembre promo, 7 promos, coûte métrique. Métrique, une enseigne du groupe Karimji.
1: RM2
0: Radio Musti.
1: Music Dr. Gata.
0: RM2 Radio Musti.
2: ओपनिंग में हमने आपको बताया था कि सिटी ने संडरलैंड के खिलाफ एक गोल बनाया. लेट मी टेल यू दैट संडरलैंड हैज इक्वलाइज्ड. 70 मैच खेले जा चुके हैं, सिटी 1 संडरलैंड 1, बाकी दो मैचेस में स्टिल नेल नेल.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है.
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर.
2: रेडियो मस्ती.
1: RM2 Radio Musti.

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: और स्पेशल सीक्वेंस महेश भाट स्पेशल जारी है आज उनका जन्मदिन है एंड हिज फिल्म्स हैव मार्क्ड आवर लाइव्स जहर नजर गैंगस्टर वो लम्हे जश्न कजरारे टू मिले मर्डर टू ब्लड मॉनी जन्नत टू जिस्म टू राज फ्री मर्डर फ्री आशिकी टू हम हमारी अधूरी कहानी लव गेम्स जलेबी सड़क टू Yes, 1920 Horrors of the Heart, Blood Ishq 2, Meri Puri Kahani. So many films jinko ya to unhone direct ki, ya to unki kahani likhi, ya to script writer. So anek tarike se he has influenced the course of Bollywood. Aur unke gaanon ke zariye, unke direction ke zariye. Earth, one of the first films, Earth ke zariye, that was how we discovered him. Janam Naam with Sanjay Dutt. So, aaj he's turning 77 today on this 20th of September. Aur hamare geeton ke zariye, we are wishing him a very happy birthday. Ye gana humne diya from the film. जो इस साल 2020 में सड़क टू विद अ ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ जावेद अली इश्क कमाल

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हरकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। म्यूजिक टकटकाता
1: आर एम टू रेडियो मस्ती।
2: सम आप पहुंचते हैं ऑन योर फेवरेट रूब्रिक ऑफ संडे आफ्टरनून फैशन टिप्स टू लुक शिक एंड ग्रेसफुल इन इंडियन वेयर। आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज बैलेंस हैवी एलिमेंट्स वेव। यस बैलेंस हैवी एलिमेंट्स वेव सिंपल पीसेस। और दूसरा जो फोकस आपको करना है यू नीड टू फोकस ऑन द राइट फिट। चलें इसको विस्तार से आपके सामने रखते हैं। एसेंशियल स्टाइलिंग टिप्स। फर्स्ट कीप एक्सेसरीज मिनिमल। इसका ये मतलब है दैट यू चूज वन स्टेटमेंट पीस like ornate earrings and add just one more simple item like thing bangle or watch before stopping. Bus. Second tip, prioritize the right fit. Arthat, get your outfits tailored so they flatter your body type without feeling too tight or too loose. Tisra, you need to match fabrics to the climate. Yani ki you pick lightweight cotton or linen for warm days and reserve heavier silk, velvet or brocade for cooler weather or formal events. Chautha tip ye hai ki you create clean lines with dupattas. How to do it? You drape your scarf in a long vertical or diagonal line to elongate your silhouette. सोचने लायक। और फिर आखिर में मिक्स ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी। ये कैसे करेंगे? वन एग्जांपल इज यू पेयर अ ट्रेडिशनल कुर्ता विद डेनिम जीन्स और एड अ कंटेम्पररी बेल्ट ओवर अ साड़ी और अनारकली। सो दिस वाज आवर रूब्रिक, योर संडे रूब्रिक फॉर फैशन टिप्स, हाउ टू लुक मॉडर्न इन योर इंडियन वेयर।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: Music, Tak Tak Tak.
1: RM2, Radio Musti.

0: एक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले अब कहते ब्यूटीफुल मैसेज रीड फ्रॉम वीना जी, जो लिखते हैं गाने तो बहुत ही लाजवाब तो है ही, लेकिन साथ ही साथ संजय आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इन योर प्रोग्राम सिंस 4 PM। वीना जी बहुत बहुत शुक्रिया।

जाई के लिए एंड फॉर ऑल दोस जो इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं थैंक यू फॉर एंजॉयिंग दिस बहुत ही एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो चल रहा है सो आज प्रॉमिस आपको ले चलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में जहां पर बोर्नमुथ और लिवरपूल अभी तक 0-0 सब सो रहे हैं लीड्स क्रिस्टल पैलेस 0-0 लेकिन सारा हंगामा सारा एक्शन तो सिटी स्टेडियम में एमिरेट्स सिटी स्टेडियम में हो रहा है जहां पर मैनचेस्टर सिटी 3 संडरलैंड 2 यस मैनचेस्टर सिटी 3 अभी जब हमने

5:56 लिसनिंग टू म्यूजिक तक टिका तक संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ते। 6:00 आप सुनेंगे समाचार और समाचार के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी विद मोर ऑफ गुड म्यूजिक। हमें आशा है कि यू हैविंग सम वेरी गुड टाइम एट वर्क विद योर फैमिली मेंबर्स।

सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। खाली जमीनों को अक्सर कचरा फेंकने की एक जगह बना दी जाती है। सफाई अभियान चलाए जाने और इन स्थानों तक पहुंच रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बावजूद कुछ लोग फिर भी यहां अपना कचरा फेंकने आ जाते हैं। इस स्थिति से जमीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सैंपल स्थित जे बालगोविंद आश्रम ने अपनी स्थापना की 31 साल मनाई। आर्य सभा मॉरिशस के संरक्षण में संचालित इस संस्थान में 75 निवासी रहते हैं, जिनमें बुजुर्ग और मानसिक अक्षमता से जूझ रहे लोग शामिल हैं। पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए माओ गोवाक्वा जलाशय में आज वृष्टि महायज्ञ का आयोजन, जहां का जल स्तर गंभीर रूप से प्रभावित। आर्य सभा मॉरिशस

0: की पहल पर आयोजित इस यज्ञ में मॉरिशस वासी की बड़ी संख्या में भागीदारी। विदेश में एल साल्वाडोर के पूर्वी हिस्से में स्थित लागुना दे अलेग्रिया भीषण सूखे की चपेट में है। वहां पर मौसम के बीच तेजी से जलस्तर खो रही है। इस स्थिति ने स्थानीय निवासियों और जल संसाधन विशेषज्ञों को की चिंता बढ़ा दी है। खाली जमीनों को अक्सर कचरा फेंकने की एक जगह बना दी जाती है। सफाई अभियान चलाए जाने और इन स्थानों तक पहुंच रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बावजूद कुछ लोग फिर भी यहां अपना कचरा फेंकने आ जाते हैं। इस स्थिति से आसपास के रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही इससे जमीन के मालिकों की जिम्मेदारी और कानून के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
1: यहाँ कॉन्लुव्यू में कूड़े की थैलियाँ, पुरानी अलमारियाँ सब फेंके गए हैं। बाशिंदों के लिए ये स्थिति चिंताजनक और पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
2: construction en démolition le vinset là si je m'assois vous idée sur fou une casser l'autre machine à laver je ne pas je ne calze petit den quoi que tu te rêves avec cette li
1: थोड़ी दूरी पर होशबुइन में हालात ऐसे ही हैं। अधिकारियों ने एक खाली पड़ी जमीन के मालिक से यहां घेरा लगाने और कचरा साफ करने की मांग की थी, क्योंकि इस जगह को देखकर ही आंखों को तकलीफ होती थी। सफाई भी की गई, घेरा भी लगाया गया, लेकिन ये काफी नहीं रहा। लोगों ने घेरा हटाकर अब वहां फिर से कचरा फेंका है।
2: À plusieurs reprises, il fait nettoyer, les réparer. Ça veut dire il reste même mentalité, ça veut dire nettoyer, jeter, nettoyer, jeter, nettoyer, jeter, pas mettre une solution.
1: ऐसी स्थिति जो हमें एहसास दिलाती है कि सफाई से बढ़कर लोगों को अपनी सोच को बदलना चाहिए। इंस्पेक्टर विश्वनाथन अमा से बताते हैं। मालिकों को घेरा लगाना चाहिए, खेती करें, उस जगह को साफ रखें, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए कि कुछ ऐसे गिने चुने लोग भी हैं जिनकी हर जगह कचरा फेंकने की अब आदत सी बन गई है। अधिकारी मांग करते हैं कि पुरानी अलमारियां, अन्य बड़े सामानों के लिए सेवाएं उपलब्ध हैं। बोबासा रोजिल के मेयर आंद्रे टूसें बताते हैं। नगर पालिका के साथ संपर्क करें, इसके लिए एक रकम चुकानी पड़ेगी, लेकिन आपको पता होगा कि कचरा कहाँ फेंके, यहाँ वहाँ सड़कों पर नहीं। पुराने गड्ढे, डालियाँ, सभी ऐसे कचरे के लिए हमें शहर को साफ रखना चाहिए। मालिक, अधिकारी और बाशिंदे सबकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि पर्यावरण और नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये सभी स्थल एक बार फिर से खुलेआम कचरा फेंकने की आम जगह बन जाएंगे।
0: रोम डे मोरिस के जियोग्राफिकल इंडिकेशन लेबल का आधिकारिक अनावरण किया गया। ये लेबल उत्पाद की उत्पत्ति और निर्धारित मानकों व नियमों के पालन की गारंटी देता है। इस साझा पहचान के तहत मॉरिशस की 7 स्थानीय डिस्टिलरी एकजुट हुई हैं। इस पहल का उद्देश्य मॉरिशस के रम को विदेशी मंडियों में बेहतर ढंग से स्थापित करना और उसकी पहचान मजबूत करना भी है। कोयल सीतल की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: मॉरिशस को उसकी रम के लिए नई पहचान मिली। नया लेबल रोम डे मोरिस जनता के सामने पेश किया गया। इसे प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमाण मिला है। इससे मॉरिशस में तय नियमों के अनुसार तैयार की जाने वाली इस रम को एक अलग पहचान मिलेगी।
3: Rhum, il fait apporter du sucre et le sucre, c'est par rapport à nos cannes qui nous plantent à Maurice.
1: Rhum, शक्कर से बनती है जो यहाँ के गन्ने से मिलती है। आज हमारे रम

0: इटालियन देशों के रम से अलग हैं क्योंकि हमारी भूमि ही अलग है। ये मान्यता यूरोपीय संघ की ओर से मिली जो इस विरासत का संरक्षण करता है। इस लेबल का संबंध 7 स्थानीय डिस्टिलरीज से है। हमारे देश के गन्ने से ये रम बनती है। इसमें मॉरिशनों का ज्ञान है, डिस्टिलरी का तरीका है, जो सभी दिखाते हैं कि आज मॉरिशस का रम बेहतरीन किस्म का है।
1: Et c'est de venir montrer que les rums de Maurice aujourd'hui ont leur place, ont leur qualité.
0: यह मान्यता विदेशों में मॉरिशस की रम की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगा। इससे रम के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
2: Le rhum de Maurice est très prisé, mais aussi nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de compétition sur le marché.
0: मॉरिशस के रम की मांग ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी है, जैसे जमैका आदि। इसीलिए मॉरिशस की अपनी ठोस पहचान होना जरूरी है। मंत्रालय आने वाले दिनों में एक जियोग्राफिकल इंडिकेटर के साथ सामने आएगा स्थानीय सामानों के लिए, ताकि उन्हें विदेशी मंडी में पहचान मिले।
2: Et ça peut donner plus de visibilité à un produit mauricien sur un marché international.
0: इस तरह रम दे मोरिस मॉरिशस के दो अन्य भौगोलिक संकेतों मॉरिशस शुगर्स और लिमो रोड्रिग में शामिल हो गया है।
3: माहोवा का जलाशय का जल स्तर गंभीर स्तर से नीचे चला गया है। इसी जलाशय के किनारे आर्य सभा मॉरिशस ने एक वृष्टि महायज्ञ आयोजित किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मंत्र उच्चारण और आहूतियों के साथ पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए प्रार्थना की गई। आस्था गोबिन चितामन की ये रिपोर्ट पेश है।
4: माओवाकुआ का जल स्तर घट रहा है। इसी जलाशय के समीप आर्य सभा मॉरिशस ने वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्त में वर्षा को धरती और वनस्पतियों के जीवन से जोड़ा गया है। यहाँ वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि में आहुतियाँ अर्पित की गईं। यज्ञ में सामग्री भी डाली गई, जड़ी बूटियों, घी, सूखे मेवों और अन्य पदार्थों का मिश्रण। यज्ञ और वर्षा के बीच माने जाने वाले संबंध की वैदिक तथा वैज्ञानिक व्याख्या भी की गई।
5: इस यज्ञ में हम विशेष मंत्रों का पाठ करते हैं जिससे एक वर्षा हो सकती है, और खासतौर जब पर सूखा पड़ता है तो इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है जलाशय या नदी के पास। और इससे क्या होता है कि जो विशेष हम औषधि इसमें इस्तेमाल करते हैं वो औषधि मतलब वर्षा को मतलब ज़्यादा आकर्षित करते हैं और इससे वर्षा होती है। इसमें विशेष जो है घी इस पर डालते हैं, और इसमें जो सामग्री होते हैं उसमें विशेष औषधि, शहद और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगाया जाता है। जो मॉलिक्यूल ये औषधियों में मतलब रहें उसको हम धीरे धीरे पूरे ये जो वातावरण है, हमारा हवा है मतलब पर्यावरण में, उसको धीरे धीरे जाता है। जब जाता है तो एक तरह से क्लाउड सीडिंग होता है, और उस क्लाउड सीडिंग से हमारा जो जो जगह है वो ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो ठंडे होने के कारण वो वर्षा होने लगती है।
4: दिन भर श्रद्धालु सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने आती रही। मंत्रों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा हुई। वर्षा के लिए प्रार्थना के साथ प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दिया गया।
6: तो ये वेद के आधार पर मंत्र पाठ करते हैं, और वो मंत्र में भी जैसे मेंढक शोर करते हैं ना, इसी प्रकार से कुछ मंत्र इस प्रकार से है जो शोर करे और बादलों को इकट्ठा करे ताकि बरसात होए। के वेदों में कहा गया है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म कैसे, अभी देखिए हम तो यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से, और देखिए कि हमारे जो पहाड़ों में जो नाले हैं, जो जहाँ पर पेड़ जम गए हैं, जो नाले जलाशय में पानी लाते हैं उसको साफ़ करना भी एक यज्ञ है, उसको भी साफ़ करना एक यज्ञ है। और जितने भी नाले होते हैं जो पानी लाकर हमारे जलाशय में छोड़ते हैं, लोगों से तो यही हम मांग करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि इन नाले में ना फेंके, ये भी एक यज्ञ है।
4: सायं 6 बजे अंतिम आहुति के साथ महायज्ञ पूर्ण हुआ। माओवाकुआ के समीप की गई ये प्रार्थना समूचे देश के लिए थी।

0: अच्छी वर्षा हो और जलाशयों के साथ अन्य जल भंडार भी फिर से भर उठे।
1: सैंपल स्थित जिबा गोपीनाथम ने अपनी स्थापना की 31 साल मनाए। आर्यसभा मॉरिशस के संरक्षण में संचालित इस संस्थान में 75 निवासी रहते हैं, जिनमें बुजुर्ग और मानसिक अक्षमता से जूझ रहे लोग भी शामिल हैं। आश्रम की 31वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति भी उपस्थित रहे। क्रिस्टल लिभास की रिपोर्ट पर सुनते हैं रजनी पिकर को।
2: एक स्केच के माध्यम से आश्रम में रहने वाले तीन लोगों ने आश्रम में अपने दैनिक जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। जदुनानन बालगोविंद आश्रम में आज 75 लोग रह रहे हैं। वृद्ध लोग हैं, लेकिन साथ में मानसिक परेशानियों से ग्रस्त लोग भी, जिन्हें जीवन शैली के अनुरूप चलना है और उचित सहायता से भी वे लाभ उठा रहे हैं। जदुनानन बालगोविंद आश्रम के ऑफिस सेंट जॉर्ज हीरामणि दीनदयाल ने कहा, इकतीस साल हो गए हैं जब से इस आश्रम में लोगों की देखभाल की जा रही है। गर्म जोशी भरे और दोस्ताना माहौल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
3: Une solution à ce que nous appelle generation gap entre les vieux et les jeunes. Énorme moyen pour rapprocher les deux, ban jeunes et ban vieux. On peut aussi dire qu'avec la technologie qui peut avancer, nous devons faire attention pour ne pas gagner un digital divide entre ban personnes âgées et ban jeunes.
2: वहाँ रहने वाले कई लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गीत, कविता और कलात्मक रचनाएं इस सालगिरह के लिए मिलजुल कर रहने और मेल जोल की भावना पर ध्यान केंद्रित, खासकर एक ऐसा मौका रहा जब ये लोग अपनी कला के माध्यम से अपनी आप बीती बयां कर रहे थे। 31 वर्षों बालगोविंद आश्रम के इतिहास को दर्शाया जा रहा था।
1: मॉरिशस में रामायण गान हिंदू संस्कृति का एक अलग अंग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज संगीत और रामचरितमानस की चौपाइयों के पाठ के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन की ओर से रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका फाइनल पोटलिस में लगा। चौताल और मॉडर्न क्लासिकल कैटेगरी में जीत नोत्रदाम काली माता मंदिर की टोली की हुई और पारंपरिक गायन में रामायण सेवा संगठन मेजिन कौदे मास की टोली की जीत हुई। अर्चना मिश्रा।
4: रामायण का पाठ करना, रामायण गायन एक वास्तविक कला है। रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को पारंपरिक धुनों के अनुसार गाया जाता है। इसमें लय और स्वर के साथ रामायण के कई प्रसंगों को जीवंत किया जाता है।
5: जो उनको मजा हिंदी में जाए उतना बोले लन जा तो उन लोग में थोड़ा कठिनाई हुईला। जब हिंदी बोले जान जेबा तो हमने के हो शब्द उच्चारण करके ज़्यादा अच्छा रहेला और राग डाले के भी अच्छा रहेला। और जिनकी से चौपाई के राग दूसर है, दुहा के राग दूसर है और कमिश्रा के राग दूसर है।
6: रामचरित मानस सब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, इसलिए इसको नित्य प्रतिरोज इसका पाठ करना चाहिए और स्वरबद्ध करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, भाव श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए।
4: मंच पर अलग अलग समूह रामायण गायन की अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। कुछ समूह पारंपरिक शैली में, कुछ आधुनिकता के साथ अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं। इसके लिए तैयारी, रामचरितमानस के पाठ की अच्छी जानकारी और इस परंपरा की विशिष्ट धुनों और लय को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
7: हम छोटा से खेलते ली ढोलक चौताल, ढोलक सीखे के आगे हम कबीला के जो नामों कर आगे मिल के जीबिया और ले गाँव वे जी करके उसे बजावट ली सा, तब आले आले बैठका में जब चौताल 40 दिन हुए तो हमने छोटा रही सर देखा रही सर तो जब वो लोग पोजे हो गए पो तब हम लेके ढोलों का सही कर टली तो वो दादा बोले एक दिन ही निमान से बजाए होकर कैसे बोले होकर बोली और कथी सच हो अभीले बजाते हैं अब जनबा अब मुझे जो जन लोग दूसर कायदे खेले तो उनसे अनुभव है सो ना स्ट्रीमो सब कायदे ना स्ट्रीमो से भी करने सो अब तो लागी तो सब दादा तो उनसे
8: प्रेमी बिजे फे मन जन कोंटन रामायण नवो उन गॉड ला ट्रेडिशन सब दे ला फासन से वे अशन कि टी पे सोंटे ट्रेडिशनल ला विद सो लोटा सो डोलोक सो जाल मे मेंटनो से मो प्लस वी के कम सेरे ला वी पे एवोलुए एक बन जन ना जो प्याल देन दो डायरेक्शन अलोस मो कम गुरुजी कि मो फे सों सों जन टी पे बन राग कि प्याले ला दो
4: युवाओं की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
9: Mon grand jeune, je peux faire lire avec la joie quand je peux finir tout à faire, je peux assister, je peux faire lire comment un pasteur pour ça, je peux faire lire pour garder une culture.
10: Dans l'enfance, moi je parle chez voilà six frères la vagogne dans notre mandir. Là depuis là-bas, on commence à apprendre tabla. Donc moi j'ai de l'eau que mon accompagne maintenant.
11: Ma maman a participé à petit amène moi Shivala. Et depuis Shivala, même mon apprend Ramayan. Et Ramayan fait moi apprendre beaucoup d'affaires.
12: Et depuis petit, moi de la musique. Mon ressonné, mon se tablassi. Et mon courage. Tout le monde est bien, c'est qui veut ça. Et je rends de la musique, fais la prière, tout ça là.
4: तीन श्रेणियों पारंपरिक आधुनिक और चौताल में आयोजित यह प्रतियोगिता मात्र एक प्रस्तुति ही नहीं हर समूह अपनी अलग शैली के साथ प्रस्तुति देता है लेकिन साथ ही उस परंपरा से भी जुड़ा रहता है जो मॉरिशस के हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है
1: आज सुबह सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया और उनकी कविताओं का पाठ किया गया ये कार्यक्रम प्लान व्यर्थ में लगा इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू महाजन संगम की पहल पर किया गया ये संस्था तमिल संस्कृति के संरक्षण और के लिए जी हाँ ये संस्था तमिल संस्कृति के लिए काम करती है और सैखवा स्थित कैलासों को वील का प्रबंधन भी करती है सुब्रमण्य भारती एक भारतीय पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें आधुनिक तमिल साहित्यिक शैली का जनक माना जाता है कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर सुनते हैं रजनी पिकर को
2: सुब्रमण्य भारतियार एक तमिल विद्वान स्वदेश मित्रन अखबार के पत्रकार भारत में वे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में भी संलग्न रहे रविवार 20 सितंबर को प्लेनबैक में उनके नाम समर्पित एक बाग में उनकी 105वीं पुण्यतिथि के अवसर पर फूल चढ़ाने संबंधी एक समारोह का आयोजन मौके पर मौजूद अतिथियों ने उनके कार्यों की सराहना की
13: Passer dans la langue tamoul dans plusieurs les autres langues bien écrire et c'est ça qui nous encourage de bande jeune maîtrise langage passer anglais français créole
2: उनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं जिनमें सबसे लोकप्रिय रही हैं कनन पट्टू

0: लिए।
1: श्री कृष्ण को समर्पित गीत जिसे श्री सुकलिंगम मिनाक्षी अकादमी के बच्चों ने गाया।
2: मनदिल उड़ी वेंडुम वाक्य निले इनिमे वेंडुम निनेवु नल्लरु वेंडुम।
1: हिंदू महाजना संगम के संचालक सैद ख्वां के कैलासो कोविल के मूल ढांचों में सुधार कार्य लाने का इरादा रखते हैं। नौजवानों को सुब्रमण्य भारतियार की कविताओं को अतिरिक्त रूप से सीखने का मौका मिल सके इसलिए
3: Pour mis un nouveau bâtiment ou à propos de ma classe tamil, le Kailaso, pour l'instant, il est bien serré. Nous avons 15 élèves augmentés.
1: Tamil Sanskriti Sambandhi Pehluon ko ve jaan sakenge.
4: विदेश में अल सल्वाडोर के पूर्वी हिस्से में स्थित लागुइना दे अलेग्रिया भीषण सूखे की चपेट में है। जी हाँ, वहाँ इस स्थिति ने स्थानीय निवासियों का मतलब और जल संसाधन विशेष

विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। वहाँ पर हरे पानी के लिए प्रसिद्ध ये ज्वालामुखीकृत झील बारिश के मौसम के बीच भी तेजी से जलस्तर खो रही है। और उधर मॉस्को में रात भर हुए बड़े पैमाने के यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की जाने गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर ने कहा है कि राजधानी की ओर बढ़ रहे 450 ड्रोन को मार गिराया गया, उन्होंने इसे अभूतपूर्व हमला बताया है। और इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि शनिवार को कीव और सुमी क्षेत्रों में रूसी हमलों में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। और अब आखिर में मौसम का हाल। मस्कारीन के दक्षिण में एक काफ़ी ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। कल बादल कुछ घिरे रहेंगे और देश के दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम तापमान 21 से 24, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6 बजे।

6:23 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजन को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

Shok samachar sunye. Ali Rusai, Grokayume, Ali Rusai, Grokayume, 68 saal ke 68 years old Shri Prakash Singh Lachman, Shri Prakash Singh Lachman, jinhe log Prakash naam se adhik jante the, ki mrityu ho gayi hai, ki arthi kal din ke 11 baje, कल दिन के 11 बजे इनके मकान आली रुसाई ग्रो कायू से उठाकर बांबू कृष्णशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 एम सेंट आन रोड प्लेन डिजेसी फ्लैक में 48 साल के 48 इयर्स ओल्ड श्री हेमंत कुमार सुमरा जिन्हें लोग नितिन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी वर्षा सुमरा के मकान सेंट आन रोड प्लेंडेजेसी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 एम। रॉयल रोड अमिचे में 97 साल की 97 इयर्स ओल्ड श्रीमती डमासिला धमरो भेरा पैदाशी नाम लोसर और जिन्हें लोग दादी बाबू नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे अविनाश डमरो भेरा के मकान रॉयल रोड अमिचे से उठाकर अमिचे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। एवेन्यू डू डू लेस्पेरेंस पीटों में 78 साल के 78 years old, श्री सोनालाल सोमारू, जिन्हें लोग ज्ञान सदा नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के 11 बजे इनके बेटे राजेश सत्यम रितेश

0: Somaru Kemakan, avenue 2 de l'Espérance Piton, se uthakar Kahu Motte, l'Espérance Piton, Kishmashan Pumi, le JJ, Gikrimishan tomorrow at 11 a.m. Payanque Road de Providence, quartier militaire, mais 61 salle, qui, 61 years old, Shrimati Bimla Gupta, Shrimati Bimla Gupta, Paidashi Nam, राम भोजू और जिन्हें लोग कविता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह नौ बजे इनके बेटे इरेश गुप्ता के मकान पायांकु रोड प्रोविडेंस का चिमीते से उठाकर में जिनका उद्यमास किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 PM.
3: Music, Dr. Gutter.
4: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ म्यूजिक टकटकाटक संजय के साथ। और हम मानते हैं कि सभी लोग इस समय उत्सुक होंगे, व्याकुल होंगे ये जानने के लिए कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है। सो ले मानो आ मानो बिटवीन सिटी एंड सन्डरलैंड जारी है। 68 मिनट्स प्लेड एंड द स्कोर इज मैन सिटी 4 सन्डरलैंड 3। ये शुरू हुआ ऑन द 9th मिनट, एंजो फर्नांडिस ने सिटी के लिए खाता खोला 1-0। उसके 3 मिनट बाद ब्रियान ब्रॉबे ने सन्डरलैंड के लिए इक्वलाइज किया 1-1। फिर 10 मिनट बाद ऑन द 29th मिनट रायन चर्की ने सिटी को फिर से लीड दिलाई 2-1। उसके 4 मिनट बाद ब्रायन बॉबे ने दूसरा गोल बनाया, सिटी 2 सन्डरलैंड 2। फिर फर्स्ट हाफ के अंत में अंतवान सेमेन्यो ने सिटी के लिए फिर से लीड दिलाई, सिटी 3 सन्डरलैंड 2। इस स्कोर पर मैच हाफ टाइम तक पहुंचा। फिर उसके बाद एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड हाफ वही अंतवान सेमेन्यो ने फिर से एक गोल बनाया फॉर सिटी 4-2। लेकिन उसके तुरंत बाद यानी कि 2 मिनट बाद ब्रायन ब्रॉबे ने अपना हैट्रिक कंप्लीट किया फॉर सन्डरलैंड। सो मैन सिटी 4 ब्रायन ब्रॉबे 3 सन्डरलैंड 3। सो 4-3 मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। 69 मिनट्स प्लेड, स्टिल मोर टू कम। ये रही मैच सिटी और सन्डरलैंड के बीच, जबकि बोर्नमुथ और लिवरपूल वाले मैच में लिवरपूल ने एक गोल स्कोर किया है थैंक्स टू अलेक्जेंडर इसाक। थैंक गॉड अब स्कोर करने लगा है ऑन द 57th मिनट। सो बोर्नमुथ 0 लिवरपूल 1। 75 मिनट्स प्लेड और दूसरे मैच में लीड्स 0 क्रिस्टल पैलेस 0।

You're listening to RM2, a Radio Must See.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: यहाँ पर छोड़ने की बात नहीं, यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है। I'll be here to make all the hearts meet। फिलहाल आपको फिर से ले चलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जहां पर सिटी ने एक पांचवा गोल बनाया बाय मींस ऑफ अर्लिंग हैलैंड ऑन द 81st मिनट। सो आफ्टर 86 मिनट्स ऑफ प्ले इट्स सिटी 5 संडरलैंड 3। यस, सिटी 5 संडरलैंड 3। मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है, जबकि लिवरपूल स्टिल लीडिंग बाय ओनली 1-0 अगेंस्ट बोर्नमुथ थैंक्स टू अलेक्जेंडर इसाक ऑन द 57th मिनट। जबकि तीसरा मैच अभी तक नील नील पर है। सो लिवरपूल स्टिल एट रिस्क ऑफ ड्रॉइंग दिस मैच, जबकि सिटी इज टेकिंग, जैसे कहते हैं, लुलार्ज। सिटी 5 संडरलैंड 3। कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, विल कीप यू अपडेटेड। स्पेन के ला लीगा में वी गिव यू वन फुल टाइम रिजल्ट। रेटाफे 1 मालागा 0 और एटलेटिको मैड्रिड 0 रियल मैड्रिड 0।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: म्यूजिक टक टकाटक। आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
1: To Radio Musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 7 p.m.
1: Sports Live reporters on RM2. Live.
6: Radio Musti, aapke kareeb.
5: जी हाँ, आपको ले चलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जहाँ पर 5 बजे शुरू हुए मैचेस समाप्त हो चुके हैं. एंड वी हैव द फुल टाइम रिजल्ट ऑफ दिस थ्री मैचेस. बोर्नमुथ 0 लिवरपूल 1, गोल स्कोर्ड बाय अलेक्जेंडर इसाक. थोड़ी देर में उनके टैली पर आएंगे, यानी कि इस सीजन के शुरुआत से अलेक्जेंडर इसाक ने कितने गोल बनाए. इनफैक्ट 4. So full time result, Bournemouth 0 Liverpool 1. Full time result, Leeds 0 Crystal Palace 0. And full time result, Manchester City 5 Sunderland 10. And that was a fiery match between City and Sunderland. जैसे कल Brighton ने Arsenal को 3-0 से पछाड़ा, आज सिटी ने भी 3 गोल्स खाए, लेकिन बदले में उन्होंने 5 गोल्स बनाए भी. सो आज का लेट मैच होगा बिटवीन फुलहैम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. इन 3 मैचेस के समाप्ति के बाद स्थिति कैसी है इन द प्रीमियर लीग टेबल. पहले स्थान पर मैनचेस्टर सिटी, 5 मैचेस प्लेड, 5 विंस, 13 गोल्स स्कोर्ड, 5 कंसीडेड एंड 15 points already. Dusre sthan par Arsenal, 5 matches played, 4 wins, 1 lost, 12 points. Teesre sthan par Brighton, jo bahut hi bright tarike se aage badh rahi hain, 5 matches played, 3 wins, 1 draw and 1 lost, 10 points. The best attack so far, 16 goals scored, Brighton. Liverpool 36th position par hai.

0: 5 matches played, 9 points. जबकि United 13th position पर हैं, लेकिन एक match कम खेला है, with 4 points. So, हम आपको बता रहे थे top scorers की list में पहले स्थान पर Erling Haaland, जिन्होंने आज एक goal score किया. So, Erling Haaland on 5 goals scored. दूसरे स्थान पर Alexander Isak of Liverpool, 4 goals scored. और तीसरे स्थान पर we have Bruno Fernandes, Dominic Calvert, Joan Pedro, Morden Rogers, Bukayo Saka, Kevin Shade, Marcus Tavernier, Ryan Cherky and Brian Robbie from Sunderland, जिन्होंने आज एक hat-trick score किया against Manchester City. So we'll be here to give you the updates of the match between जो आज United खेल रहा है. On the field of Lanterne Rouge Fulham. Filhal, back to the world of music.
1: Bollywood Sizzler.
2: RM2, your number one Bollywood radio station.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Namaskar Adab and welcome in Bollywood Sizzler. I was having a look at कि 20 सितंबर से कौन कौन सी चीज़ें स्पेशल होती हैं 20 सितंबर की तारीख में what is really appealing and I came across this an observance on 20th September और वो है wife appreciation day yes wife appreciation day celebrated on the third Sunday of September to thank wives Yes, to thank wives for their hard work at home and work. So, अगर आप अपनी पत्नी को कुछ sweet कहना चाहते हैं on this 20th of September, this is the moment. Send me, drop me a message on 549-912-94 for your better half and tell her how much you love her, how much you like her, and how much you appreciate what she does for you and for the family.
3: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
4: हाँ, है एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
3: उसे बताया क्यों नहीं?
4: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: Hot Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: प्यार तो होकर रहेगा आज की रात स्पेशल सॉन्ग्स हमारी भाभियों के लिए इट्स व्हेन यू गेट टू से थैंक यू टू योर वाइफ फॉर व्हाट शी ऑलवेज डज फॉर यू एंड फॉर द फैमिली सितंबर द थर्ड संडे ऑफ एवरी सितंबर इट्स स्पेशली फॉर दिस तेरी मोहब्बत मेरी जान बन गई तेरी मुस्कुराहट मेरी जान बन गई तेरी मोहब्बत मेरी पहचान बन गई हर पल सिर्फ तेरा ही ख्याल रहता है तू मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात बन गई एंड दिस वन गोज हमारी दोस्त गिरीश अलोल के लिए जिससे मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम कॉन्वे सुदेस्ट

0: काश हर रात ऐसी होती। दिस वन गोइंग फॉर माई जान संज फ्रॉम उसकी दीवानी आशा।
1: रेडियो मस्ती।

0: चांद की चादर ओढ़ कर, चांद की चादर ओढ़ कर, तारों से सजी तेरी याद, रात भर जागता हूँ मैं, रात भर जागता हूँ मैं, तेरे ख्यालों में खोकर।
1: रेडियो मस्ती

0: You're listening to RM2 or Radio Masti.
1: मुझको फिर वही सुहाना नजारा मिल गया, मुझको फिर वही सुहाना नजारा मिल गया, नजरों को जो दीदार तुम्हारा मिल गया। और किसी चीज की तमन्ना क्यों करूं, क्यों करूं, और किसी चीज की तमन्ना क्यों करूं, जब मुझे तेरी बाहों का सहारा मिल गया।

0: love is in the air. Sanjay ke saath. Bollywood sizzlers up till nine. Chale gaye hain door kuch pal ke liye. Chale gaye hain door kuch pal ke liye. Magar kareeb hain hum har pal ke liye. कैसे बताएं आपको एक पल के लिए कैसे बताएं आपको एक पल के लिए जब हो चुका है प्यार जब हो चुका है प्यार उम्र भर के लिए
1: सुनते रहो

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती, बॉलीवुड सीज़ला।
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
3: Namaskar, adab, and welcome in the second hour of Bollywood.

एक्ट्रेस संजय के साथ और शुरुआत करते हैं सुल्फिकार नवाबकोट की माला जी के इस मैसेज के साथ। लिखती हैं, तुम दूर हो तो कोई गम नहीं, तुम दूर हो तो कोई गम नहीं, तुम्हें बुला दें ऐसे हम नहीं। मुलाकात नहीं होती तो क्या हुआ, मुलाकात नहीं होती तो क्या हुआ तेरी याद किसी मुलाकात से।

बॉलीवुड सिस्टर्स संजय के साथ अब तक 9 PM। लेते हैं ये अगला मैसेज नाशन की ओर से जो लिखते हैं, नॉलेज नॉलेज इज लाइक स्ट्रीम्स, इट रीचेस रेसिपिएंट्स, इट रीचेस इट्स रेसिपिएंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, नॉट इन ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो। थैंक यू नाशरीन आपके इस बहुत ही इंस्पिरेशनल मैसेज के लिए। रेडियो मस्ती।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: फ्लॉक की ओर आने वाली श्रेष्ठा जी की ओर से ये मैसेज लेते हैं. श्रेष्ठा जी लिखती हैं, नमस्ते संजी. It's a real bless. It's a real bliss to listen to all these beautiful songs. Shukriya, श्रेष्ठा जी, बहुत शुक्रिया. And I'm sure you're going to love this next one as well. मेरे दिल का कहा मानो, मेरे दिल का कहा मानो, एक काम कर लो. एक बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दो. एक बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दो. मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान कर दो. मेरे दिल का कहा मान नो, एक काम कर दो. एक बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दो. मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान कर दो. एक दिन सुबह को मिलो, एक दिन सुबह को मिलो और फिर शाम कर दो.

सुना है हर चीज मिल जाती है दुआ से, सुना है हर चीज मिल जाती है दुआ से, एक रोज तुम्हें भी मांग लेंगे हम खुदा से।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: इस समय हमारे प्यारे दोस्त अरविंद आलकरी की बेटी, प्यारी सी बेटी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. हेलो, थैंक यू बेटी, आपके इस प्यारे मैसेज के लिए. आपको गाने अच्छे लग रहे हैं एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव द नेक्स्ट वन एज वेल. ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, कल फिर से स्कूल. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू नीस क्रिशा फ्रॉम हिमान. चले हम लेते हैं ये अगला गाना, which goes to all those जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अर्ज है कि हवा भी कुछ कहने लगी है, हवा भी कुछ कहने लगी है, जिंदगी भी फूल बरसाने लगी है. हवा भी कुछ कहने लगी है, जिंदगी भी फूल बरसाने लगी है. जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में, जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में, हर पल हसीन सी लगने लगी है.

Radio Masti. न जाने इस दिल को इतना प्यार तुम पर कैसे आया, न जाने इस दिल को इतना प्यार तुम पर कैसे आया, तुम्हारे सिवा मेरे इस नादान दिल को किसी और का चेहरा नहीं भाया।

Radio Masti. अब जबकि हमारे जाने का समय आ गया है, आप सबको धन्यवाद करते हुए बस यही इल्तिजा करते हैं कि उम्मीद रखिएगा अगले वीकेंड को फिर से हमारी आपकी मुलाकात हो, ऐसे परवरदिगार से प्रार्थना कीजिएगा। अर्ज है, मेरे उदास चेहरे पर आने वाली मुस्कान की वजह हो तुम, जो जब भी अकेला होता हूँ सहारा देने वाली उम्मीद हो तुम।

सो चलते चलते अ बिग हाई टू उर्मिला जी जो इटली से हमारा साथ निभा रहे हैं लिसनिंग एंड कुकिंग एट द सेम टाइम अमेजिंग सॉन्ग्स वो लिखती हैं फ्रॉम वाइफ दिशा टू ऑल किगोडो एंड गोदी फैमिलीज फ्रॉम कतेजी वेजोपा और जितने भी लोगों के नाम हम शामिल नहीं कर पाए ऑल द लव टू यू थैंक यू बाय बाय सी यू नेक्स्ट वीकेंड

गुड इवनिंग दोस्तों, और आप सभी का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है लेट नाइट ग्रूव्स। रात का वो वक्त जहां पर टाइम जो है थोड़ा सा और हसीन लगता है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ और रात के 12 बजे तक आपके दिल को बहलाते रहेंगे विथ दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स।

दोस्तों दिन भर हम कितनी सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लान्स, पीपल, सब कुछ। और अजीब सी बात यह है कि इतनी भागदौड़ करने के बाद भी शाम होते होते क्लैरिटी कुछ कम ही मिलती है। और इन सब चीजों के बीच एक चीज आप भूल जाते हैं और वो है अपना ख्याल रखना। तो चलिए अभी के लिए हम आए हैं आपका ख्याल रखने, आपके दिल का ख्याल रखने। इन प्यारे गानों को आप तक पहुंचाएंगे परी का साथ रात के 12 बजे तक।

कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल को सुकून पहुंचा जाते हैं, कुछ आपके फेवरेट प्लेलिस्ट्स भी होते हैं, कुछ आपके फेवरेट सिंगर्स होते हैं और कुछ गाने ऐसे जिन्हें बस सुनना अच्छा लगता है। तो आज की रात हम डेडिकेट कर रहे हैं ऐसे ही गानों के नाम, साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: क्यों मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

वेल फ्रेंड्स, कभी कभी किसी रिलेशनशिप का सबसे खूबसूरत पार्ट उसका नाम होता है एंड यही उसका कंफर्ट भी होता है. यानी कि कभी कभार दोस्ती में कंफर्ट मिलता है, कभी कभार प्यार में कंफर्ट मिलता है, कभी कभार कोई ऐसा रिश्ता जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, दोस्त है या फिर दोस्त से थोड़ा सा ज़्यादा. लेकिन जैसे हम कहते हैं कि रिलेशनशिप्स आर स्पेशल, और अगर वो स्पेशल इंसान आपके साथ इस वक्त है तो डेडिकेट कर रहे हैं अगला गाना आप दोनों के नाम.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

खूबसूरत रात में ये गाने शामिल हो रहे हैं और आप भी हमारा साथ निभा रहे हैं, तो बस जानकर अच्छा लगा कि हमारे लिसनर्स इन गानों को एंजॉय कर रहे हैं एंड आप भी हमारे साथ गुनगुना रहे हैं। रात का वक्त बना रहे हैं स्पेशल विथ योर लेट नाइट ग्रूव्स।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

रात का समय बढ़ते जा रहा है एंड रात अभी तो जवान है सो आप कहीं मत जाइए क्योंकि और भी मेलोडीज हैं और भी प्यारे प्यारे इमोशंस हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं इन योर लेट नाइट ग्रूव्स अभी से लेकर रात के 12 बजे तक

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ, साउथ
4: 103.5,
3: ईस्ट, वेस्ट
4: 96.4,
3: सेंटर
4: 99.4।
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

वक्त के बाद कुछ यादें जो हैं वो सताना कम कर देती है। कहते हैं ना कि टाइम हील्स, और ये सच बात है। वक्त के साथ ये तो नहीं होता कि हम सब भूल जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ हम उस इमोशन के साथ जीना सीख जाते हैं। तो अभी के लिए अगर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, उस इमोशन को आप भी एंजॉय कर रहे हैं, तो बस ये नेक्स्ट गाना आपके लिए।

Late nights have different feeling and different vocabulary. कभी कभार कुछ शब्द जो दिन में कम समझ में आते हैं, रात में थोड़ा और special feel होते हैं. दिल, जज्बात, emotions, प्यार, इन सब का मायना रात में थोड़ा सा ज्यादा लगता है. तो इन्हीं खूबसूरत emotions को हम आप तक पहुंचा रहे हैं इन प्यारे गीतों के साथ.

एंड वेल अभी के लिए जो नेक्स्ट गाना है गोज आउट फॉर दैट वन स्पेशल पर्सन जिनका नाम लेना जरूरी नहीं होता लेकिन उनका आपके जीवन में होना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है. सो अगर ऐसा कोई खास इंसान कोई स्पेशल इंसान आपके पास भी है तो ये नेक्स्ट गाना उनके लिए है.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

और चलिए दोस्तों लेंगे आपसे अलविदा विद दिस नेक्स्ट ट्रैक एंड थैंक यू सो मच इतने प्यार से आपने हमारा साथ निभाया तीन घंटों का ये सफर लेट नाइट ग्रूव्स RM2 रेडियो मस्ती पर मैं हूँ परी और अभी के लिए लूंगी आपसे अलविदा मुलाकात होगी जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखें टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix.
1: अजय, don't mind, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो.
1: सुना.
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे. दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे. मेरे खुदा, किसी को प्यार की हवा ना लगे. आदाब.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: RM2 Radio Musti. Hop

0: RM2 Radio Musti.
1: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा निशलावती।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2.

0: RM2 Radio Masti.
1: Hey, क्या बोलती तू?